102.2 MHz पर हम आकाशवाणी की मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 अगस्त सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 32 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रथम सभा आरंभ होती है।

0: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है। आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है, और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक

0: भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजाम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। वे कल दक्षिणी ओडिशा में तप्त पानी के पास स्थित मां कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की दो दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी। भारत की अध्यक्षता में ये बैठक लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण के व्यापक विषय पर आधारित है। ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान तथा सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना का 4th युद्ध पाठ्यक्रम आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का ये पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र इसका समन्वय कर रहा है। पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पालकी जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का मौका मिलेगा। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में संपन्न हो गई। मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 में से 6 स्वर्ण पदक जीते। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विजेता खिलाड़ियों को पदक और पुरस्कार प्रदान किए और उनके प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों की भागीदारी वाली खेल प्रतियोगिता की सफल मेजबानी दिल्ली सरकार के लिए गौरव की बात है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। वंदना के आरंभ में आइए नमन करते हैं उस असीम शक्ति को जिसके द्वारा ये सृष्टि अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करते हुए प्रकट और विलीन हो जाती है। जिस असीम शक्ति के द्वारा ही ये मानव तन हमें प्राप्त हुआ है और यदि इस जीवन को प्राप्त करने के बाद इस जीवन का प्रत्येक क्षण प्रभु स्मरण में न लगे तो इस जीवन की सार्थकता ही नष्ट हो जाती है।

इस सृष्टि के आदि काल से ही आदि देव महादेव देवों के भी देव हैं, जो अपनी कृपा अपने भक्तों पर बरसाने में तनिक भी विलंब नहीं करते, जो श्रद्धा विश्वास और समर्पण के साथ उनको पुकारता है, उनके द्वार पर पहुंचता है, शिव उसकी पुकार अवश्य ही सुनते हैं।

भक्ति जब संगीत का रूप धारण कर लेती है, तब केवल कानों तक नहीं बल्कि हृदय की गहराइयों तक पहुंचकर आत्मा को आलोकित कर देती है। श्री कृष्ण की ब्रज लीलाएं भक्ति परंपरा का ऐसा ही अनुपम वैभव है, जहां प्रेम, माधुर्य और समर्पण जीवन का सहज उत्सव बन जाते हैं। ब्रज की कुंज गलियां आज भी अपने गोपाल को पुकारने के लिए मानो नित्य नया कोई भक्ति गान गाती हुई स्मरण करती हैं अपने इष्ट को।

मानव जीवन क्षण भंगुर है। धन पद यश और वैभव ये सब समय के साथ बदल जाते हैं, किंतु विनम्रता सदाचार और ईश्वर भक्ति ही ऐसे गुण हैं जो जीवन को वास्तविक अर्थ प्रदान करते हैं। अभिमान मनुष्य को सत्य से दूर ले जाता है, जबकि नम्रता उसे प्रभु के अधिक निकट पहुंचा देती है। यही एक शाश्वत सत्य है जो हमें प्रेरित करता है कि जीवन में अहंकार का त्याग कर प्रेम सेवा और प्रभु स्मरण का मार्ग अपनाएं। जब मन विनम्र होता है तभी ईश्वर की कृपा का अनुभव सहज रूप से होता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। आज की वंदना के गायक कलाकार थे हरिओम शरण, अनुराधा पौडवाल, जगजीत सिंह, अनुप जलोटा और साथी।

0: एफएम 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। सवेरे के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम चिंतन बिंदु। आज इस कार्यक्रम में सुनिए विचार नम्रता आलेख केजी महेश्वरी का है, वाचन यतीन्द्र चतुर्वेदी का।
1: मानव जब पैदा होता है तो वो निर्विकार अबोध एवं निर्मल होता है, पर जो जो उसका बालपन समाप्त होता है उस पर काम क्रोध मद व लोभ का आवरण चढ़ता चला जाता है। जहाँ शिशुपन में वो हरेक से सहायता की मांग करता है और उसकी इस मांग में भोलापन होता है, वहीं बड़े होने पर उसका वह भोलापन समाप्त हो जाता है और उस पर कभी अहंकार का तो कभी मोह का प्रभाव बढ़ जाता है। जहां अहंकार व मद सवार हो जाएं, वहां नम्रता तिरोहित हो जाती है। रावण के पास क्या नहीं था, पर उसका अहं उसे ले डूबा।

0: कंस को भी भगवान बनने का शौक था और उसको इसी बात का अहंकार भी था। परिणाम सबके सामने है, वहीं दूसरी ओर तुलसी जैसे विनम्र पुरुष भी हमारे सामने हैं, जिन्हें जगत की सब वस्तुओं में सीताराम के ही दर्शन होते रहे। इसीलिए तो उन्होंने सभी की वंदना की। सी राम मय सब जन जानी, करहु प्रणाम जोर युग पानी। इससे पहले वह कह ही चुके थे, जड़ चेतन जग जीव जगत, सकल राम मय जान, बंधहु सबके पद कमल, सदा जोर युग पान। ऐसा नहीं है कि वैदिक धर्म ही नम्रता की शिक्षा देता हो। इस्लाम, ईसाई, सिख, पारसी, जैन सभी धर्म नम्रता पर ही बल देते हैं। पोलाइटनेस इज द फ्लावर ऑफ ह्यूमैनिटी। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि अहंकार की चादर ओढ़ो। इतिहास के पन्ने पलटने पर एक नहीं सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे जिसके अनुसार व्यक्ति विनम्र बनकर ही सर्वोच्च शिखर तक पहुंच सके। रहीम की कविता में उदारता का एक उदाहरण देखें। देन हार को और है, भेजत सो दिन रैन, लोग भरम हम पर धरें या ते नीचे नैन। मिठाई कहीं से भी तोड़िए मीठी ही निकलेगी। इसी प्रकार नम्रता भी बड़ी प्रेरक, मीठी एवं लुभावनी ही होती है। अपने नाम के आगे उपनाम लगा लेने से नम्रता नहीं आती, इसे तो हृदय से आना होता है। और जब तक हम अपने हृदय को विकारों से शून्य नहीं करेंगे, तब तक नम्रता से हम दूर ही रहेंगे। नम्रता के लिए चाहिए त्याग, तपस्या, सेवा, उदारता, कष्ट सहने की शक्ति, इंद्रिय संयम, क्रोध पर काबू। इन सब को प्राप्त करने में बाधाएं आएंगी। हर पग पर विकार हमारे रास्ते की बाधा बनेंगे, पर उन पर विजय प्राप्त करना थोड़ा कठिन हो सकता है, पर असंभव नहीं। मानव यदि ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। अतः हम सब विनम्र बने, अन्य गुण अपने आप ही हमारे पास हमारे आचरण में समा जाएंगे।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन बिंदु। नम्रता विषय पर विचार प्रकट कर रहे थे यतीन्द्र चतुर्वेदी। आलेख था KG माहेश्वरी का।

एफएम 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। स्वर है ए हरिहरन की, संगीत सतीश भाटिया का।

फिर भी ब्राह्मणों, कुलगुरु तथा अन्य आदरणीय जनों से पूछकर जो भी आपके कुल की रीतियां हों उन्हें पूरा कीजिए। अयोध्या दूत भेजकर राजा दशरथ को ये शुभ संवाद दीजिए ताकि उनके आगमन पर ये मंगल कार्य विधिपूर्वक पूरा हो सके। दूत अयोध्या को चले और इधर राजा जनक ने सगे संबंधियों तथा राज कर्मचारियों को पूरी नगरी, बाजार, राजमार्गों, भवनों, देवालयों को सजाने के आदेश दिए। मंडप बनाने वाले कुशल कारीगरों को बुला भेजा गया जिन्होंने हरित मणियों के पत्तों तथा फूलों और पद्मराग माणिकों के फलों से ऐसा मंडप बनाया जिसकी शोभा देख ब्रह्मा भी अपनी रचना भूल गए। भांति भांति के माणिक मोतियों, बहुमूल्य रत्नों तथा अन्य उपकरणों से नगर की सजावट होने लगी। जिस मंडप में जनक नंदिनी दुल्हन और रूप और गुणों के भंडार श्री राम दुल्हा होंगे वो मंडप त्रिलोक में अनूठा होना ही चाहिए।

परशुराम पर श्रीराम का वास्तविक स्वरूप प्रकट होने के साथ ही राजा जनक का धनुष यज्ञ पूर्ण रूप से संपन्न हो गया। मिथिलेश को अपने सम्मुख नतमस्तक देख मुनिवर विश्वामित्र बोले, हे राजन, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था जो उसके टूटते ही संपन्न हो गया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। स्वर था ए हरिहरन का, संगीत सतीश भाटिया का था। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। सवेरे के 6:45 हुए हैं। आइए अब हम आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के संबंध में। अब से कुछ ही देर में यानी 6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। विषय होगा कद्दू कुल की सब्जियों का कीड़ों से बचाव। वार्ताकार होंगे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। 7 बजे आप सुनेंगे पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सात बजकर 31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कवि मुख सौ के अंतर्गत सत्य प्रकाश शर्मा का काव्य पाठ।

0: चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुनेंगे सवेरे 8:30 पर। 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम पर्यावरण में ब्रज ककी जैव विविधता और पर्यावरण। वार्ताकार होंगे शिवराज भारद्वाज, इनसे बातचीत करेंगे ओपी सिंह। 9:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आबोहवा, विषय होगा भूमिगत जल, आलेख एवं वाचन होंगे हेमंत झा के। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज दर्पण। दिन में 11:30 पर आप सुनेंगे यादों की झरोखे से फिल्म संगीत। दिन में 12 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत बात और SMS। 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज लोक गीत। आज इस कार्यक्रम में गायक कलाकार होंगे प्रतिभा पाठक और सखियां। दिन में 1:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वनिता लोक। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा माँ के स्वास्थ्य के लिए स्तनपान का लाभ, साथ ही और सुनेंगे महिलाओं के कानूनी अधिकार और योजनाएं। इस कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी आरोग्य वार्ता, विषय होगा माँ का दूध सर्वोत्तम आहार। वार्ताकार होंगी डॉक्टर अंशु शर्मा। दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। शाम 5:30 का समय होगा युवा साथियों के कार्यक्रम युवा वाणी का। आज इस कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा मैथिली शरण गुप्त जयंती और एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता विषय पर भी आप जानकारी सुनेंगे। काव्यांकुर में आप सुनेंगे वेदांजलि। शाम 6:15 का समय रहेगा कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक का। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे ब्रज वार्ता, जिबेरी सावन चौं आवे, वार्ताकार होंगे मनमोहन गुप्ता। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन। शाम 6:50 का समय रहेगा कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण का। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा बरसात में पशु प्रबंधन, साथ ही किसान साथी सुन सकेंगे कृषि में युवाओं की भूमिका विषय पर जानकारी। भेंटवार्ता में आप सुनेंगे बकरियों के प्रमुख संक्रमण रोग और टीकाकरण, इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर अशोक कुमार। शाम 7:31 का समय रहेगा संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी का। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा। 8:20 का समय रहेगा विधानमंडल समीक्षा का, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 9:15 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी। FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:50 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कद्दू कुल की सब्जियों का कीड़ों के बचाव विषय पर जानकारी। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।
1: किसान भाइयों, बरसात के मौसम में कद्दू कुल की सब्जियों में कुछ कीड़े ज्यादा ही लगते हैं, आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। बेल वाली सब्जियों का सबसे हानिकारक कीट है लाल भ्रंक। इसके प्रौढ़ चमकीले लाल रंग के होते हैं, जाड़ों में मिट्टी के दरारों में पड़े रहते हैं। ये जैसे ही तापमान में वृद्धि होती है यह कीट क्रियाशील हो जाता है। यह कीट छोटे पौधों पर आक्रमण करता है, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र कर देता है, जिससे पौधों की मृत्यु भी हो सकती है। यह कीट फूलों को भी हानि पहुंचाता है। इसके नियंत्रण के लिए कार्वारिल धूल 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का बुरकाव छोटे पौधों पर करें, या डेल्टा मैथालिन 7 मिलीलीटर दवा को 10 लीटर पानी में घोल बनाकर के छिड़काव करें। अगर ये दवाएं न मिलें तब आप इंडोसल्फान 35 ईसी की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति 1 लीटर पानी में घोल बनाकर के छिड़काव करें। आवश्यकता पड़ने पर इस छिड़काव को 15

दिन बाद पुनः दोहरा दें। किसान भाइयों, देखा होगा आपने कि कभी कभी बेल वाली पत्तियों का हरा भाग कीड़ा खा जाता है, सिर्फ जालीदार नसें दिखाई पड़ती हैं। ऐसा मुख्य रूप से एप्पल कैना बीटल के कारण होता है। यह कीड़ा पत्तियों की निचली सतह पर पीले रंग के अंडा देता है। अंडों से ग्रब यानी कि सूंड़ी निकल करके पत्तियों को खाते हैं।

0: के पत्तियों को खाते हैं। जब सूंड़ी बड़ी हो जाती है तो पत्तियों को खुरचना शुरू कर देती है। ये कीट करेला में सबसे अधिक लगता है। इसका प्रौढ़ भी नुकसान पहुंचाता है। जब पत्तियों की निचली सतह पर पीले अंडे दिखाई पड़े तो पत्तियों को तोड़ करके नष्ट कर देना चाहिए। कार्वारिल 50% धूल की 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके छिड़काव करना चाहिए, या इंडोसल्फान की 1.5-2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें। सरसों का माहू कीट भी लौकी, ककड़ी और तोरई जैसी सब्जियों पर अक्सर देखा जाता है। ये माहू जो है सीधे शिशु ही पैदा करता है जो पत्तियों की निचली सतह पर झुंड में पाए जाते हैं। ये शिशु पत्तियों से रस चूसते हैं जिससे लट जो है पीली पड़ जाती है, अंततः सूख करके नष्ट हो जाती है। यह कीट मधुश्रावी छोड़ता है जो कि कवक को आमंत्रित करता है। अगर बेल पर फल न लगे हों तो सर्वांगी कीटनाशक दवा का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि रोगार है 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी का घोल बना करके छिड़काव करें। अगर फल लग चुके हैं तो मेलाथियन का छिड़काव करें। छिड़काव ऐसा हो कि पत्ती की निचली सतह पर भी अच्छी तरह से वो भीग जाए। बेल वाली सब्जियों में फलों पर फल मक्खी का आक्रमण भी अधिक होता है। जब फल मुलायम रहता है उसी समय ये कीट फल के अंदर अंडा दे देता है। अंडा से शिशु निकल करके फल को खाते हैं जिससे कि फल सड़ भी जाता है। इस पर नियंत्रण पाने के लिए 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में कार्बारिल का घोल बना करके छिड़काव करें, या फिर एक जहरीला चारा बनाएं जिसमें 20 मिलीलीटर मेलाथियन, 200 ग्राम सीरा और पानी का घोल बना करके इसको टाट के टुकड़ों में लपेट लें। उसे खेत में जगह जगह आप लटका दें जिससे खाने के लिए कीड़ा आएगा और स्वतः ही मर जाएगा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। विषय था कद्दू कुल की सब्जियों का कीड़ों से बचाव। वार्ताकार थे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।

0: 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् यथा भारतं विकसित भारत दिशि अग्रेसरति तथा देशस्य युवानः शारीरिकरूपेण सुदृढाः, मानसिकरूपेण सबलाः, आत्मविश्वासेन च परिपूर्णाः भवितुमर्हन्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां विकसित भारत संकल्पाभियानस्यान्तर्गतं नशा मुक्त युवाभियानस्य दृश्य श्रव्य अन्तर्जालीय माध्यमेन शुभारम्भावसरे भाषमाणः प्रधानमन्त्री अवदत् यत् युवानः सर्वदा मादकद्रव्येभ्यः दूरं तिष्ठेयुः अथ स्वस्थजीवनचर्यां च अङ्गीकुर्युः। असौ एतदपि अवदत् यत् अस्य अभियानस्य शुभारम्भेण मादकद्रव्यदुरुपयोगस्य विरुद्धं शतसप्ताहकात्मकस्य राष्ट्रव्यापिनः जनभागीदारी इत्यस्य अभियानस्य आरम्भः जातः।
2: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक

जोहराबाई अंबाला वाली की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे रतन फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा था DN मधुक ने और संगीत दिया था नौशाद ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाएंगे संतराल के बाद।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कार्यक्रम भूले बिस्तर गीत में लीजिए सुनिए प्रीति सागर की आवाज में प्रेरणा फिल्म का ये गीत। इसे लिखा है मोती सागर ने और संगीत दिया है विजय कुमार ने।

प्रीति सागर को अभी आप सुन रहे थे प्रेरणा फिल्म में। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का यह अगला गीत मुकेश की आवाज में। फिल्म है मधुमती। गीत लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत दिया है सलील चौधरी ने।

मधुमति फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज़ में। और लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

किशोर कुमार की आवाज में गाए। मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम भूली बिसरी गीत यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। सवेरे के 7:18 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अगला प्रसारण, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से। महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
2: शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का किया शुभारंभ, कहा नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। आज से शुरू हो रहा है राज्य विधानमंडल का मानसून सत्र, कल अनुपूरक बजट पेश करेगी प्रदेश सरकार। भारत की अध्यक्षता में आज से लखनऊ में शुरू हो रही है ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों NSO प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक। और सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार ने किए हैं व्यापक प्रबंध। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
5: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा

0: हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
0: ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
0: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक मां की मुस्कान छीन लेता है और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन के मामले छिपाना नहीं है।
0: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें।
1: प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुई। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि प्रत्येक युवा समाज में सकारात्मक परिवर्तन का वाहक बन सकता है और जन जागरूकता के माध्यम से नशा मुक्त भारत के संकल्प को जन आंदोलन का स्वरूप दिया जा सकता है। लखनऊ के गुलजार उपवन में राजयोग प्रशिक्षण केंद्र ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी हिस्सा लिया। श्री सिंह ने कहा कि यह अभियान जन भागीदारी के माध्यम से युवा शक्ति को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास है।
2: सरकार मानव बना सकती, संसाधन उपलब्ध करा सकती, लेकिन चरित्र निर्माण केवल कानून से नहीं होता, संस्कारों से होता है। और जब संस्कारों की बात आती है तो ब्रह्म कुमारी जी का योगदान संस्कार का अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ब्रह्म कुमारी ने दशकों से बिना किसी भेदभाव के समाज में शांति, आत्म जागृति, नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक चेतना का दीप जलाया है।
1: देश भर के लगभग 10,000 से अधिक स्थानों पर कल एक साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें माय भारत स्वयंसेवक, एनएसएस के वॉलेंटियर्स, युवा क्लब, शिक्षण संस्थाएं, गैर सरकारी संगठन और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन शामिल हुए। राज्य विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र के दौरान कल प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में कल विधान भवन में आयोजित सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता पक्ष व विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों से जनहित से जुड़े हर मुद्दे को सदन में रखने तथा स्वस्थ चर्चा कर विकास को और गति प्रदान करने में सरकार का सहयोग करने की अपील की। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अपने संबोधन में सदन के सुचारू संचालन के लिए सभी सदस्यों का सहयोग मांगा। वहीं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राज्य सरकार सबके सहयोग से सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों NSO प्रमुखों की बैठक आज लखनऊ में शुरू हो रही है। यह

0: बैठक कल भी जारी रहेगी। इसमें ब्राजील, रूस, चीन, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
1: NSO के प्रमुखों की बैठक भारत की अध्यक्षता में आयोजित होगी। इस बैठक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिणी अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। वहीं सांख्यिकी ट्रैक का विषय परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण की रखा गया है। इसका उद्देश्य बेहतर गुणवत्ता वाले आंकड़ों, नवाचार, प्रभावी डेटा प्रसार और जन केंद्रित सांख्यिकीय व्यवस्था को बढ़ावा देना है, ताकि साक्ष्य आधारित, समावेशी और टिकाऊ विकास को मजबूती मिल सके। बैठक में सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुँच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए उस भ्रामक वीडियो का खंडन किया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि जंतर मंतर पर पुनः धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि वायरल वीडियो पुराना है, जिसे भ्रामक संदर्भ के साथ साझा कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। आज पवित्र सावन का पहला सोमवार है। इस अवसर पर प्रदेश भर के शिवालयों में तड़के से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। एक रिपोर्ट।
2: सावन के पहले सोमवार पर पवित्र नदियों से जल भरकर प्रमुख शिवालयों में जलाभिषेक करने पहुंचे कांवड़ियों के लिए प्रशासन की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने कई जगहों पर रूट डायवर्जन किया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ और भगवान राम की नगरी अयोध्या में श्रद्धालु श्रद्धा और भक्ति के माहौल में जलाभिषेक कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम में सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। उससे जुड़े मार्गों पर 289 CCTV कैमरों के साथ 44 अतिरिक्त कैमरे लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: हापुड़, चित्रकूट, अमरोहा, भदोही, बिजनौर और सहारनपुर में भी कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। संभल और अमरोहा में सभी विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का किया शुभारंभ, कहा नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। आज से शुरू हो रहा है राज्य विधानमंडल का मानसून सत्र, कल अनुपूरक बजट पेश करेगी प्रदेश सरकार। भारत की अध्यक्षता में आज से लखनऊ में शुरू हो रही है ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों NSO प्रमुखों की दो दिवसीय बैठक। और सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार ने किए हैं व्यापक प्रबंध। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों

0: को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

ब्रज माधुरी कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनों को हमारी जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भैया बहनों, सावन का महीना आते ही प्रकृति नवजीवन से भर उठती है। हरियाली की चादर ओढ़े धरती, रिमझिम फुहारे, मंद मंद बहती शीतल बयार और वृक्षों पर झूलते झूले, ये सब मिलकर ब्रज की छटा को और भी मनोहारी बना देते हैं। ब्रज में सावन केवल एक ऋतु नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और उत्सव का अनुपम पर्व है। ऐसा लगता है मानो स्वयं राधा रानी अपनी सखियों के साथ झूला झूलने निकली हों और नंदलाल की मधुर बांसुरी की तान पूरे ब्रज मंडल में गूंज रही हो। बरसाने और वृंदावन की गलियां मल्हार के स्वरों से मुखरित हो उठती हैं। मंदिरों में ठाकुर जी के हिंडोले सजते हैं, भक्ति रस की धारा बहती है और हर भक्त का मन राधा कृष्ण के प्रेम में सराबोर हो जाता है। इन्हीं मधुर मन भावन और भक्तिमय भावों को अपने में समेटे हुए आज सावन का पहला सोमवार जो वंदन कर रहा है देवादिदेव महादेव को और कामना कर रहा है महादेव से अपने आंगन में आने को, कन्हैयालाल रसिक के स्वर में गाए इस ब्रज लोक गीत के माध्यम से।

0: कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए कवि मुख सौ पाठ के अंतर्गत सत्य प्रकाश शर्मा का काव्य पाठ।
1: मैं आज अपना काव्य पाठ गिरिराज जी को समय पर करते हुए गिरिराज जी की महिमा के साथ ही शुरू करूंगा। गिरिराज की महिमा में दो छत। गोधन ही गिरिराज नृपि गिरि श्रेष्ठ वृंदावन शीस विराजत पालक गयन गोप गोपालन श्याम मनोहर रास रचावत ग्वालन संगन केली कर मिलि बांसुरी श्याम सखान सुनावत गोधन की महिमा मुख सो विधि गामन ही मन में हर सामत।

0: सुमसुशोभित श्रीललिता सखी कुंड सरोवर नारद कुंड अनेक सुशोभित को महिमा गुण गान करे गिरी जागिरी पे घन श्याम सुशोभित को महिमा गुण गान करे गिरी जागिरी पे घन श्याम सुशोभित।
1: ब्रज के बारे में कहो जाए गाय बिना ब्रज ना, और ब्रज को महत्व ही गोधन गैया गोप गोपी और ग्वालिन सो है। ब्रज माने वैसे भी कहो जाए ब्रज माने गतिशीलता जहाँ विचरती गाय और खिरक कूप बनवट मिले झुंड वृंदा दिखा, यही ब्रज है। तो मैं गोधन गाय की महिमा को वर्णन कछु छंदन सो।
0: खाय हरे तीन काछल कामते सोम सु धारस श्री गऊ माता खाय

धाता। गोधन पूजत गोधन ध्यावत गोधन के गुण गान ही गाओ। कोधन को ब्रज सेवक माधव गोधन कु ब्रज शीस नवाओ। मात पिता गुरु गोधन ही ब्रज देव ऋषि मिलि गोधन ध्याओ। गोधन काम गऊ सुर भी गऊ गोधन।

श्री गऊ माता। गाय के बाद कृष्ण के बाल स्वरूप को एक कृष्ण माधुर्य के रूप में वर्णन, जब अष्टम अवतार लेके आए बाल के रूप में तो कितनी मोहिनी छवि है, वा को एक वर्णन। ले अवतार मनोहर बामन, ले अवतार मनोहर बामन, आय गयो ब्रज पीर मिटावन, बाल बन्यो यदु गोकुल के घर, खेलन कूज सुदा घर आंगन, रूप अति अति माधुर सुंदर, मानव रूप गोपाल महामन।

चारण सुंदर लाल को कैसो स्वरूप है गोपाल को। अंग प्रत्यंग अपारण सुंदर रूप स्वरूप गोपाल बिहारी। अंग प्रत्यंग अपारण सुंदर रूप स्वरूप गोपाल बिहारी। माधुर रूप करे मन मोहित शाश्वत रूप बने मन हारी।

वे प्यारी गोपिया कृष्ण के सुंदर स्वरूप को देख के आपस में बतियाए रही है। माधुर रूप लखे सखी गोपिय बोल कहे मिली के बतरामते, देखे अली सुत नंद जसो मत घायल नैनन सो करी जामत। घायल ही करे अली पावन मंद हसी हसी के मुस्कामत।

बर कामत। बाल गोपाल को जो स्वरूप है उसके अंग प्रत्यंगन को की सुंदरता कैसी है। होठ अनंतर भोह अनंतर नैन अनंतर श्री गिरिधारी,

गोप अनंतर ग्वाल अनंतर पंडित बंदन श्याम अनंतर। माखन चोर लीला को वर्णन आयो है। और ब्रज में गोपाल तबहु माखन की चोरी करे तो वाके कछ सभी अच्छा। दैमती है घर नंद जसोमते, दैमती है घर नंद जसोमते, दूध बधी गऊ गोठ हजारन। बाबा नंद के गोठ में हजारों गैया थी।

मांगत है सूत गोपिन द्वारन, लागत है प्रिय चोरी को माखन। प्रेम लताल लगे अति स्वाद ही गोपिन, मार लगे मन भावन।

करण प्रेम बसी ब्रज वासी न हो हरे, प्रेम बसी ब्रज वासी न हो हरे, भूलत है निज रूप सुहावन, जा भय सोयम राज डरे नित, कापत है जसुदा घर आंगन, तारण हार हरे जग पीरन, पीर सहे पीटी मात के हाथन, जीत जई जग पंडित स्वामिनी, पीठ बिठा मत गोप गोपालन, ले अवतार निसाचर मारत, खामत मार जसो मति हाथन पाल।

बंदन तोयल ला ब्रज नंदन, पंडित पूज परे हरि पामन। सुंदर लाल गऊ बछ सुंदर, सुंदर ग्वाल सखा सबु लाला। सुंदर गोपी गोपालन सुंदर, सुंदर है ब्रज की सबु बाला।

0: की छैया भोजन खात खिलावत ग्वालन भोरन बांधी दई ब्रज मैया। पंडित बंदन मोहन माधव आय बन्यो ब्रज ग्वारी गैया। पंडित बंदन मोहन माधव आय बन्यो ब्रज ग्वारी गैया। जय श्री राधे।
1: सत्यप्रकाश शर्मा का काव्य पाठ अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम में ब्रजलोक गीत आपको सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ब्रज माधुरी। कार्यक्रम में लीजिए, सुनिए माधुरी शर्मा के स्वर में गाया ये ब्रज लोकगीत।

माधुरी शर्मा के स्वर में अभी आपने सुना ये ब्रज लोक गीत, और लीजिए अब सुनिए डोरी लाल गोला के स्वर में गाया कार्यक्रम का ये अगला ब्रज लोक गीत।

डोरीलाल गोला के स्वर में गाए इसी ब्रज लोकगीत के साथ ही कार्यक्रम ब्रज माधुरी यहीं पर संपन्न होता है। आप सभी भैया बहनों को हमारी जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। सवेरे के 8 बजने को आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में फिर उसके बाद अंग्रेजी में, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। कहा, विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज से लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोग मारे गए और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100

0: सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देशभर में हर रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं न कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम को कटक के पास बनारा में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति भुवनेश्वर से ब्रह्मपुर तक एक विशेष ट्रेन से यात्रा करेंगी और फिर सड़क मार्ग से गंजाम जिले के तप्तपानी जाएंगी, जहां वो मां कांधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वो रात में गोलाबंध स्थित आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज में रुकेंगी। भुवनेश्वर और कटक में पुलिस की लगभग 40 प्लाटून तैनात करके सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान निर्धारित स्थलों के ऊपर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, उसके बाद 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती शुरू होगी। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। इसका उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े सबूतों के लिए कानून बनाना और इसे आजकल के डिजिटल बैंकिंग तौर तरीकों के अनुरूप बनाना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है।
2: इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अंतर्गत भारत ने परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी इस विषय को अपनाया है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान एवं सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बैठक में सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र

0: में एआई की तैयारी विषय पर दो विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। इस हमले की योजना पहले से बनाई गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन को लेकर कोई समझौता हो सकता है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर भी समझौता किया जाएगा। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर एक आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। यह विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। 9 लोग मौके पर ही मारे गए, जबकि 5 और लोगों की मौत की पुष्टि काबल अस्पताल में हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार को निकाले जाने की परंपरा है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पाल की जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से आज श्रावण मास की पहली सवारी निकलेगी। इस दौरान भगवान महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। दोपहर 3:30 बजे सभा मंडप में पूजन होगा, जबकि शाम 4 बजे सवारी मंदिर से रवाना होगी। सवारी गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुंचेगी। यहां शिप्रा नदी के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक और आरती की जाएगी। इसके बाद सवारी अलग अलग रास्तों से होते हुए शाम 7 बजे मंदिर लौटेगी। महाकाल मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में एक भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया।

0: समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। खेल मंत्रालय के सचिव हरिरंजन ने कहा है कि देश के खिलाड़ियों ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया।
1: 2026 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में कई खेलों की विधाओं में कटौती होने के बावजूद भी देश की टीम ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि पहले से और हमारी अपेक्षाओं से कहीं गुना ज्यादा, तो ये हम सबके लिए एक बहुत सुखद संकेत है कि शायद वो जो एक टर्निंग पॉइंट स्पोर्ट्स की दिशा में देश में आना चाहिए उसका समय आ गया है। और 2030 में हम अगला कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में अहमदाबाद शहर में आयोजित करने वाले हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग है और प्रतिष्ठा का विषय भी है।
0: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नशे के खिलाफ 100 सप्ताह के अभियान, राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मानसून से जुड़ी खबरें सबसे ऊपर छाई हुई हैं। हिंदुस्तान का पहला शीर्ष समाचार है, नशे के खिलाफ देश ने 100 सप्ताह की जंग छेड़ी। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को सुर्खी बनाया है, ड्रग्स दुश्मन देशों की साजिश। नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण ने भी प्रधानमंत्री की कही इसी बात को शीर्ष समाचार बनाया है, जबकि जनसत्ता ने अमेरिका ईरान युद्ध के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान पर हमले

0: रोकें बशर्ते शीघ्र हो करार। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की उपलब्धि के समाचार को शीर्षक दिया है। इस बार हमारे 54% गोल्ड बॉक्सिंग में आए, कुल मेडल में से 69% सिर्फ 3 खेलों में जीते। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है, हादसों के हाईवे पत्र सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता को रेखांकित करते हुए सवाल करता है कि जब वैकल्पिक ईंधन और वाहनों की प्रदूषण जांच सरकार की प्राथमिकता है तो ऐसा ही अभियान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्यों नहीं चलाया जाता। पत्र का कहना है कि बीते गुरुवार को लोकसभा में सड़क दुर्घटनाओं के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए वो डराने वाले हैं। कश्मीर में हथियारों से लैस 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के समाचार को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी बताया है। पुलवामा जिले में एक आतंकी से हैंड ग्रेनेड, राष्ट्र विरोधी पोस्टर और अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद होने की खबर को पत्र ने बॉक्स में प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, बारामूला में आतंकियों का मददगार गिरफ्तार।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया, कहा विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोगों की मौत। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches 100-week-long Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan, says Viksit Bharat requires physically healthy, mentally robust and highly confident younger generation. Counting of votes begins for by-elections to 3 assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh. Meeting of heads of National Statistical Offices of BRICS countries starts in Lucknow today. US President Donald Trump says new talks with Iran to take place today. 14 people killed in suicide attack during peace rally in Pakistan's Khyber Pakhtunkhwa. And Ahmedabad formally receives the Commonwealth Games hosting rights for 2030 at the Glasgow closing ceremony. Prime Minister Narendra Modi has launched the Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan through video conferencing in New Delhi yesterday. In his address, the Prime Minister said that achieving Viksit Bharat fundamentally requires a physically healthy, mentally robust and highly confident younger generation, completely free from self-destructive habits.
3: Viksit Bharat Sankalp Abhiyan ke liye Nasha Mukt Yuva, is movement ka naam hi iske sankalp ko spasht karta hai. Kyunki aaj jab desh ne Viksit Bharat ka lakshya tay kiya hai, to iske liye avashyak hai desh ka yuva tan se swasth ho, man se swasth ho, aatmavishwas se bharpur ho aur ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो, यही इस अभियान का उद्देश्य है।
2: Outlining the campaign's ambitious 100-week roadmap, Mr. Modi detailed how every upcoming Sunday will feature dedicated activities spanning art, culture, sports and meditation to continually engage new participants. He said that coming 100 Sundays will absolutely become 100 strong steps in the direction of a completely drug-free India.
3: आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म खामोशी में। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाएंगे इस कार्यक्रम संबंधी सूचना के बाद। श्रोताओं, अपरिहार्य कारणों से शाम को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के प्रसारण समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। ब्रज ग्रामीण किसानवाड़ी कार्यक्रम अब शाम 6:15 के स्थान पर 6:50 से 7:20 तक प्रसारित होंगे। संध्या वंदन कार्यक्रम का समय शाम 6:30 से 6:50 तक एवं ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम का समय 6:15 से 6:30 तक रहेगा। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में गाया तकदीर फिल्म का ये गीत। इसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मोहम्मद रफ़ी को अभी आप सुन रहे थे फिल्म तकदीर में। और लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश कुमार की आवाज़ में गाया संगम फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

0: लता मंगेशकर और मुकेश कुमार को अभी आपने सुना फिल्म संगम में। कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए यह संदेश।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आकाशवाणी की मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में गाया अनामिका फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है मजरूह ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने सुना अनामिका फिल्म का गीत। कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का यह अगला गीत नीलकमल फिल्म से। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया है रवि ने।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने सुना नीलकमल फिल्म का गीत। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये अगला और अंतिम गीत, किशोर कुमार की आवाज़ में मेरे जीवन साथी फिल्म से। गीत लिखा है मजरूह ने और संगीत दिया है आर.टी. बर्मन ने।

0: अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। सवेरे के 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम पर्यावरण। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं ब्रज की जैव विविधता और पर्यावरण विषय पर ये भेंटवार्ता। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं शिवराज भारद्वाज। इनसे भेंट कर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं OP सिंह।
1: श्रोताओं, ब्रज भूमि की जो पहचान है वो अनेक आयामों के लिए है। चाहे हम धर्म की बात करें, आध्यात्म की बात करें, संस्कृति की बात करें, उसमें ब्रज की भूमि को जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। ब्रज की जब हम बात करते हैं तो 12 वन 14 उपवन की बात होती है। तो ये भूमि गोचर भूमि है, वन भूमि है, इसीलिए शायद ब्रज भूमि भी है। तो क्या कुछ जैव विविधता यहाँ की रही और आज वो किस रूप में दिखती है, ये तो साथ साथ बात करेंगे, लेकिन उससे जुड़े हुए पर्यावरण की भी बात करेंगे। आज हमारे साथ प्रोफेसर शिवराज भारद्वाज जी हैं। यूँ तो आप फिजिक्स को देखते हैं, लेकिन एक निजी इनका जो प्रेरणा कहें, निजी एक बोध कहें, वो जैव विविधता और पर्यावरण को लेकर भी रही। ब्रज में काफ़ी उन्होंने उसको देखा और समझा भी है। शिवराज जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत, नमस्कार।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो जब जैव विविधता की बात चलती है तो हाँ, सामान्यतः आदमी उसके हाँ, अलग उसमें देखता है, तो एक व्याख्याता के नाते, एक शिक्षक के नाते थोड़ा सा सामान्य व्यक्तियों को बताएं कि जैव विविधता वास्तव में है क्या।
2: निश्चित रूप से जैव विविधता ब्रज क्षेत्र के लिए एक नया सा शब्द है। लोगों को थोड़ा सा भ्रम की स्थिति है कि जैव और विविधता आखिर है क्या। तो जैव माने जीवन और विविधता माने वैरायटी, भिन्नता,
1: भिन्नता जी।
2: और जैव माने जीवन का अर्थ जीवों से, पशु पक्षियों से, फल फूलों से, पेड़ों से, वृक्षों से, जहां पे भी जीव है उसके विभिन्न आयामों की भिन्नता क्या है, वो भिन्न भिन्न तरीके से हमारी प्रकृति में किस प्रकार मौजूद हैं। तो ये पेड़ हैं, पौधे हैं, फल हैं, फूल हैं, या अन्य जीव जंतु हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, इनका जितना विविध स्वरूप हमारी प्रकृति में देखने को मिलता है उतना अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। यद्यपि जो जैव विविधता का महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो वेस्टर्न घाट माना जाता है, और वेस्टर्न घाट इसलिए माना

0: जाता है, क्योंकि वेस्टर्न घाट गुजरात की सीमाओं से लेकर कन्याकुमारी तक
1: जी,
0: जाता है,
1: जी गुजरात महाराष्ट्र और उधर की बात कर रहे हैं। जी जी,
0: जी। तो वेस्टर्न घाट माना जाता है। दरअसल जैव विविधता के लिए आवश्यक है उच्च तापमान और पर्याप्त बरसात। तो जब पर्याप्त बरसात और उच्च तापमान होता है तो उस स्थिति में अधिक पेड़ पौधे उगते हैं, और जब अधिकाधिक पेड़ पौधे उगते हैं तो उसी हिसाब से जीव जंतु भी वहां पर पैदा हो जाते हैं।
1: मतलब आप ये कह रहे हैं कि जीव जंतु, पेड़ पौधे और हमारा जो परिवेश है
0: जी,
1: वो ही हमारा जैव विविधता को समाहित किए हुए है, उसमें सब कुछ आ जाता है, हम स्वयं भी उसके हिस्सा है और स्वयं भी उसके घटक है उसमें। मैं अगर इसको थोड़ा सा, जैसा आपने कहा तापमान की बात की, वन की बात की, तो कभी जो ब्रज भूमि रही होगी, यहाँ बरसात की भी अधिकांशता रही, पशुपालन यहाँ का मुख्य पेशा रहा, तो निश्चित तौर पर यहाँ विविधता तो रही होगी इसमें, लेकिन आज वो चीज़ें शायद दिखाई नहीं देती। तो यहाँ उस तरह की न सही वेस्टर्न घाट की, लेकिन विविधता यहाँ जरूर रही होगी उसमें, ऐसा हम मान सकते हैं इसमें।
0: यह हमारा ब्रज जैव विविधता के दृष्टिकोण से बहुत ही धनाढ्य है।
1: जी
0: मैं ये कहना चाहूंगा कि ब्रज में, ब्रज जो हमारा है वो यमुना के लिए जाना जाता है।
1: जी जी,
0: ब्रज हमारा इस यमुना की 7 सहायक नदियां हैं, उनके लिए जाना जाता है।
1: जी जी,
0: जिसमें करवन है, सेंगर है, सिरसा है, बाणगंगा है और गंभीर आदि यमुना की सहायक नदियां हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और ब्रज के 12 वन हम बहुत भलीभांति परिचित हैं।
1: जी जी,
0: मधुवन है, तालवन है, कुमुदवन है, बहुलावन है, कामवन है, खादिरवन है, वृंदावन है। ये 7 वन यमुना के पश्चिमी किनारे पर उपस्थित हैं। और 5 वन जिसमें भद्रवन, भांडीरवन, वेलवन, लोहवन और महावन, ये यमुना के पूर्वी तट पर उपस्थित हैं।
1: जी जी जी।
0: तो ये वनों का मतलब ये है कि ये वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र
1: भूमि रही है।
0: हाँ, वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र, और जहाँ वृक्ष होंगे वहां पर पेड़ पौधे होंगे, वहां पर जीव जंतु स्वतः ही पैदा होंगे। और जब जीव जंतु स्वतः पैदा होंगे तो जीव जंतु अब 2 तरह के हो सकते हैं, एक फलाहारी भी हो सकते हैं, एक मांसाहारी भी हो सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इस प्रकृति के चक्र को पूरा करने के लिए फलाहारी जीव जंतुओं की भी आवश्यकता है और मांसाहारी जीव जंतुओं की भी आवश्यकता है। अब जैसे चूहा है तो सांप है, सांप और चूहे में आपस में बैर होता है, तो वो संतुलन बनाए रहते हैं।
1: जी जी जी जी, वो चक्र तो प्रकृति का पूरा होना ही चाहिए उसमें।
0: ब्रज के पहाड़ हैं, गोवर्धन की पहाड़ी है, हमारे 5 पहाड़ हैं। 5 पहाड़ों के बारे में संत हुए जगत नंद, उन्होंने लिखा गोवर्धन, नंदगांव और बरसाना काम, चरण पहाड़ी 5 ये जगत नंद अभिराम। 5 पहाड़ी हैं ये, गोवर्धन की पहाड़ी, नंदगांव की पहाड़ी, बरसाना की पहाड़ी और काम की पहाड़ी, कामा की पहाड़ी, चरण पहाड़ी 5 है। तो ये जो आनंद देने वाली है प्रकृति का, जो आनंद है इन पहाड़ियों की वजह से है।
1: निश्चित तौर पे आपके, जैसे आपने कहा नदी है, नदियों की सहायक नदियां हैं, पहाड़ है, वन है, तो अपने आप में जैव विविधता तो यहाँ होगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है।
0: और इतना सुंदर वर्णन
1: जी जी
0: जैव विविधता का हमारी श्रीमद् भगवद गीता में भी बहुत किया है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और श्रोता लोग बड़ा आनंद से सुनते हैं। और भगवान कृष्ण जब यहाँ से चले जाते हैं
1: जी जी,
0: और उद्धव को भेजते हैं कि भाई तुम जो जाओ हमारा संदेश दे आओ,
1: जी जी,
0: तो वहाँ पे भी जो है उनको जब लौट के जाते हैं उद्धव, तो कहते हैं उदो मोहि ब्रज ब्रशत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। तो ये क्या है, ये विविधता है, ये
1: विविधता है,
0: विविधता है,
1: जिसको साक्षात ईश्वर भी स्मरण कर रहे हैं।
0: हंस सुतासी सुंदर नगरी और कुंजन की छाही, वै सुरभि वै छंद दोहिनी खरिक दोहावन जाही। मतलब गाय भी हैं, पशु भी हैं, इसमें जो नदी भी हैं, नाले भी हैं, वन भी हैं, उपवन भी हैं, लताएं हैं, पताएं हैं, तो ये सब क्या है।
1: निश्चित तौर पर जैव विविधता रही है तो फिर सांस्कृतिक विविधता, पर्यावरणीय विविधता, लोगों के खान पान की, व्यवहार की, वो सब विविधताएं तो इससे जुड़ी हुई रही हैं। इसको हम आज भी अपने व्यवहार में देखते हैं कि
0: हाँ,
1: जितनी विविधता
0: हमारे
1: सांस्कृतिक भाई ब्रज के आयामों की जब हम बात करते हैं तो वो अध्यात्म और उससे शिखर योग से लेकर के और लोक जीवन और

0: लोक व्यवहार तक आता है उसमें। तो
1: हाँ जी
0: जितनी विविधता यहाँ है, जो 16 कलाओं से युक्त श्री कृष्ण ने जो यहाँ अपना वो किया, तो मैं समझता हूँ शायद उससे ज्यादा कहीं कुछ मिलता नहीं है, ब्रज से ज्यादा कहीं कुछ देखने को
1: नहीं,
0: मिलता।
1: ब्रज में जैव विविधता के दृष्टिकोण से बहुत ही उचित स्थान है, जहाँ का तापक्रम भी बहुत ठीक रहता
0: जी
1: है
0: जी
1: और जहाँ पर पानी की भी पर्याप्त मात्रा रहती है। इसीलिए ये जो है वनों का क्षेत्र है, बाकी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे इस तरह से वन नहीं है,
0: बन नहीं है। जी,
1: पहाड़ नहीं है।
0: हाँ
1: और यहाँ के वनों का तो यह हाल है कि इतने जितने भी प्रकृति में जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं सब यहाँ ब्रज में पाए जाते हैं।
0: जी,
1: अकोल, अगस्त, अनार, अमरूद, अमलतास, अस्सी, अरुआ, अशोक, आम, ऐसे
0: जी,
1: हजारों पेड़ जो आप जो
0: हाँ
1: है
0: हाँ हाँ
1: देखेंगे कि इस ब्रज की धरा पर
0: जो जो
1: उपस्थित
0: जो
1: है।
0: संपूर्ण भारत भूमि में वो ब्रज
1: हाँ,
0: में
1: ब्रज
0: भी
1: की
0: है।
1: धरा पर
0: हाँ
1: उपस्थित हैं तो इनकी वजह से जीव जंतु भी जो है पैदा होते हैं और वो सब एक साथ रहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मिलकर के जब एक साथ रहते हैं तो उसको कहते हैं जैव विविधता। और ये तीन प्रकार की हो सकती है,
0: जी जी
1: एक
0: जी
1: प्रजाति जैव विविधता हो सकती है। प्रजाति जैव विविधता में के अंदर विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी जीव जंतु एक साथ रहते हैं। जैसे जंगल है उसमें हाथी भी रह रहा है, घोड़ा भी रह रहा है, शेर भी रह रहा है, चीते भी रह रहे हैं, बंदर भी रह रहे हैं, आदमी भी रह रहे हैं। ये प्रजाति है, विभिन्न प्रजातियां हैं लेकिन सब एक साथ रह रहे हैं। तो ये हुई प्रजातीय जैव विविधता। एक अनुवांशिक जैव विविधता, अनुवांशिक जैव विविधता का अर्थ ये है कि जो कहना चाहिए भिन्न भिन्न प्रकार के लोग तो हैं लेकिन उनकी रूप, रंग और वेशभूषा की वजह से
0: उनका
1: वो अलग अलग।
0: जीनो टाइप
1: हाँ
0: अलग बदल गया
1: हाँ
0: है बिल्कुल।
1: बदल गया
0: जी
1: है।
0: जी जी
1: तीसरा परिस्थिति की जैव विविधता है। परिस्थिति जैव विविधता का मतलब ये है कि अब जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा स्थलीय जगह है, अब जहाँ पे मरुस्थल है वहाँ की जैव विविधता अलग होगी, वहाँ
0: पहाड़ की
1: पर
0: अलग हो
1: पहाड़
0: जाएगी।
1: की अलग हो जाएगी, सागर हैं वहाँ की अलग हो जाएगी। और अगर हम लद्दाख की तरफ जाएंगे
0: तो
1: जहाँ पर
0: वो
1: हिमाच्छादित
0: बर्फ
1: जो है
0: बर्फ
1: बर्फ
0: जी
1: पड़ी हुई है तो वहाँ की जैव विविधता अलग हो जाएगी। तो ये पारिस्थितिकी जैव विविधता, अनुवांशिकी जैव विविधता और प्रजाति जैव विविधता, तीन प्रकार की जैव विविधताओं में हम इसको बांट सकते हैं। और प्रत्येक वर्ष 22 मई को सन 2000 के बाद अंतर्राष्ट्रीय विश्व जैव विविधता विश्व दिवस मनाया जाता है। ये इसका प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय एक सम्मेलन हुआ था तो उसमें ये
0: ये
1: प्रस्ताव
0: रखा
1: किया
0: गया
1: गया।
0: इस
1: हाँ
0: पे।
1: जी,
0: तो
1: हाँ
0: जी,
1: जी
0: तो कुल मिलाकर के अब थोड़ा सा मैं इसमें इस एक व्यवहार पक्ष की तरफ लेके जाऊं इसमें,
1: जी
0: कि रही है जैव विविधता, लेकिन आज जब हम इसको देखते हैं तो आज जनमानस को उससे जुड़ करके इसकी संरक्षण संवर्धन के लिए, इसको बनाए रखने के लिए क्या कुछ अभी कुछ किया जाना आवश्यक
1: बहुत
0: है
1: बहुत
0: इसमें?
1: बहुत कुछ,
0: क्योंकि अब वो
1: बहुत कुछ।
0: चीज़ें शायद खो रही
1: वास्तविकता यह
0: हैं।
1: है कि जो हमारा पुराना स्वरूप था ब्रज का, लताओं का, पताओं का, फूलों का, वनों का, जंगलों का, तालाबों का, नदियों का, पहाड़ों का,
0: अब जिस
1: वो,
0: कुंज कुंज की बात हम
1: हाँ,
0: करते
1: तो
0: हैं तो
1: वो जो है लुप्त प्राय सा होता जा रहा है। और उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम यहाँ पे प्रतिवर्ष भारी संख्या में वृक्षारोपण करें और जो कृषि भूमि है वो जो बढ़ती जा रही है जिससे जीवांश जो है समाप्त होते जा रहे हैं। जब जीवांश समाप्त होते जाएंगे तो नए पेड़ पौधे उसमें नहीं होंगे, नए कीड़े पतंगे नहीं उसमें पैदा होंगे। तो जो बढ़ती हुई कृषि भूमि का विस्तार जो हो रहा है उसे भी हमें रोकना होगा। कीटनाशक जो दवाओं का भारी मात्रा में प्रयोग हो रहा है उसको भी हमें रोकना होगा।
0: मतलब प्रकृति की तरफ, प्राकृतिक संसाधनों की तरफ, प्राकृतिक क्रियाकलापों की तरफ हमें लौटना पड़ेगा। जीवन को नैतिक और जीवन को प्राकृतिक बनाना होगा ताकि हम उन चीज़ों को संरक्षित कर सकें जो आज कम से कम इस रूप में है, तो वो तो बनी रहे, उसमें कुछ हम गुणात्मक और जोड़ सकें, ये व्यवहार की बात है। लेकिन नदी है तो नदी
1: स्वच्छ रहनी
0: स्वच्छ होनी
1: चाहिए,
0: चाहिए, पहाड़ है तो
1: उसमें
0: वो
1: पानी
0: संरक्षित
1: का
0: रहना
1: पर्याप्त
0: चाहिए।
1: प्रवाह रहना चाहिए। नदी में जो जीव जंतु पैदा होते हैं वो बराबर बने रहने चाहिए, उनकी जो प्रजातियां हैं वो

0: विलुप्त नहीं होनी चाहिए। जो हमारे जीवांश हैं पृथ्वी तल पर जो है, जो जंगलों में और पेड़ पौधों में जो होते हैं, वो यथावत बने रहने चाहिए। उसके लिए हमारा जो नैतिक चरित्र है उसको भी हमें ऊपर उठाना पड़ेगा, और जो हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक जो उद्भव होना है ब्रज के नाते, उसको हमें आगे बढ़कर के इस क्षेत्र में कार्य करना होगा। तभी संभव है कि हम जो है एक स्वच्छ और एक अच्छा सुंदर ब्रज बना पाएंगे, श्रेष्ठ पर्यावरण बना सकेंगे। और जब तक पर्यावरण हमारा श्रेष्ठ नहीं, दरअसल जैव विविधता और पर्यावरण एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जितनी ज्यादा जैव विविधता होगी उतना ही अच्छा पर्यावरण होगा
1: जी जी,
0: और जितना अच्छा पर्यावरण होगा उतनी ही अच्छी जैव विविधता होगी
1: जी जी, और ये दोनों ठीक रहेंगे तो एक मानवीय जीवन है
0: वो भी जीवन
1: फलीभूत होता रहेगा। उसमें इसमें निश्चित तौर पे हमें अपने जीवन को कम से कम प्रकृति में बनाना होगा, प्रकृति के जो उपादान है उनको संरक्षण देना होगा, और एक ऐसा जीवन जिसमें जैसे कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार की जो भावना है उसको अगर हम स्थापित कर पाएंगे तो शायद हम ब्रज की उस जैव विविधता को
0: जो हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं हैं
1: जी जी जी,
0: उनके साथ चलना होगा।
1: जी जी,
0: पेड़ों को पूजना होगा
1: जी जी,
0: नदियों को पूजना होगा, पहाड़ों
1: को
0: पूजना होगा
1: जी,
0: होली को मनाना होगा।
1: तो श्रोताओं, आप थे श्री शिवराज भारद्वाज जी और आप जानकारी दे रहे थे जैव विविधता के संदर्भ में।
2: अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण कार्यक्रम में ब्रज की जैव विविधता और पर्यावरण विषय पर ये जानकारी दे रहे थे शिवराज भारद्वाज, इनसे भेंट कर जानकारी प्राप्त कर रहे थे ओपी सिंह। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। सवेर के 9:15 होने को है। आपसे कुछ ही में आप
3: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बिजनौर और श्रावस्ती जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बिजनौर जिले की हलचल, आलेख और स्वर है अतुल गर्ग का।
4: नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की ग्रामीण महिलाओं के हौसले और आत्मनिर्भरता की जमकर सराहना की। बिजनौर जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के संयुक्त सहयोग से विदुर प्रेरणा ब्रांड की शुरुआत की गई है। इस स्थानीय ब्रांड ने जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल दी है। इस पहल के तहत जिले के स्वयं सहायता समूहों की लगभग 2,40,000 महिलाएं सीधे तौर पर जुड़कर काम कर रही हैं। इन समूहों द्वारा उच्च गुणवत्ता के अचार, पापड़, साबुन, झाड़ू, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक वाहन भी उत्पाद किए जा रहे हैं। विद्युत स्टोर के माध्यम से इन उत्पादों को देशव्यापी बाजार मुहैया कराया जा रहा है, जिसमें बिजनौर के स्थानीय उत्पादों को वोकल फॉर लोकल के तहत नई पहचान मिली है। मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया,
5: हमारी जो एसएचजी की महिलाएं जो इससे जुड़ी हुई हैं, जो या हर्बल टी प्रोडक्शन का कार्य कर रही हैं, उनके लिए बहुत उत्साहवर्धक है। साथ ही साथ नेशनल लेवल पर इसकी डिमांड बढ़ेगी, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो इनकी प्रोडक्शन यूनिट है उसको भी विस्तार देने की सोच रहे हैं, और उसके साथ ही साथ इसको हम पूरे जनपद में कई जो हमारी CLF है उसके अंतर्गत इस यूनिट्स को बढ़ावा देंगे कि पूरे जनपद में कई यूनिट्स में इसका प्रोडक्शन हो डिमांड के अनुसार। कैसे एक अच्छा प्रोडक्शन यूनिट हर ब्लॉक में कम से कम तैयार कर पाए, इसी पर विचार चल रहा है।
4: स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जारी किए गए नवीनतम आंकड़े काफी उत्साहजनक हैं। इन आंकड़ों के अनुसार आयरन फॉलिक एसिड सिरप सप्लीमेंट कवरेज में बिजनौर जनपद ने पूरे प्रदेश में 85% कवरेज के साथ पहला स्थान हासिल किया है। बिजनौर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में गंभीर लापरवाही बरतने पर मोहम्मदपुर देमल ब्लॉक की 27 आशा कार्यकर्ताओं को सेवा समाप्ति की संस्तुति की गई है। वहीं 5 आशा संगनियों का मानदेय रोकते हुए अंतिम नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों ने कड़ी चेतावनी दी है कि राष्ट्रीय जन कल्याणकारी कार्यक्रमों में किसी भी स्तर पर अनदेखी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनपद बिजनौर में गिरते भूजल स्तर को सुधारने और वर्षा जल को सहेजने के लिए जिला प्रशासन ने एक बड़े महाअभियान की शुरुआत की है। कैच द रेन राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत जिले के सभी 11 विकास खंडों में एक साथ 157 तालाबों में खुदाई का कार्य शुरू किया गया। बिजनौर में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पानी बचाने के उद्देश्य से प्रशासन ने यह बड़ा कदम उठाया है। जिले में अब तक 409 अमृत सरोवरों का निर्माण पूरा हो चुका है और कुल 562 भूमियों को चिन्हित किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि तालाब भूगर्भ जल को प्राकृतिक रूप से रिचार्ज करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा अभियान चलाया गया। जिले में बड़े पैमाने पर वृहद पौधारोपण किया जा रहा है। बिजनौर जिले में पर्यावरण को निर्मल बनाने के संकल्प

0: के साथ एक दिन में 75 लाख पौधे रोपे गए। विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत श्रमिकों द्वारा इस अभियान के लिए 75 लाख से अधिक गड्ढों की खुदाई पहले ही पूरी कर ली गई थी। जिले भर में शिक्षक से लेकर श्रमिकों और आम नागरिकों ने इस महाअभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बिजनौर की एक विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने करीब 14 साल पुराने बहुचर्चित प्रबल अग्रवाल हत्याकांड में अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। अदालत ने मामले में सभी 7 आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कार्यवास यानी उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह मामला दिसंबर 2012 का है, जब बिजनौर में एक समारोह के दौरान 18 वर्षीय प्रबल अग्रवाल की बेनामी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी और साक्षियों को छुपाने के लिए उनके शव को गंगा नदी में फेंक दिया गया था। 13.5 साल चली इस अदालती कार्रवाई के दौरान 305 पेशी हुई और 17 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अदालत ने दोषियों पर भारी जुर्माना भी लगाया है, जिसका 90% हिस्सा पीड़ित को दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी यौमे अशूरा का पर्व शांतिपूर्वक और अकीकत के साथ संपन्न हो गया है। इस अवसर पर जिले के विभिन्न कस्बों और शहरी क्षेत्रों में पारंपरिक ताजिए और मातमी जुलूस निकाले गए। मुख्य जुलूस बिजनौर शहर के मुख्य बाजारों और पारंपरिक रास्तों से होता हुआ गुजरा, जिसमें अकीदतमंदों ने काले लिबास पहनकर हजरत इमाम हुसैन और कर्बला के 72 शहीदों की शहादत को याद किया। सुरक्षा और शांति व्यवस्था के मद्देनजर जिला प्रशासन और पुलिस बल मुस्तैद नजर आए। संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल और पीएसी की तैनाती की गई थी। जुलूस के सुचारू संचालन के लिए शहर में ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू किया गया था।
1: बिजनौर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं श्रावस्ती जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अम्मार रिजवी का।
2: श्रावस्ती में वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग करने के लिए उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत जनपद के लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन भिंगा पहुंचे, जहां पर जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग, मुख्य विकास अधिकारी शाहिद अहमद की अगुवाई कर उनका स्वागत किया। तत्पश्चात ऑफिसर्स कॉलोनी ग्राउंड राजकीय पुस्तकालय भिंगा के समीप पहुंचकर वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 कार्यक्रम में अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा, विधायक रामफेरन पांडे ने पीपल पाकड़ व बरगद का पौधारोपण कर किया। इसके अलावा जिलाधिकारी ने पीपल का और मुख्य विकास अधिकारी शाहिद अहमद ने आम के पौधे का रोपण कर लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। इस अवसर पर अध्यक्ष ने कहा कि पेड़ पौधों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है।
3: बृहत वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का यह तीसरा चरण है, तो माँ के नाम पर पौधा लगाने का ध्येय हमारा है कि जिस तरह से माँ हमारी पूजनीय है, स्तुतीय है, उसी तरह से हम उसके नाम पर पौधा लगाएंगे। तो पौधा लगाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है पौधे को बचा करके और आगे पुष्पित फलित करने तक हम उसको ले जाएंगे।
2: श्रावस्ती जनपद में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित इलाज मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री सड़क दुर्घटना कैशलेस उपचार योजना पीएम राहत प्रभावी रूप से लागू की गई, जिसकी समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कच्छ में जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि दुर्घटना के बाद का पहला घंटा यानी गोल्डन आवर मरीज की जान बचाने के लिए बेहद अहम है। इस योजना के तहत बिना किसी स्वास्थ्य बीमा के भी घायल व्यक्ति को 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज किया जाएगा। जिलाधिकारी ने नागरिकों से गुड सेमेट्रिन बनकर घायलों की संकोच मदद करने हेतु अपील की। उन्होंने कहा कि इसके लिए मददगारों को कानूनी सुरक्षा के साथ राहवीर योजना के तहत 25,000 की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के श्रावस्ती पहुंचते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय विधायक ने उनका भव्य और जोरदार स्वागत किया। सीएम योगी ने श्रावस्ती को 83 परियोजनाओं की सौगात दी, जिसकी कुल लागत 396 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारी सरकार ने 9 लाख नौजवानों को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरी दी है। देश के सबसे पिछड़े 100 जिलों में कभी श्रावस्ती भी गिना जाता था, लेकिन आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP जैसी योजनाओं से श्रावस्ती विकास के पायदान पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।
4: विकास के पायदान पर आगे बढ़ने के लिए श्रावस्ती की इस लंबी छलांग के लिए मैं श्रावस्ती को बधाई भी देता हूँ।
2: श्रावस्ती में जिला समन्वयक कौशल विकास मिशन श्रावस्ती VK गुप्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से दिव्यांग रोजगार अभियान 3.0 का 3 अगस्त से 10 अगस्त 2026 तक अभियान चलाया जाएगा। दिव्यांग रोजगार अभियान के अंतर्गत एक सप्ताह के अंदर जनपद स्तर पर संचालित औद्योगिक इकाई एवं अन्य अधिष्ठानों की रिक्तियों

0: सपेक्षा जनपद व जनपद के बाहर दिव्यांगों को सेवायोजित कराया जाएगा। जो भी दिव्यांग रोजगार व स्वरोजगार से जुड़ना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन कार्यक्रम राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भिनगा श्रावस्ती से संपर्क कर सरकार द्वारा संचालित स्वरोजगार की योजना से जुड़ सकते हैं। श्रावस्ती जनपद में बाढ़ से प्रभावित खतरे को देखते हुए पर्याप्त सुरक्षा बलों का व्यवस्थापन किया जा चुका है। राहत उपयुक्त कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के क्रम अपर जिलाधिकारी ललित कुमार ने एचडीआरएफ और फ्लड पीएससी के जवानों के साथ बैठक कर तैयारी की समीक्षा की। अपर जिलाधिकारी ललित कुमार ने बताया कि जनपद में एक टीम एचडीआरएफ तथा 1.5 सेक्शन फ्लड पीएससी प्रशिक्षित एवं अनुभवी जवान बाढ़ आपदा से बचाव के लिए तैनात किए गए हैं। इनके पास 6 मोटरबोर्ड एवं अन्य बचाव उपकरण मौजूद हैं। जनपद वासियों को बाढ़ के समय रेस्क्यू करने के लिए पूर्वज की भांति नावों का भी प्रबंध किया जा रहा है। जनपद में गोताखोर चिन्हित हैं 128 नाविक और 68 नाव गांव में उपलब्ध की गई हैं, जिनमें आवश्यकता अनुसार परिस्थिति के अनुरूप कार्य किया जा सकेगा।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुनी बिजनौर और श्रावस्ती जिले की हलचल।
3: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।

0: समय सवेरे के 9:25 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम आबोहवा। विषय है भूमिगत जल। आलेख एवं वाचन है हेमंत झा के।
1: वास्तव में धरती पर अगर अमृत है तो वो और कुछ नहीं, पानी ही है। अपने शहर एवं घर को सुंदर बनाने के लिए प्रकृति की अनमोल धरोहर अर्थात भूजल के स्तर को गिराते जा रहे हैं। श्रोताओं, आज से पहले शहर में कुछ समय तक मुख्य मार्गों को छोड़कर शहर की ज्यादातर आंतरिक सड़कों पर दोनों ओर कच्ची जमीन हुआ करती थी। मानसून के दौरान बारिश का पानी इसी जगह से जमीन के अंदर चला जाता था, लेकिन शहर को सुंदर बनाने की कवायद में भविष्य की तस्वीर बिगड़ रही है। ब्यूटिफिकेशन प्लान के तहत लगाई गई टाइल्स के नीचे कंक्रीट की पक्की लेयर बिछाने की वजह से अब यहां से बारिश का पानी जमीन में नहीं जा पाता है एवं बारिश होने पर शहर के ज्यादातर इलाके का पानी सड़क, बिल्डिंग आदि से बहकर नाले नालियों के माध्यम से नदियों तक पहुंच जाता है। इस वजह से भूजल का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। पर्यावरणविदों के अनुसार शहरीकरण के नाम पर फैल रहा कंक्रीट का यह जंगल प्राकृतिक जल चक्र को तहस नहस कर रहा है। श्रोताओं, आज प्रत्येक नागरिक अपने घर को सुंदरतम बनाना चाहता है। बारिश के दिनों में घर के आसपास कच्ची जमीन में कीचड़ सा हो जाता है जो उस सुंदरता में एक धब्बा होता है। इससे बचने के लिए हम उस जमीन को या तो पक्का कराते हैं या उस पर सीमेंट कंक्रीट किया जाता है या और अधिक सुंदर दिखाने के लिए उसमें टाइल्स लगा दी जाती है। इस प्रकार हम पानी के प्राकृतिक मार्ग को, जिससे जल जमीन द्वारा शोषित होता है, उसे हम अवरुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार अन्य व्यवस्थाओं के साथ साथ हम भी भूजल स्तर गिराने में अपना योगदान देते हैं। श्रोताओं, सड़क के किनारे टाइल्स लगाने का सबसे बड़ा नुकसान भूजल स्तर के अलावा पेड़ पौधों को हो रहा है। कंक्रीट की लेयर डालने के बाद बिछाई गई टाइल्स से पेड़ों का दम घुट रहा है। इसका नतीजा यह है कि पेड़ों की ऊंचाई बढ़नी बंद सी हो गई है। साथ ही जड़ों तक पानी नहीं पहुंचने की वजह से पेड़ सूख रहे हैं। पर्यावरणविदों के अनुसार हाल ही में आए आंधी तूफान

में पेड़ों के उखड़ने की सबसे मुख्य वजह ये इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं कॉन्क्रीटाइजेशन ही है। अमूमन भूजल तक पेड़ों की कुछ जड़ें जाती है और कंक्रीट की लेयर बिछाने के बाद पेड़ की जड़ों के फैलने का रास्ता बंद हो गया है। लिहाजा भूजल नहीं पहुंचने से पेड़ कमजोर हो रहे हैं और आंधी में आधार कमजोर हो जाने के कारण पेड़ गिर जाते हैं। इस प्रकार ग्रीन सिटी क्लीन सिटी नाम पर कंक्रीट सिटी को साकार किया जा रहा है। टाइल्स लगाने से जमीन के अंदर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। सड़क के किनारे टाइल्स लगाने का फैसला आने वाले दिनों में स्लो पॉइजन का कार्य करेगा। मेरा आप सभी नगरवासियों से निवेदन है कि जहां तक संभव हो सड़कों के किनारे टाइल्स लगाने से परहेज करना चाहिए। जरूरी होने पर छेद वाली टाइल्स बगैर कंक्रीट की लेयर डाले लगानी चाहिए, जिससे बरसात के दिनों में पानी जमीन तक पहुंच सके। जबकि पेड़ों के आसपास करीब 1 वर्ग मीटर की कच्ची जगह की ऊंची घेराबंदी की जानी चाहिए। इसके अलावा छेद वाली टाइल्स नहीं मिले तो ऐसी स्थिति में इन्हीं इंटरलॉकिंग टाइल्स को लगाने का कार्य हम समझदारी से करें। इन टाइल्स को कच्ची जमीन को समतल करके थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर लगानी चाहिए, जिससे पानी का जमीन में जाने का प्राकृतिक मार्ग अवरुद्ध नहीं हो। इस प्रकार घर के आसपास की सुंदरता भी बनी रहेगी तथा भूजल स्तर बढ़ने में भी सहायता मिलेगी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा में भूमिगत विषय पर जानकारी जानकारी दे रहे थे हेमंत झा। FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 9:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन एवं ब्रज की समसामायिक गतिविधियों पर आधारित सजीव कार्यक्रम ब्रज दर्पण। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं जितेंद्र सिंह। कार्यक्रम संयोजन है ओपी सिंह का।
1: ब्रज दर्पण कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को जितेंद्र सिंह का नमस्कार। शिक्षा, सूचना और मनोरंजन से भरपूर आपके अपने कार्यक्रम ब्रज दर्पण में आप सभी श्रोता मित्रों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, दिन की शुरुआत अगर अच्छी बातों के साथ, अच्छे विचारों के साथ की जाए तो निश्चित रूप से इसका हमारी पूरी जिंदगी पर, हमारे आचरण पर, हमारे व्यवहार पर बड़ा गहरा असर होता है। क्योंकि जब हमारे अंदर एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है तो कहीं ना कहीं ये हमारी सफलता में भी काफ़ी सहायक होता है। इसलिए आज भी हम कार्यक्रम की शुरुआत ऐसे ही एक सुविचार के साथ करेंगे और आज का हमारा सुविचार है कि अपना हर कार्य प्रसन्नता के साथ करें। दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति कोई ना कोई कार्य करता है, चाहे वो विद्यार्थी हो, किसान हो, शिक्षक हो, कोई गृहिणी हो या कार्यालय में काम करने वाला कोई कर्मचारी हो। लेकिन एक बात हमारे जीवन को आसान बना सकती है और कठिन भी, और वो है हमारा उस कार्य के प्रति हमारा दृष्टिकोण। यदि हम अपने कार्य को बोझ समझते हैं तो छोटा सा काम भी हमें पहाड़ जैसा दिखने लगता है, लेकिन वही कार्य अगर हम प्रसन्नता के साथ, उत्साह के साथ करते हैं तो कठिन रास्ते भी हमारे लिए आसान हो जाते हैं। इसको लेकर आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाते हैं। एक बार दो मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे। एक व्यक्ति ने पहले मजदूर से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तो वो उदास होकर बोला, देखते नहीं, दिन भर पत्थर तोड़ रहा हूँ, क्या करूँ, बस यही मेरी मजबूरी है। फिर उसी व्यक्ति ने एक दूसरे मजदूर से वही प्रश्न पूछा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस पत्थर से एक सुंदर मंदिर बना रहा हूँ। दोनों का काम एक ही था लेकिन सोच अलग थी। पहला व्यक्ति काम को बोझ समझ रहा था तो दूसरा

अपने कार्य में खुशी और उद्देश्य खोज रहा था। तो मित्रों, यही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। जब हम अपने काम को सम्मान देते हैं तो उसमें हम आनंद ढूंढते हैं, तब हमें थकान भी कम लगती है और सफलता भी हमको जल्दी मिलती है। विद्यार्थी यदि पढ़ाई को बोझ समझेगा तो किताबें भारी लगेंगी, लेकिन यदि वह ज्ञान पाने की खुशी से पढ़ेगा तो वही पढ़ाई उसे सफलता की ओर ले जाएगी। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने हर कार्य को खुशी, लगन और सकारात्मक सोच के साथ करें, क्योंकि प्रसन्न मन से किया गया कार्य केवल सफलता ही नहीं देता, बल्कि हमारे जीवन को संतोष और आत्मविश्वास से भी भर देता है।

दोस्तों, जिम्मेदारियां तो जिंदगी में बहुत सी लगी रहती हैं, इसलिए ये जरूरी है कि हम इन सभी जिम्मेदारियों को बिना किसी तनाव के जीवन का आनंद लेते हुए, एंजॉय करते हुए, मौज मस्ती के साथ पूरा करें।

0: और इस जिंदगी का भरपूर आनंद लें। और कार्यक्रम में आपसे आगे और भी होंगी बहुत सी बातें। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान। हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट। बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: श्रोताओं, जैसा कि शासन के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न तरह की बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण अभियान चलाए जाते हैं, इसी श्रृंखला में आज दिनांक 3 अगस्त से 7 अगस्त तक राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत डिप्थीरिया से बचाव हेतु स्कूल आधारित TD-DPT टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, जिसके बारे में आज हमें विशेष रूप से जानकारी दे रहे हैं हमारे जनपद मथुरा के जिला प्रतिरक्षण अधिकारी एवं पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर रोहिता सिंह तेवतिया जी। डॉक्टर साहब, इस अभियान को लेकर क्या विशेष जानकारी आप हमारे श्रोताओं को देना चाहेंगे?
5: नमस्कार सभी को। सर्वप्रथम तो मैं आपको भी अभिवादन और धन्यवाद करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे श्रोताओं को पहुँचती हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को बताना चाहूँगा, शासन के दिशा निर्देशों के क्रम में हमने महा अप्रैल में ये स्कूल आधारित DPT TD का अभियान किया था, जिसमें कि 5 वर्ष के बच्चों को DPT का बूस्टर सेकेंड डोज और 10 वर्ष एवं 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को TD का टीका लगाया था। चूंकि उस समय में सभी स्कूल कवर नहीं हो पाए थे किसी कारणवश, तो उन छूटे हुए स्कूलों को या जिन स्कूलों में कवरेज कम रहा था या उसके पश्चात भी बच्चों छूट गए हमसे, तो केवल उन्हीं बच्चों को ये टीकाकरण का अभियान किया जाएगा। पूर्व में जिन बच्चों को उनकी उम्र के सापेक्ष में जो एंटीजन टीका लगना है वो लग चुका है, तो उनको ये टीके की आवश्यकता नहीं रहेगी। परंतु जिन बच्चों को टीका नहीं लग पाया था, तो उनको ये बहुत अति आवश्यक है इस टीके का। यह टीका हम क्यों लगा रहे हैं, तो मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही गंभीर बीमारी होती है जो डिप्थीरिया, जिसे आम भाषा में गलघोटू कहते हैं। यह बीमारी बड़ी जानलेवा होती है और इन्हीं आयु वर्ग के बच्चों को प्रभावित करती है सबसे ज़्यादा, और कभी कभी अभिभावक जान भी नहीं पाते हैं। और शुरुआती समय में जब लक्षण आते हैं उसके, खासकर बुखार, गले में खराश, गले में झिल्ली बनना, बच्चा फिर उसके पश्चात और बीमार होता है, तो खाना खाने में तकलीफ होती है, फिर पानी पीने में भी तकलीफ होती है, उसके पश्चात सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। तो किसी कारण से डिप्थीरिया की बीमारी से जब ग्रसित होता है और समय पर उसकी पहचान नहीं हो पाती है, तो फिर उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं और बच्चे की मृत्यु की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी के दृष्टिगत शासन की मंशा के अनुरूप सभी बच्चों का जीवन बहुत ही मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है, इसीलिए उन बच्चों को उन बीमारियों से जिनका टीका उपलब्ध है बचाव करना हम सभी का सामूहिक दायित्व है, न कि स्वास्थ्य विभाग का ही केवल, साथ में अभिभावकों का, परिजनों का, माता पिताओं का, सिविल सोसाइटीज का। इसीलिए शासन ने इसमें निर्णय किया और उसी निर्णय क्रम में हमारे जनपद मथुरा में दिनांक 3 अगस्त से और 7 अगस्त तक 4 दिन का ये विशेष अभियान है, जिसमें कि 3 तारीख सोमवार, जो कि आज ही है, और 4 तारीख कल मंगलवार, इसके पश्चात 6 और 7 तारीख बृहस्पतिवार शुक्रवार को ये टीके लगेंगे। ये टीके कहाँ पर लगेंगे जी? तो ये लगेंगे आपके सभी विद्यालयों में। माइक्रो प्लान के अनुरूप हमारे इस विभाग से ANM, वैक्सीनेटर, अन्य स्टाफ, हमारी आशा कार्यकर्त्री, वहाँ की आंगनबाड़ी दीदी भी हमें मदद करेंगी इसमें। हमने इसमें शिक्षा विभाग के साथ में, ICDS विभाग के साथ में समन्वय बैठक भी की है, उनके द्वारा विद्यालयों को सूचित भी किया गया है कि विद्यालयों में ये कार्यक्रम किया जाएगा।
6: तो इसमें सरकारी और निजी विद्यालय सभी शामिल हैं?
5: जी, इसमें सभी विद्यालय शामिल हैं, चाहे सरकारी विद्यालय हैं, चाहे गैर सरकारी विद्यालय हैं, चाहे मतलब एडेड विद्यालय हैं, मदरसे हैं, गुरुकुल हैं, सभी विद्यालय जहाँ पर इन आयु वर्ग के बच्चे पठन पाठन करते हैं, उनको ये हम टीके लगाने का कार्य करेंगे। मैं इसमें ये भी बताना चाहूँगा कि

0: मैंने जैसे शुरू में ही बताया, डिप्थीरिया की बीमारी कितनी जानलेवा है, उसके लक्षण भी बताए, इससे बचाव कैसे कर सकते हैं डिप्थीरिया की बीमारी से, यह जानना भी बहुत आवश्यक है। इसके बचाव के लिए वैक्सीन उपलब्ध है, जो कि 1.5 साल तक के बच्चों को तो आमतौर पर सभी लोग ध्यानपूर्वक टीका लगवा लेते हैं, लेकिन किसी कारणवश फिर उसके पश्चात जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो टीके को लगवाना भूल जाते हैं या फिर ध्यान नहीं रहता है उनको, तो ये जानना बहुत आवश्यक है सभी अभिभावकों को, माता पिताओं को, कि जब आपका बच्चा 5 वर्ष का हो गया है तब DPT का बूस्टर डोज लगता है, उसमें भी डिप्थीरिया की एक एंटीजन उसमें रहता है, जिसमें 3 प्रकार की बीमारियों से बचाव का टीका होता है ये। तत्पश्चात जब बच्चा बड़ा हो जाता है 10 वर्ष की आयु में उसको TD का टीका लगता है, जिसे TD10 कह देते हैं हम, और जब 16 वर्ष की उम्र में आता है बच्चा तब भी उसको TD का एक और डोज लगता है, जिसको TD16 कहते हैं। यह सभी टीके लगाना बहुत आवश्यक है, पूर्व में उसको भले ही सारे टीके लगे हों तब भी उसकी उम्र के सापेक्ष में ये टीके लगना आवश्यक।
1: यानी आपका कहने का आशय ये है कि बच्चे के जीवन काल में तीन बार ये टीका लगाना आवश्यक है।
0: हाँ, बच्चा जब बड़ा हो गया है तो तब 3 बार इसको है, अदरवाइज इसको हम ये ऐसे समझें 4 दफा पहले और 3 दफा, ये 7 दफा है टोटल, क्योंकि बच्चे की पैदाइश के पश्चात पहली बार जब उसको टीका 6 हफ्ते पर लगता है डिप्थीरिया के बचाव के लिए, तो पेंटा में होता है, और वो 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह की उम्र पर बच्चे को लगता है, तो 3 मरतबा तब, और 1 मरतबा जो है उसको जब 1.5 वर्ष का हो जाता है तब DPT बूस्टर का लगता है पहला डोज, तो 4 मरतबा तो जो छोटे बच्चों को हो जाएगा, और 3 बारी जो है जब बच्चा बड़ा हो जाता है, टोटल 7 बारी टीका उसको लेना होता है, तब जाकर के बच्चे को डिप्थीरिया की बीमारी से बचाव मिलता है। इतनी बार टीका लगाने का वजह क्या है, क्योंकि इसमें ये वैक्सीन किल वैक्सीन है, इससे जो इम्यूनिटी डेवलप होती है बच्चे में, जो प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होती है, वो समय के साथ वेन ऑफ हो जाती है, वो समय के साथ घट जाती है, इसलिए उसको बूस्टर डोज में उसको मामूली सी डोज दी जाती है, जो पूर्व में डोज दी गई उससे कम, जिससे कि उसे इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए।
1: जी, तो एक बार पुनः हमारे श्रोताओं को और बता दें कि किन किन आयु वर्ग में ये टीके लगाए जा रहे हैं।
0: मैं पुनः बताना चाहूँगा सभी अभिभावकों को, माता पिताओं को, सिविल सोसाइटीज को, इन्फ्लुएंसर्स को, कि दिनांक 3 अगस्त से 7 अगस्त तक स्कूल आधारित DPT-TD का अभियान रहेगा। इसमें सभी स्कूलों में, चाहे स्कूल सरकारी स्कूल हो, गैर सरकारी हो, मदरसे, गुरुकुल में, उन बच्चों को टीके लगेंगे जो कि 5 वर्ष के हैं, 5 से 6 वर्ष के बच्चे आमतौर पर कक्षा 1 में होते हैं। इसके पश्चात जो 10 वर्ष पर TD का टीका लगेगा, 10 वर्ष के बच्चे जो है 5वीं कक्षा में या 5वीं या 6ठी कक्षा में हो सकते हैं, 4थी या 5वीं कक्षा में हो सकते हैं, और 16 वर्ष की आयु के ऐसे बच्चे जिनको ये टीका लगेगा TD16, ये समझे 10वीं या 11वीं कक्षा में होंगे बच्चे, तो इन बच्चों को ये टीका लगेगा, इससे उनको डिप्थीरिया से बचाव में सहायता मिलेगी और इस बीमारी से वो बचे रहेंगे, और हमारा जो जनपद है वो डिप्थीरिया मुक्त हो, ऐसी ही जो हमारी परिकल्पना है, यही शासन के दिशा निर्देश हैं और शासन की मंशा भी है।
1: जैसा कि आपने बताया कि डिप्थीरिया, जिसे गलगोंठू भी कहा जाता है, तो ये काफी गंभीर बीमारी है, क्या इस बीमारी के कहीं आसपास कुछ अभी मामले पाए गए हैं?
0: कि अभी तो चूंकि बरसात के सीजन में ही ये रहता है, हमारे यहाँ अभी इक्का दुक्का ही केसेस आए, और लेकिन जब लैब में उनकी जांच भेजी तो वो कन्फर्म तो नहीं थे, तो वो संभावित केसेस थे, तो संभावित केसेस तो आए हमारे जनपद में, लेकिन अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में काफ़ी संख्या में इस तरह के केसेस आते हैं, और मृत्यु की भी खबर आती है दूसरे जनपदों से उससे, तो हमारे जनपद में तो अभी इस वर्ष में इस तरह की कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई है, और चूँकि लगातार कई वर्षों से सभी के सहयोग से हम ये अभियान लगातार चला रहे हैं, उसी का परिणाम है कि अब हम इन केसेस में कमी भी आई है, तो सबसे अच्छा इसमें यही है सही जानकारी हो सभी को, और सही जानकारी के आधार पर बच्चे को आप टीका लगवाएं, और टीका जब बच्चे को लगेगा तो ये बैक्टीरिया जो है पनपेगा ही नहीं समाज में, जब पनपेगा नहीं तो एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैलेगा भी नहीं, और इस स्थिति में हमारा समाज इस विकीर्ण बीमारी से, इस जो जानलेवा बीमारी है, इससे मुक्त होगा।
1: इसी के साथ एक प्रश्न और करना चाहेंगे, अगर कोई बच्चा अगर इस तरह की बीमारी से संक्रमित हो जाता है, डिप्थीरिया से संक्रमित हो जाता है, तो क्या उस स्थिति में उसका इलाज हो पाना संभव है या नहीं है?
0: ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, अगर डिप्थीरिया की बीमारी से ग्रसित है या नहीं है ग्रसित, यह आकलन डॉक्टर के द्वारा ही किया जाएगा, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं हमारे सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जिला स्तरीय चिकित्सालय हमारे जो हैं उनमें जो डॉक्टर्स बैठते हैं, हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर, ठीक है। और किसी बच्चे को अगर डिप्थीरिया ऐसी बीमारी से प्रभावित है और ऐसी रहता है, और डॉक्टर ने चेकअप किया है और मालूम चलता है कि इसको डिप्थीरिया हो सकता है, तो उसके लिए हमारे पास सभी जो

0: रक्षक दवाएं उपलब्ध हैं। इसमें एक दवा लगती है एडीएस की दवा, जिसे एंटी डिप्थीरिया सीरम कहते हैं, हमारे पास प्रचुर संख्या में उपलब्ध है। हमारे जिला चिकित्सालय में वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञों की देखरेख में इन बच्चों को ये दवा दी जाती है। कभी कभी जब बच्चे बहुत सीरियस होते हैं, जिनमें सांस लेने में बहुत तकलीफ आ रही है, वेंटिलेटर वगैरह की आवश्यकता है, तो फिर वो उसकी सुविधा मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध रहती है। तो बच्चा अगर डिप्थीरिया की बीमारी से ग्रसित हो गया है तो उसके बचाव के लिए भी हमारे पास सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। लेकिन प्रश्न वही उठता है कि बच्चे को अगर बीमारी ही ना हो, ऐसी स्थिति में पहुँचे ही ना, तो उसके लिए सबसे बढ़िया जो तरीका है वो टीकाकरण का है। और अगर मैंने बताया शुरू में, बच्चों को अगर डिप्थीरिया जैसी बीमारी अगर हुई है तो उसके लिए इलाज की सारी सुविधाएं उपलब्ध है हमारे यहाँ।
1: तो श्रोताओं, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ये बीमारी गंभीर है और इसी की रोकथाम के लिए ये विशेष स्कूल आधारित TD-DPT टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अगर आप ये जानकारी सुन रहे हो तो TD-DPT के टीके से अपने बच्चों को अवश्य आच्छादित कराएं ताकि उनका जीवन सुरक्षित रह सके। डॉक्टर साहब, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और सभी श्रोतागणों का भी, बहुत बहुत धन्यवाद।

मित्रों, अब हम अपने कार्यक्रम के अगले सेगमेंट क्या करें क्या ना करें में आपसे अपील करना चाहेंगे कि वृक्षारोपण कर पर्यावरण का संरक्षण करें, क्योंकि वृक्ष प्रकृति का अमूल्य उपहार हैं। वे हमें शुद्ध वायु, फल, फूल, औषधियाँ, लकड़ी तथा जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, और इसके अलावा वर्षा कराने में भी वृक्ष काफ़ी सहायक होते हैं। आज बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई के कारण हमारे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। ऐसे समय में वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण का सबसे प्रभावी और सरल उपाय है, और ये ज़रूरी है कि प्रत्येक नागरिक अपने जीवन काल में कम से कम एक वृक्ष तो अवश्य लगाए।

प्रत्येक नागरिक अपने जीवन काल में कम से कम एक वृक्ष तो अवश्य लगाए। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिवर्ष एक पौधा लगाए, उसकी देखभाल करे, तो हरित क्षेत्र में काफी वृद्धि हो सकती है। अधिक वृक्ष होने से तापमान नियंत्रित रहता है, प्रदूषण कम होता है और प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। विद्यालयों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर नियमित वृक्षारोपण अभियान चलाकर समाज को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बनाया जा सकता है। और इसके लिए कुछ बातों का विशेष रूप से आप ध्यान रखें, और जैसा मानसून का मौसम होता है और इस टाइम थोड़ी बारिश भी हो रही है, तो ऐसे ऋतु जो है, ऐसा मौसम वृक्षारोपण के लिए सबसे अनुकूल रहता है। ऐसे मौसम में ही वृक्ष लगाएं, क्योंकि ऐसे मौसम में ही वृक्षों के अधिक पनपने की संभावना रहती है। स्थानीय जलवायु के अनुसार उपयुक्त और देशी प्रजातियों के पौधों का चयन करें। पौधा लगाने के बाद नियमित रूप से उसमें पानी दें, उसकी देखभाल करें, पौधों को पशुओं से बचाएं और ट्री गार्ड या उस पर कोई बाड़ या कोई भी ऐसी रोक लगाएं जिससे कि पौधा बचा रहे। समय समय पर उसमें खाद डालें, खरपतवार हटाएं और परिवार, विद्यालय और समाज के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। और किन बातों को आपको नहीं करना है ये भी जान लें। बिना योजना के किसी स्थान पर भी पौधा ना लगाएं और पौधे लगाकर उसकी देखभाल करना ना छोड़ें। पौधों के आसपास प्लास्टिक, कूड़ा, कचरा या कोई रासायनिक अपशिष्ट नहीं फेंकें। पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कार्य जैसे आग लगाना या उन पर कील ठोकना इत्यादि नहीं करें, और ऐसे पौधे नहीं लगाएं जो कि उस पौधे के विकास को रोकें। इन बातों का ध्यान रखें और वृक्षारोपण के लिए खुद भी जागरूक हों और अन्य लोगों को भी प्रेरित करते रहें।

0: रास वंश के झूले में विराजमान होकर आराध्य भक्तों को दर्शन देंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के तीर्थ स्थलों और धार्मिक आयोजनों में भीड़ प्रबंधन को लेकर दिए गए सुझावों के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रशासन का दावा है कि जिले में पहले से ही भीड़ प्रबंधन जैसे संवेदनशील विषय और हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। हालांकि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासन ने आईआईटी के साथ भीड़ नियंत्रण का सर्वे कराने और मास्टर प्लान में बड़े बदलाव करने का निर्णय लिया है। और अब एक नज़र आज के दिन विशेष पर डाल लेते हैं। आज की तिथि 3 अगस्त इतिहास के झरोकों से ये कहती है कि आज ही के दिन सन 1492 में इटली का नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस 3 पोत के साथ भारत की खोज के लिए रवाना हुआ था। और आज ही के दिन सन 1678 में रॉबर्ट लासले ने अमेरिका में पहले जहाज का निर्माण किया था। और आज ही के दिन सन 1886 में हिंदी के विद्वान मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। और आज ही के दिन सन 1914 में पहला समुद्री जहाज पनामा नहर से गुजरा था। और आज ही के दिन सन 1985 में बाबा आमटे को जनसेवा के लिए रैमसन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो मित्रों, इसी के साथ कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम। अगले कार्यक्रम में हम आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, फिर किसी नई जानकारी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज दर्पण। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे थे जितेंद्र सिंह। कार्यक्रम संयोजन था OP सिंह का। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

मित्रों, अब हमने उठा लिया है आज का अखबार और साझा कर लेते हैं आज की खास खबरों को आपके साथ। आज की खास खबरों में है, ठाकुर राधावल्लभ श्रावण मास में पहली बार 23 अगस्त को 200 किलो चांदी के जड़ित

फिल्म संगीत में आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का यह पहला गीत किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म है अमर प्रेम। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है राहुल देव वर्मन ने।

किशोर कुमार की आवाज में अभी आपने सुना अमर प्रेम फिल्म का गीत। और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और भूपेंद्र की आवाजों में गाया किनारा फिल्म का ये गीत। गीत लिखा है गुलजार ने, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

लता मंगेशकर और भूपेंद्र की आवाजों में गाए किनारा फिल्म को अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संबंधी सूचना के बाद। श्रोताओं, अपरिहार्य कारणों से शाम को प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के प्रसारण समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। ब्रज ग्रामीण किसानवाड़ी कार्यक्रम अब शाम 6:15 के स्थान पर 6:50 से 7:20 तक प्रसारित होंगे। संध्या वंदन कार्यक्रम का समय 6:30 से 6:50 तक एवं ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम का समय 6:15 से 6:30 तक रहेगा। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म आपकी कसम में। इस गीत को गाया है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत में कार्यक्रम का ये अगला गीत।

या सिर देसाई और जीत गांगुली की आवाजों में अभी आपने सुना परमाणु फिल्म का गीत। और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत। आतिफ असलम और तुलसी कुमार की आवाजों में फिल्म है सत्यमेव जयते।

आतिफ असलम और तुलसी कुमार को अभी आपने सुना फिल्म सत्यमेव जयते में। और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का यह अगला गीत, फिल्म है वजह तुम हो। इस गीत को गाया है मीत बिरोज और अरमान मलिक ने।

मीत ब्रोज और अरमान मलिक की आवाजों में अभी आपने सुना वजह तुम हो फिल्म का गीत। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। फिल्म है एक्सपोज, इस गीत को गाया है अंकित तिवारी ने।

अंकित तिवारी की आवाज में अभी आपने सुना एक्सपोज फिल्म का गीत। और जब सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत, अरिजीत सिंह और शिल्पी राव की आवाजों में फिल्म है वॉर।

अरिजीत सिंह और शिल्पा राव को अभी आपने सुना फिल्म वॉर में, और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। अरमान मलिक की आवाज़ में फिल्म है वाई चीट इंडिया।

अरमान मलिक को अभी आपने सुना फिल्म वाई चीट इंडिया में। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाएंगे इस कार्यक्रम संबंधी सूचना के बाद। श्रोताओं, अपरिहार्य कारणों से शाम को प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के प्रसारण समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। ब्रज ग्रामीण किसानवाड़ी कार्यक्रम अब शाम 6:15 के स्थान पर 6:50 से 7:20 तक प्रसारित होंगे। संध्या वंदन कार्यक्रम का समय 6:30 से 6:50 तक एवं ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम का समय 6:15 से 6:30 तक रहेगा। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में लीजिए अब सुनिए अनुराधा पौडवाल को फिल्म महिमा काशी विश्वनाथ की में। गीत लिखा है पंडित किरण मिश्रा ने और संगीत दिया है राम शंकर ने।

अनुराधा पौडवाल की आवाज में अभी आपने सुना महिमा काशी विश्वनाथ की फिल्म का ये गीत। और लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत में ये अगला गीत, सोनू निगम और सुखविंदर सिंह की आवाजों में। फिल्म है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

सोनू निगम और सुखविंदर सिंह की आवाजों में गाए फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों के इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं पर संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश है फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज की प्रस्तुति रश्मि शर्मा की है।

तो आखिर आप भी आ ही गए। तो जनाब, जब हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम ने आपके दिल की धड़कनें बढ़ा ही दी हैं, तो फिर सोचना कैसा।

0: अरे अरे घबराइए मत, मैं बीमार नहीं आपका इलाज करने आई हूँ, क्योंकि अब आपका इलाज होगा आप ही के पसंदीदा गीतों के साथ और हमारे साथ की गई प्यारी प्यारी बातों के साथ। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन श्रोता हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। हेलो आकाशवाणी
1: दीदी को सादर भरा नमस्कार मेरा।
0: ओहो भैया को सादर नमस्कार मेरा, क्या बात है।
1: दीदी सेम टू आपके लिए भी। और दीदी काफी देर से प्रयास कर रहा हूँ, मैं समझ गया था कि आज दीदी जरूर होंगी। आज दीदी स्टूडियो में आ जाती हैं तो समझो आप आई बाहर आई।
0: अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ परिचय भी दे दीजिए अपने श्रोताओं को।
1: और दीदी आप जब आ जाती है तो समझो जैसे गुलाब का खेत होता है ना, गुलाब का खेती।
0: हाँ जी।
1: और गुलाब की खेती में कितने अच्छे फूल खिलते थे, कैसे जब उसके पास होके निकलते कैसी आती खुशबू, ऐसे ही खुशबू आ जाती है आपकी जब स्टूडियो में आप आ जाती है।
0: तो मैं स्टूडियो में होती हूँ, मेरी खुशबू आप तक पहुँच जाती है।
1: हमारे तक आ जाती है, नाक में भी आ जाए, कानों में भी आ जाए, सब में आ जाती है।
0: जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, टेलीपैथी के द्वारा आपको ये अनुभव होता रहे और आप मुझे महसूस करते रहे। तो आज देखिए सावन का महीना आरंभ हो चुका है और इस महीने में ना बहुत सारी बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। कोई एक खास बात बताइए जो आपको पसंद हो इस महीने की।
1: और दीदी अब सावन का महीना तो खैर आ ही गया, अब ये तो आपको ही मालूम है, बहन भाइयों का तो त्योहार है ही, ये आपको पता ही है। और देखिए रंग बिरंगी राखियां भी, देखो सावन का महीना तो है ही है। और देखिए हरियाली तीज भी आएंगी, उसमें झूला भी पड़ेंगे, क्या नाम है आपके मंदिरों में भी है, घर पे जो ठाकुर जी की सेवा पूजा करते वो लोग भी अपना जो है भगवान जी को झुलाएंगे
0: जी।
1: तो दीदी अब जो है सावन का महीना तो है ही है और रंग बिरंगी राखियां आएंगी, अब देखो फिर रक्षाबंधन आ जाएगा
0: जी,
1: भाइयों की कलाइयों में राखियां बांधेंगी।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर महीना है ये, प्रकृति का महीना, महादेव की स्तुति का महीना, त्योहारों का महीना है ना। और चाय पकोड़े और चाय के साथ में गर्मा गर्म समोसे का महीना, घेवर का महीना, फेनी का महीना, तो इस महीने का तो बस आनंद ही अलग है,
1: आनंद ही अलग है दीदी
0: जी।
1: और आप हमसे हुक्म करें तो आप हमारे घर आइए, आप पधारिए, आपको समोसा भी खिलाए जाएंगे, पकौड़ी भी खिलाई जाएंगी, चाय भी पिलाई जाएगी, ठंडा भी पिलाया जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जरूर आएंगे, जब ठाकुर कृपा होगी तो हम जरूर आएंगे। और आपकी पसंद अब जानना चाहेंगे
1: दीदी। देखिए मैं आपका ब्रेड रेडियो श्रोता मित्र जाना पे।

0: जी बिल्कुल, ये बात तो हम जानते हैं और हमारे श्रोता भी जानते हैं, आपकी आवाज सुनकर सभी पहचान ही लेते हैं, क्योंकि कुछ श्रोता तो हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं। और पसंद बता दीजिए अब अपनी।
1: काली टोपी लाल रुमाल, गोरी ओढ़ के जब ये अरे मैं ध्यान भूल गया, गोरी के चली के दिल मेरा, इस तरीके से कुछ गाना है वो।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार बोल रहा हूँ, गांव डंडी, तहसील भद्रवाह, जिला डोडा, जम्मू कश्मीर से।
0: जी स्वागत है कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
1: बहुत ठीक ठाक है, मस्त है, बहुत सुहाना मौसम है, इधर बारिश लग रही है थोड़ी थोड़ी।
0: जी तो आनंद ले रहे हैं आप सावन के महीने का रिमझिम फुहारों के
1: जी
0: साथ।
1: सही बात है, आनंद ले रहे हैं। आपको सर कैसी गर्मी?
0: जी बस हम भी सोच रहे हैं कि बादल जो अभी उमड़ घुमड़ रहे हैं, लग रहा है कि बारिश आएगी, बस इंद्रदेव कृपा करें तो शायद बरस भी जाए और हम भी
1: क्या
0: सावन का आनंद ले सकें।
1: बात।
0: और जी आपसे जानना चाहूंगी परशुराम जी कि इस महीने की कोई एक खास बात जो आपको बेहद पसंद हो बताइए।
1: बहुत पसंद हो, हमें इस बार घूमना ही पसंद है, बाकी कुछ नहीं।
0: जी बस इस महीने में घूमना पसंद है, तो मतलब आप एडवेंचर प्रेमी हैं और प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं भर के,
1: जी
0: जी भर के, क्योंकि ये महीना बेहद खूबसूरत महीना है।
1: बहुत मस्त महीना
0: जी
1: होता
0: तो
1: है।
0: चलिए पसंद बता दीजिए, क्या सुनना चाहेंगे?
1: उजाला फिल्म का गाना है, ओ मोरा नादान बाल माना जाने दिल की बात।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, परिचय दे दीजिए।
1: मैं जबलपुर एमपी से अशोक सिंह बात कर रहा हूँ।
0: अशोक जी, स्वागत है कार्यक्रम में, कैसे हैं आप?
1: धन्यवाद, मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं? आकाशवाणी परिवार में मथुरा
0: जी, सब बढ़िया है, सब आनंद मंगल है। और देखिए, एक सवाल आज आपसे पूछना है
1: जी।
0: सावन का महीना आरंभ हो चुका है, इस महीने में विशेष रूप से आपको कौन सी ऐसी बात है जो बहुत अच्छी लगती है
1: सावन के महीने की?
0: हाँ जी,
1: सावन का महीने की पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। सावन के महीने में हरियाली और झूला देख के बहुत मजा लगता है, बचपन का याद आता है
0: जी। तो चलिए, हरियाली और झूला आपको बेहद पसंद है इस महीने में, और पसंद अपनी गीत की भी बता दीजिए।
1: गीत सुना दी, तो सावन के झूलों ने तुमको बुलाया।
0: अच्छा, मैं परदेसी वापस आया
1: जी, निगाह पिक्चर।

0: हम सभी
1: हाँ जी हाँ
0: को।
1: जी हाँ जी
0: हाँ
1: बिल्कुल, गाना भी मुझे वही सुनना है। ये
0: जी
1: पुराना गाना है, फिल्म का नाम तो मेरे को मालूम नहीं है।
0: हाँ,
1: सावन का महीना पवन करे शोर, यही वाला गाना सुनवा दीजिए।
0: अच्छा गाना तो मैं सुनवाऊंगी आपको, लेकिन मुझे बस एक सवाल आपसे पूछना था।
1: बिल्कुल बिल्कुल पूछिए।
0: इस महीने में आपको कौन सी ऐसी खास बात है जो बहुत पसंद है?
1: इस महीने में तो सबको ही अच्छा लगता है, कुछ खान पान भी नया मिलता है, घेवर वगैरह भी मिलता है खाने के लिए। इस महीने का खास मिठान वही
0: ओ, तो आप घेवर का इंतजार करते हैं पूरे साल कि कब घेवर मिलेगा, सावन का महीना आए और हमें घेवर मिले।
1: देखिए, हर
0: हाँ
1: हर त्योहार का और हर उसका थोड़ा खान पान अलग ही हुआ करता है,
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे
1: तो इस
0: पितृपक्ष में
1: महीने
0: हमारे यहाँ इमरती खूब बनती
1: जी।
0: है ना, सावन का
1: हाँ
0: महीना
1: जी
0: आएगा तो हलवाइयों की दुकान पर सभी के आगे जो है घेवर की जो लेयर्स हैं ट्रे में सजी
1: बिल्कुल
0: दिखाई देंगी
1: जी,
0: आपको। हाँ
1: आपके सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे चल रहे हैं, अच्छे लगते हैं।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? परिचय दे दीजिए।
0: जी, योगेश जांगड़े बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ से।
1: कैसे हैं योगेश जी?
0: बढ़िया है, अच्छे हैं
1: और देखिए, अभी सावन का महीना आरंभ हो चुका है ना। इस महीने
0: जी।
1: में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें बेहद खास लगती हैं और हम पूरे वर्ष भर प्रतीक्षा करते हैं इस महीने की। तो कोई एक खास बात बताइए इस महीने की जो आपको पसंद हो।
0: बहुत ज्यादा तो यही है, थोड़ा सा तीज त्योहारों का आगमन हो जाता है, और जो कहते हैं एक हरियाली का जो एक प्रकृति जो छटा बिखेरती है, तो वो काफी ज्यादा मनोरम होता है।
1: जी बिल्कुल, और प्रकृति की छटा भी हमें बहुत पसंद आती है और साथ ही साथ तीज त्योहारों का भी हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। इस महीने में विशेष रूप से जो घेवर और फैनी बनते हैं उनका भी हमें इंतजार रहता है ना। तो अभी सावन के महीने का कोई गीत नहीं है छत्तीसगढ़ की भाषा में?
0: गीत तो बहुत है।
1: आपको नहीं आता?
0: हाँ, थोड़ा बहुत याद है
1: तो चलिए थोड़ा बहुत ही सुना दीजिए। हाँ
0: जी, एक गीत है, सावन
1: हाँ
0: महीना घटा घन घोर, सावन महीना घटा घन घोर, मोर जिनगी माया के तय कर दे अंजोर, मोरियावारा डोंगरी माँ बैराग ले ले जी।
1: क्या बात है, मजा आ गया। अब इसका अर्थ भी बता दीजिए।
0: तो ये सावन के मौसम पर ही बताया गया है, जो सावन का महीना होता है, घटा घनघोर मतलब जो बारिश जो होता है उसको बताया गया है। तो
1: ओ जी,
0: फिर जीवन का भी जुड़ाव है कि मोर जिंदगी में आके जब सावन होता है तो अपने जीवन में आके मतलब कुछ कर दे, कुछ इस तरह से उसका सारांश है।
1: जी, बहुत ही प्यारी सी बात आपने इस गाने के माध्यम से हम सभी को बताई है। और अब बता दीजिए अपनी पसंद भी।
0: फिल्म आपकी कसम से अगर फरमाइश ना हुआ होगा तो एक गीत है, जय जय शिव शंकर, ये सुनवा देते।
1: ठीक है।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज की प्रस्तुति रश्मि शर्मा की थी। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम तेरे आने की क्या उम्मीद, तेरे आने की क्या उम्मीद, मगर कैसे कह दूं कि इंतजार नहीं।

अभी आपने सुना असली नकली फिल्म से लिया ये गीत। इस गीत को अपनी आवाज़ दी लता मंगेशकर ने, संगीतबद्ध किया था शंकर जय किशन ने, शैलेंद्र का लिखा ये गीत अभी आप सुन रहे थे। वो आ रहे हैं, वो आते हैं, आ रहे होंगे, शब-ए-फिराक ये कहकर गुजार दी हमने।

फिल्म हमरा से लिया ये गीत अभी आपने सुना शैलेंद्र महेंद्र कपूर की आवाज में। साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था रवि ने।

गुलों में रंग भरे बाद नौहार बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार करूं।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साथ खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मोहम्मद रफी को अभी आप सुन रहे थे फिल्म फर्ज में। श्रोता, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। अपरिहार्य कारणों से शाम को प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के प्रसारण समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। ब्रज ग्रामीण किसानवाणी कार्यक्रम अब शाम 6:15 से 6:50 तक 6:50 से 7:20 तक प्रसारित किए जाएंगे। संध्या वंदन कार्यक्रम का समय 6:30 से 6:50 तक और ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम का समय 6:15 से 6:30 तक रहेगा। सूचना समाप्त हुई।

0: मुझे कुछ कहना है,
1: मुझे भी कुछ कहना है।
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
0: अच्छा मैं कहती हूँ

लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह के युगल सुरों में ये गीत हमने लिया था फिल्म बॉबी से। गीत के बोल आनंद बख्शी के थे, संगीत बत किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने। ब्रह्मचारी फिल्म से लिया ये गीत, अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत लता मंगेशकर आशा भोसले के युगल सुरों में, फिल्म आए दिन बहार के।

के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने। ब्रह्मचारी फिल्म से लिया ये गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत लता मंगेशकर आशा भोसले के युगल सुरों में फिल्म आए दिन बहार के।

इस गीत के साथ फिल्म संगीत के कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

आए दिन बाहर की। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर आशा भोसले को। गीत के बोल आनंद बख्शी के थे, संगीत पर किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

ये गीत अभी आपने सुना फिल्म थी जब प्यार किसी से होता है, लता मंगेशकर कुमार सानू के युगल सुरों में। अभी आप सुन रहे थे ये गीत।

साथियों आप सुनेंगे कार्यक्रम संबंधी सूचना। अपरिहार्य कारणों से शाम को प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के प्रसारण समय में कुछ परिवर्तन किया गया है। ब्रज ग्रामीण किसान वाणी कार्यक्रम अब शाम 6:15 के स्थान पर 6:50 से 7:20 तक प्रसारित होंगे। संध्या वंदन कार्यक्रम का समय संध्या 6:30 से 6:50 तक रहेगा और ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा 6:15 से संध्या 6:30 तक। सूचना समाप्त हुई।

फुटपाथ इस फिल्म में अभी आपने सुना आशा भोसले एसपी बाला सुब्रमण्यम को। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था नदीम श्रवण ने।

आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था नुसरत फतह अली खान ने। कच्चे धागे इस फिल्म में भी आप सुन रहे थे अलका याग्निक कुमार सानू को।

0: मैंने प्यार किया। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म से लिया ये गीत लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर, एसपी बाला सुब्रमण्यम के सुरों में। इस गीत के साथ फिल्म संगीत के कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट।

0: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
1: FM 102.2 MHz पर लीजिए प्रस्तुत है ब्रज लोकगीतों का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं प्रतिभा पाठक और सखियों की गाए मल्हार। तो आइए आनंद लेते हैं सावन के महीने में मल्हारों का।

0: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या?
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से अभी आप आनंद ले रहे हैं ब्रज लोकगीतों के कार्यक्रम में, प्रतिभा पाठक के गाए मल्हारों का।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: FM 102.2 MHz पर अभी आप आनंद ले रहे हैं प्रतिभा पाठक और सखियों के गाए मल्हार का।

0: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या?
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी।

0: Services and Seamless Travel, Noida International Airport, where dreams take off.
1: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से अभी आप आनंद ले रहे हैं प्रतिभा पाठक और सखियों के गाए मल्हारों का.

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर गतिरोध के कारण आज बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। श्री राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी और हंगामा जारी रहने के कारण सभापति ने सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। उधर लोकसभा की कार्यवाही भी बार बार बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। लोकसभा अध्यक्ष ने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर किए जा रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की और सदन की कार्यवाही जारी रखने का आग्रह किया, लेकिन गतिरोध जारी रहने पर सदन को पहले 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
1: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके हैं, इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भीखा भाई रबारी और मध्यप्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। कर्नाटक में आज शाम लोकभवन में 20 नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। डीके शिवकुमार ने 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके अलावा 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। आज 20 मंत्रियों के शामिल होने पर मंत्रिमंडल की अधिकतम क्षमता 34 हो जाएगी। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज बातचीत होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में समीर राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल तथा युवा कार्यक्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी। संसद के दोनों सदनों ने भी आज राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में उत्कल मणि पंडित गोप बंधु दास की प्रतिमा का अनावरण किया। गोप बंधु दास ओडिशा के एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने ओडिया दैनिक द समाज की भी स्थापना की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
3: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
4: आराम से मैडम।
3: क्या?
4: आराम से पहुंचेंगे मैडम, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
5: इजी एक्सेस एंड सी

ब्रज लोकगीतों के कार्यक्रम में अभी आप आनंद ले रहे थे प्रतिभा पाठक और सखियों के गाए लोकगीतों का। इसी के साथ कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर का 1 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुन सकेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट पेपर लीक को लेकर

0: Let's travel Noida International Airport, where dreams take off.
1: Bhaiya, jaldi chalo.
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आइए आप जानते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आज संध्या 6:15 पर आप सुन सकेंगे ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे ब्रज वार्ता जे बेरी सावन चुआवे। वार्ताकार होंगे मनमोहन गुप्ता। भक्ति बरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन संध्या 6:30 से आज प्रसारित किया जाएगा।

इसी के साथ साथियों, आज ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम का भी समय परिवर्तन किया गया है। याद रखिएगा, संध्या 6:50 से आप सुनेंगे ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय लेकर आएंगे बरसात में पशु प्रबंध, कृषि में युवाओं की भूमिका। इसी के साथ सुन सकेंगे भेंट वार्ता। विषय लेकर आएंगे बकरियों के प्रमुख संक्रामक रोग और टीकाकरण। जानकारी देंगे डॉक्टर अशोक कुमार।

बहनों के लिए होगा वनिता लोक कार्यक्रम दोपहर 1:15 से। इस कार्यक्रम में सुनिएगा आरोग्य वार्ता क्रम में एक वार्ता। विषय लेकर आएंगे माँ का दूध सर्वोत्तम आहार। इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर अंशु शर्मा। हमारी सांध्यकालीन सभा का आरंभ करेंगे युववाणी कार्यक्रम से। इस कार्यक्रम में आज की बात क्रम में आज के विषय रहेंगे मैथिली शरण गुप्त जयंती, एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता। इसी के साथ युवा साथी फिल्म संगीत का भी आनंद ले सकेंगे।

संसद समीक्षा। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा रात्रि 8 बजे से। विधानमंडल समीक्षा, जिसका अनुप्रसारण लखनऊ केंद्र करेगा रात्रि 8:20 से। संसद काल में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण रात्रि 10 बजे होगा।

संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी सुनिएगा संध्या 7:31 से। एक ही फिल्म से यह कार्यक्रम रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे।

0: अभी तक आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: आइए करते हैं अपनी मातृभूमि को नमन।

0: संवेद सुरों में अभी आप सुन रहे थे देशगान, आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ। भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम वनिता लोक।

अजनबी सी लगती है कभी पहचानी सी लगती है, अजनबी सी लगती है कभी पहचानी सी लगती है, जिंदगी मुझे तो एक अधूरी कहानी सी लगती है। नमस्कार बहनों, मैं हूँ आज आपके साथ आशु रावत, लेकर आपका अपना कार्यक्रम वनिता लोक, जिसे आप सुन रही हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 MHz पर। बहनों, हमारे देश में महिलाओं के लिए उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, उनकी आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए, उनको सशक्त बनाने के लिए ऐसी बहुत से महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार और योजनाएं बनाई गई हैं, जिससे कि महिलाएं इन योजनाओं का और इन अधिकारों का लाभ उठाकर अपने जीवन को थोड़ा सरल और सहज बना सकती हैं। लेकिन बात तब आती है बहनों, जब हमारी बहुत सी सखी सहेलियों को, बहुत सी महिलाओं को इन योजनाओं की, इन अधिकारों की जानकारी ही नहीं होती। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी-कभी किसी के भी जीवन में इस तरह की विकट परिस्थितियां आ जाती हैं, कुछ ऐसी नेगेटिव परिस्थितियां आ जाती हैं कि अगर इन चीज़ों के बारे में किसी भी महिला को जानकारी हो और वो इनको थोड़ा अपनाएं, फॉलो करें, इनके समझ के हिसाब से काम करें, तो उसका जीवन थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, थोड़ा सा सहज हो सकता है। तो सबसे पहले तो बहनों, इन योजनाओं की, इन अधिकारों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे बहुत से अधिनियम हैं, ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिनका अगर हम लाभ उठाएं तो हम अपने आप को सशक्त बना सकते हैं, अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकती हैं। अगर हम योजनाओं की बात करें बहनों, तो इन योजनाओं में से एक योजना है उज्ज्वला योजना। अक्सर हम पहले अपनी दादी नानी को देखा करते थे कि वो लोग चूल्हे पे या सिगड़ी पे खाना बनाया करती थी लकड़ियों के साथ, और धुएं की वजह से ऐसी बहुत सारी परेशानियां थीं, ऐसी बहुत सारी बीमारियां थीं जो उन्हें हो जाया करती थीं। खासकर बहुत बहुत से महिलाओं में अस्थमा की परेशानी या टीवी की भी दिक्कत इन्हीं धुएं की परेशानी से होती थी। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये उज्ज्वला योजना सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए बनाई गई, जिसमें कि महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर का कनेक्शन दिया जाता है, जिससे कि वो अपने इसका प्रयोग किचन में करें, अपने रसोई में करें, साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। एक और योजना है बहनों, जिसके बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस योजना के अंतर्गत बहनों, पहले तो बच्चियों का लिंग अनुपात, इसको सुधारने से इस पर ध्यान दिया गया। दूसरा, उनकी शिक्षा को कैसे बेहतर बनाया जाए, उन्हें कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, कैसे सशक्त बनाया जाए, इस योजना के अंतर्गत इन सभी मुद्दों पर ध्यान दिया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसी योजना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था बहनों, अभी भी बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि जिनको बेटी नहीं चाहिए, तो वो प्रेगनेंसी के बाद जब उन्हें पता लगता है टेस्ट के माध्यम से कि बेटी है, लड़की है होने वाला बच्चा, तो वो उसको या तो अबॉर्ट करवा देते हैं या किसी भी तरह से कोई भी नुस्खा अपनाकर उसको नहीं रहने दिया जाता है घर में। तो ये जो दिक्कत है, कहीं ना कहीं इससे बच्चियों के लिंग अनुपात में तो फर्क आया ही था, लेकिन इस योजना के बाद थोड़ा सा इसका असर भी देखने को मिला और उनके लिंग अनुपात में थोड़ा सुधार हुआ। दूसरी बात है कि उनकी शिक्षा को बेहतर कैसे बनाया जाए, इसके लिए भी ये योजना बहुत काम करती है। तो बच्चियों का लिंगानुपात सुधारना, उनकी शिक्षा पर ध्यान देना इस योजना का उद्देश्य है। उसके अलावा बहनों, प्रधानमंत्री वंदन योजना, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, और इसके अंतर्गत किसी भी महिला के माँ बनने पर, जब वो मतलब स्तनपान कराती है अपने बच्चे को, तो स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सरकार की तरफ से हर महीने 5,000 रुपये की आर्थिक धनराशि दी जाती है सहायता के तौर पर, जिससे कि वो अपने स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रख सके। क्योंकि ऐसा होता है ना कि स्तनपान कराने वाली जो महिला

महिलाएं होती हैं उनके शरीर में कोई ना कोई कमी हो ही जाती है, तो वो बच्चे का तो ध्यान रखती ही हैं लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे कर देती हैं। तो ये जो धनराशि है उन्हें अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए दी जाती है, जिससे कि वो अपना भी ध्यान रखें साथ में बच्चे का भी ध्यान रखा जाए। एक है बहनों सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना के अंतर्गत एक निश्चित धनराशि किश्त के तौर पर बच्ची के नाम से जमा करी जाती है और फिर जब वो 18 साल की हो जाती है, मतलब जब बालिग हो जाती है वो, तो उसके बाद ये धनराशि एक बहुत बड़े अमाउंट में बदल जाती है, जिसका कि लाभ उसके बड़े होने के बाद उसकी पढ़ाई में या उसकी शादी ब्याह में किसी भी तरीके से उसके लिए किया जा सकता है। और अगर बहनों बहुत से अधिनियम और नियमों की हम बात करें तो महिलाओं के लिए ऐसे बहुत से अधिनियम हैं जो उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए सरकार की तरफ से बनाए गए हैं अगर उन्हें फॉलो किया जाए तो। जैसे एक है उन्हीं में से घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम। इसमें घर में होने वाली कोई भी हिंसा, किसी भी तरह की कोई भी मारपीट या कोई भी गलत व्यवहार अगर किसी भी महिला के साथ होता है तो वो इस अधिनियम के तहत अपनी सुरक्षा और अपनी किसी भी तरह की मदद वो सरकार से या अपने आसपास के जो भी थाने वगैरह हैं वहां पर जाकर कर सकती है, प्राप्त कर सकती है। इसके अलावा समान पारिश्रमिक अधिनियम। इसमें क्या होता है बहनों कि जहाँ भी कार्यस्थल पर हमारी बहनें, हमारी सखी सहेलियाँ काम करती हैं, बहुत सी महिलाएं जो काम करती हैं उनको पुरुषों के बराबर वेतन नहीं दिया जाता है, तो पुरुषों को ज़्यादा मिलता है जबकि काम लगभग दोनों से एक ही तरह का लिया जाता है। तो जितना पुरुषों को मिलता है कहीं ना कहीं महिलाएं उसमें थोड़ा सा पीछे रहती हैं पारिश्रमिक के, अगर उससे देखा जाए तो नज़रिए से। तो कार्यस्थल पर दोनों को समान वेतन मिले ये अधिकार समान पारिश्रमिक अधिनियम के तहत महिलाओं को प्राप्त है, जिसका वो फायदा भी उठा सकती हैं। इसके अलावा कार्यस्थल पर किसी भी तरह का लैंगिक उत्पीड़न, ये भी एक अधिनियम आता है। अगर उनके संग कोई भी किसी भी प्रकार की अब्यूजिंग लैंग्वेज या किसी भी तरह का कह सकते हैं शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना उनको अगर होती है अपने कार्यस्थल पर, तो वो उत्पीड़न लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के तहत मदद मांग सकती हैं, अपनी सुरक्षा निश्चित कर सकती हैं। तो ऐसे बहुत से अधिनियम हैं बहनों, ऐसे बहुत से नियम हैं, बहुत सी योजनाएं हैं अगर जिनको हमें जानकारी हो, हमारी महिलाओं को, सभी सखी सहेलियों को अगर जानकारी हो तो इनका लाभ उठाकर, इनको अपनाकर अपना जीवन थोड़ा सरल और सहज बना सकती हैं।

एक औरत के कई रूप होते हैं, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। एक औरत बहन के रूप में, बेटी के रूप में, नानी, दादी, मौसी, बुआ और न जाने कौन कौन से रूप में समाज में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाए रहे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है, जो सबसे अहम किरदार होता है एक औरत का, जो निभाती है, वो होता है माँ का। माँ जो एक बच्चे के लिए सब कुछ होती है, और माँ से बढ़कर बहनों कोई नहीं हो सकता। माँ अपने बच्चे के लिए दुनिया की किसी भी मुश्किल से लड़ सकती है, और कहते हैं ना कि किसी भी व्यक्ति की पहली गुरु माँ ही होती है। अपने खून को अपने दूध के रूप में जब वो बच्चे को पिलाती है, उसका पालन पोषण करके उसको बड़ा करती है, तो बच्चा अपने आप में एक अलग ही दिखाई देता है कि हाँ, उसको माँ का प्यार भी मिला है। और मतलब माँ का जो अटैचमेंट बच्चे के संग होता है, वो अलग ही देखने को मिलता है। इस तरह से माँ का दूध ही बच्चे को दुनिया से और दुनिया भर की बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। उसे शारीरिक तौर पर तो मजबूत बनाता ही है बहनों, साथ ही उसको मानसिक तौर पर भी मजबूत करता है। माँ का दूध बहनों बच्चों के लिए तो एक संपूर्ण आहार होता ही है। आपको बता दें कि खुद माँ के लिए भी स्तन पान कराना, यानी कि बच्चे को फीड कराना, खुद उसके लिए भी बहुत लाभदायक होता है। जब भी कोई महिला माँ बनती है, तो होता क्या है कि जब माँ बनती है तो डिलीवरी के बाद जो गर्भाशय होता है, वो अपनी पूर्व स्थिति से थोड़ा सा अलग हो जाता है। लेकिन जब कोई महिला फीड कराती है बच्चे को, तो धीरे धीरे वो फिर अपनी जैसी पहली स्थिति होती है उसमें आ जाता है, जिससे कि कोई भी परेशानी उसको उससे संबंधित नहीं होती है। इसके अलावा बहनों, जो महिलाएं फीड कराती हैं, यानी कि अपने बच्चे को स्तनपान कराती हैं, उनमें किसी भी तरह के का कैंसर जो होता है, यानी कि स्तन कैंसर बहुत देखने को मिलते हैं महिलाओं में, गर्भाशय का कैंसर बहुत देखने को मिलता है। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से बच्चे को स्तनपान कराया जाए, तो ऐसी महिलाओं में इन कैंसर का जोखिम भी काफ़ी कम रहता है। और अक्सर देखने में आता है बहनों कि माँ बनने के बाद महिलाओं का वजन बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। तो जो लोग, जो महिलाएं, जो बहनें हमारी फीड कराती हैं, वो फीड कराना बच्चे माँ का, यानी कि महिलाओं का वजन कंट्रोल करने में भी बहुत मदद करता है। और सबसे बड़ी बात बहनों, जब भी कोई महिला अपने बच्चे को फीड कराती है, तो बच्चे के साथ उसका एक अपना अटैचमेंट, एक जुड़ाव पैदा होने लगता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं कि भागम भाग वाली लाइफ में, क्योंकि हमारी महिलाएं, बहनें, सखी, सहेलियां सब कामकाजी होती हैं, तो ऐसा अक्सर होता है कि काम के चक्कर में वो पूरी तरह से उनको फीड नहीं करा पाती हैं, क्योंकि दिन में अक्सर बाहर रहती हैं, रात उनको केवल मिलती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी, अगर आप कामकाजी हैं, तो जब भी आपको मौका मिले, अगर लंच में आप जा सकती हैं घर, रात और शाम तो अपनी है ही, तो बच्चे को फीड ज़रूर कराएं, इससे वो वंचित ना रह पाए। और दूसरा, कुछ महिलाओं का ये रहता है कि उनका फिगर कहीं खराब ना हो जाए, अगर हम फीड कराएं तो उनका फिगर गड़बड़ ना हो जाए, उनका व्यक्तित्व ना खराब हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे का और माँ का अटैचमेंट एक दूसरे के लिए जब होता है, तो उसकी रौनक दोनों के ही चेहरे पे वो अलग होती है। तो जितनी ज़रूरत हो सके, क्योंकि जितनी ज़रूरत बच्चे को माँ की होती है, उतनी ही ज़रूरत माँ को भी बच्चे की रहती है, इसलिए दोनों एक दूसरे का खास ख्याल रखें, ये बहुत ज़रूरी है। और स्तनपान कराना माँ की सेहत के लिए तो बहनों बहुत ज़रूरी है ही।

0: और कहते हैं ना कि बिना माँ के दूध के, अक्सर ऐसे बच्चे बिना माँ के दूध के जो पलते हैं वो ज़्यादातर बीमार ही देखे जाते हैं, कोई ना कोई परेशानी उनको लगी ही रहती है। तो माँ माँ को अपने दूध से बच्चे को न वंचित रखा जाए, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज ऐसी ही एक आरोग्य वार्ता हम आपके लिए लेकर आए हैं बहनों, माँ का दूध सर्वोत्तम आहार, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अंशु शर्मा।
1: माँ का दूध सर्वोत्तम आहार। मैं डॉक्टर अंशु शर्मा, सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट, आज इस टॉपिक पर आप लोगों को बहुत कुछ बताने वाली हूँ। किसी भी न्यूबॉर्न या नवजात शिशु के लिए माँ का दूध नेचर का सबसे अनमोल गिफ्ट है। यह ऐसा परफेक्ट संपूर्ण आहार है जिसे स्वयं नेचर ने शिशु की आवश्यकताओं के अनुसार बनाया है। इसमें न्यूट्रिशन, सुरक्षा, प्रेम और ममता चारों का प्यारा सा संगम होता है। WHO के अनुसार जन्म के बाद के शुरुआती 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पर्याप्त होता है। उसे पानी, शहद, चाय, घुट्टी या अन्य कोई आहार देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में पानी और पोषण पर्याप्त मात्रा में होता है। इसी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। यूनिसेफ का स्टेटमेंट है कि अगर हर शिशु को पहले 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाए तो पर ईयर 1.5 मिलियन इन्फेंट्स की लाइफ्स हम लोग बचा सकते हैं और लाखों शिशुओं के हेल्थ और डेवलपमेंट को बेटर कर सकते हैं। इसलिए एक समझदार माँ का दायित्व है कि जन्म के शुरू के 6 महीने वह अपने शिशु को केवल और केवल अपना दूध पिलाए। ऐसा करके आप अपने शिशु पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शिशु का जन्म सिद्ध अधिकार है और आपका दायित्व। जन्म के तुरंत बाद माँ के ब्रेस्ट से निकलने वाला गाढ़ा पीले रंग का दूध कोलोस्ट्रम कहलाता है। इसे बच्चे का फर्स्ट वैक्सीनेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे एंटीबॉडीज होते हैं जो बच्चे को कई प्रकार के इन्फेक्शंस और बीमारियों से ताउम्र बचाते हैं। इसलिए अपने शिशु को जन्म के 1 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करा देनी चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि कई घरों में दादी और नानी इस कोलोस्ट्रम को फेंक देती हैं और शिशु को यह कोलोस्ट्रम मिल ही नहीं पाता है। यह गलत बात है। प्रत्येक नवजात को जन्म के तुरंत बाद माँ का यह पहला दूध कोलोस्ट्रम अवश्य पिलाना चाहिए और शुरू के 6 महीने सिर्फ माँ का दूध और उसके बाद पूरक आहार या कॉम्प्लीमेंट्री फूड के साथ 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। समूचे संसार में एक शिशु के लिए ब्रेस्ट फीडिंग इतनी जरूरी है कि हर वर्ष 1 अगस्त से 7 अगस्त तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ही माँ के दूध के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और प्रत्येक शिशु को जीवन की शुरुआत से ही सर्वोत्तम पोषण दिलाना है। आइए अब जानते हैं कि एक शिशु को माँ के दूध से क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले तो माँ का दूध संपूर्ण पोषण या परफेक्ट न्यूट्रिशन है। माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। इसमें बच्चे के लिए उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स होते हैं, जिससे बच्चे की पोषण संबंधी सभी जरूरतें पूरी होती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो माँ का दूध उसके बच्चे के लिए संपूर्ण पोषण है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ब्रेस्ट मिल्क उसके शिशु के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, क्योंकि जन्म के बाद शिशु का अपना इम्यून सिस्टम पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाता है। ब्रेस्ट मिल्क में विशेष रूप से IgA एंटीबॉडीज होती हैं जो शिशु की नाक, गले और आंतों पर एक लेयर बना लेती हैं। यह सुरक्षा लेयर होती है। इससे उसके शिशु में बैक्टीरिया एंड वायरसेस एंट्री करके बीमारी नहीं फैला पाते हैं। शुरू के 3-4 दिन का दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, उसमें तो बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज, प्रोटीन्स और रोग प्रतिरोधक तत्व होते हैं। स्टडीज बताती हैं ब्रेस्ट फीडिंग करने वाले बच्चों में डायरिया कम होता है, निमोनिया और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, कान के इन्फेक्शंस जैसे ओटाइटिस मीडिया कम होते हैं और भी कई अनवायरल इन्फेक्शन से शिशु को ब्रेस्ट फीडिंग से सुरक्षा मिलती है। रिसर्चेस बताती हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग से शिशु को आगे चलकर एलर्जीज और अस्थमा का खतरा भी कम होता है। शिशु को मोटापा, ओबेसिटी, ओवरवेट और टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा भी कम होता है।

ब्रेस्ट फीडिंग से शिशु में हीमोफिलस मेनिनजाइटिस के केसेस कम देखे गए हैं। यह एक प्रकार का दिमागी बुखार है जो बहुत घातक बीमारी है। रिसर्चेस बताती हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग से शिशु में कुछ कैंसर्स जैसे ALL, AML, हॉजकिंस, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा के केसेस भी कम देखे गए हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग शिशु के डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क आसानी से पच जाता है। इस तरह यह मिल्क बच्चे के कमजोर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे को डायरिया, दस्त, कॉन्स्टिपेशन और गैस की प्रॉब्लम्स भी कमी होती हैं। ब्रेस्ट मिल्क में DHA और ARA जैसे जरूरी फैटी एसिड्स होते हैं जो शिशु के ब्रेन यानी मस्तिष्क के डेवलपमेंट और आँखों की रेटिना के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। जीवन के पहले 2 वर्षों में शिशु का ब्रेन बहुत तेजी से डेवलप होता है। ब्रेस्ट मिल्क ब्रेन की नर्व सेल्स की माइलिन लेयर के विकास में हेल्प करता है। इससे शिशु की याद रखने की पावर, सीखने और सोचने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा स्टडीज बताती हैं कि जो बच्चे शुरू के 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं वो अपने माँ से ज़्यादा इमोशनली जुड़े होते हैं। मतलब यह है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग से माँ और बच्चे का रिश्ता गहरा होता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट फीडिंग से शिशु को ही फायदा होता है, बल्कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग से उस माँ को भी ढेर सारे फायदे होते हैं। आइए जानें। नंबर 1, ब्रेस्ट फीडिंग से उस माँ में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है जो बच्चेदानी या यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है। इससे उस माँ को PPH यानी डिलीवरी के बाद की ब्लीडिंग का खतरा कम होता है और यूट्रस या बच्चेदानी जल्दी से अपने सामान्य आकार में आ जाती है। ब्रेस्ट फीडिंग से एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न होती हैं जिससे माँ को प्रेगनेंसी के बाद आए हुए फैट या मोटापा को कम करने में हेल्प मिलती है, यानी माँ अपने पुराने फिगर को जल्दी से पा लेती है। है ना ये अच्छी बात? रिसर्चेस बताती हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग से मदर को ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर एंड एंडोमेट्रियल कैंसर होने की संभावना कम होती है। ब्रेस्ट फीडिंग से पोस्टपार्टम डिप्रेशन की रिस्क कम रहती है जो कि एक बड़ी समस्या है। यह एक माँ के लिए बहुत ही गंभीर समस्या है जिसमें माँ बहुत डिप्रेशन में चली जाती है। जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं वो डिप्रेशन की शिकार नहीं होती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग से माँ को एनीमिया के चांसेस कम होते हैं। एनीमिया मतलब खून की कमी, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से माँ का मंथली साइकिल का रिटर्न डिले हो जाता है और वो माँ अपना आयरन रिजर्व बिल्ड करती है, यानी कि उसका खून निकलने से बचता है तो उसका बॉडी में वो खून बढ़ता जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग से माँ को टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ऑस्टियोपोरोसिस आदि की होने की संभावना भी कम है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्रेस्ट फीडिंग से माँ और बच्चे की इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ती है, ये तो हम सभी जानते हैं। आइए अब लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, मिथ्स या भ्रांतियाँ। क्वेश्चन नंबर 1, पहला पीला दूध कोलोस्ट्रम गंदा होता है, इसे फेंक देना चाहिए। यह बिल्कुल गलत बात। कोलोस्ट्रम शिशु की फर्स्ट वैक्सीन है। इसमें बीमारियों से बचाने वाले एंटीबॉडीज भरपूर होते हैं। इसे शिशु को जरूर देना चाहिए, यह उसका अधिकार है। क्वेश्चन 2, जन्म के बाद शिशु को शहद, घुट्टी, पानी, चाय देना बच्चे के लिए अच्छा है, इसे देना चाहिए। यह बात भी बिल्कुल गलत। जन्म से शुरू के 6 महीने तक केवल और केवल माँ का दूध ही पर्याप्त है, बच्चे को इसके अलावा कुछ भी ना दें। क्वेश्चन 3, माँ का दूध पतला है इसलिए इसमें पोषण नहीं है। यह क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। माँ के दूध का रंग और गाढ़ापन बदल सकता है लेकिन यह हमेशा पौष्टिक होता है। क्वेश्चन 4, माँ बीमार हो जाए तो ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर देनी चाहिए? गलत, हर बार नहीं, अपने डॉक्टर से पूछें। सामान्य खांसी, जुकाम, बुखार में मास्क पहन करके ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। क्वेश्चन 5, गर्मियों में बच्चे को पानी देना जरूरी है? गलत, माँ के दूध में 70% पानी होता है। 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाएं तो इससे उसकी पानी की पूर्ति भी पूरी होगी। क्वेश्चन 6, अगर बच्चा बार बार दूध मांगता है तो इसका मतलब माँ का दूध कम है? यह बात बिल्कुल गलत है। हो सकता है आप एक बार में शिशु का पेट नहीं भर पा रहे हैं, बच्चा दूध पीते पीते सो जाता है, उसको एक बार में ही ढंग से ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। आइए जानें आपका बच्चा ढंग से ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है या नहीं। अगर

0: बच्चा 6 से 8 टाइम्स पर डे यूरिन कर रहा है, अगर बच्चा 8 से 12 टाइम्स पर डे फीडिंग ले रहा है, दूध पीने के बाद 2 घंटा करीब सो रहा है, अगर उसका डेली वेट गेन 15 से 30 ग्राम है, तो इसका मतलब बच्चा ढंग से ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, आपका माँ का दूध बिल्कुल भी कम नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, मैं वर्किंग मदर हूँ, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकती। ये बात भी बिल्कुल गलत है। अगर आप वर्किंग हैं तो इससे आपके शिशु को क्या लेना देना, ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक उसका राइट है, आप कैसे मैनेज करेंगे ये आपको देखना है। क्वेश्चन 8, मेरे दूध कम आता है, क्या करूं, मेरा बच्चा भूखा रह जाता है। इसका आंसर है, आपका एक ही काम है, अपने बच्चे को 6 माह तक अपना दूध पिलाएं, उसको बार बार ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। बार बार ब्रेस्ट फीडिंग कराने से ब्रेस्ट मिल्क की मात्रा बढ़ जाती है, यह एक विशेष साइकिल है, जितनी बार आप दूध पिलाओगे उतनी बार आपका दूध आना बढ़ता जाएगा। अगर आपने ये सोचकर कि मेरे दूध कम आ रहा है या आ ही नहीं रहा, मेरे बच्चे का पेट नहीं भर रहा, तो उसको ऊपर का दूध देना शुरू कर दिया, तो आपका दूध आना कम होता जाएगा और बिल्कुल बंद हो जाएगा। 1-2 महीने बाद आप इस बात के लिए तरस जाएंगे कि आपको अपने बच्चे को दूध पिलाना है, आपका बच्चा आपका दूध पिएगा ही नहीं। इसलिए अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपना दूध पिलाएं, अपनी डाइट का ख्याल रखें, पौष्टिक खाना खाएं। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर्मूला दूध माँ के दूध जितना ही अच्छा है, ये बात भी बिल्कुल गलत। माँ का दूध सर्वोत्तम है, कहा जाता है माँ का दूध अमृत, बोतल का दूध पूतना का दूध। तो क्या आप अपने बच्चे को पूतना का दूध पिलाएंगे? पूतना मतलब जहर। अंत में सिर्फ इतना ही कहकर मैं अपनी बात खत्म करती हूँ कि माँ का दूध है जीवन का आधार, स्वस्थ बचपन का यही है आहार, हर शिशु का है ये पहला अधिकार, माँ का दूध है सर्वोत्तम आहार।
1: तो बहनों, अभी आप सुन रही थी आरोग्य वार्ता के अंतर्गत माँ का दूध सर्वोत्तम आहार। वार्ताकार थी डॉक्टर अंशु शर्मा। बहनों, हमारे यहाँ त्योहारों का महीना शुरू हो गए हैं, मतलब हर महीने कोई ना कोई त्यौहार पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम घरों में बनाते हैं, खासकर बच्चों की पसंद की भी बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, और बच्चों को मिठाइयाँ खूब पसंद होती हैं। तो ऐसे में एक होता है मोदक, जिसे हम सब लोग जानते हैं, लेकिन मोदक को भी हमारी सभी सखी सहेलियाँ बड़े अलग अलग तरीके से बनाती हैं। जैसे एक होता है फ्राइड मोदक, जिसको भी आप फ्राई करके बना सकती हैं। इसके लिए करना क्या होता है कि अपने परिवार के सदस्यों के हिसाब से आधा मैदा और आधा आटा, गेहूं का आटा, दोनों को मिला लीजिए और उसको हल्के से गुनगुने पानी से उसमें थोड़ा सा मोयन डाल के, यानी कि थोड़ा सा कोई भी तेल या घी डालकर उसको गूंथ के रख लीजिए। उसको साइड में रखने के बाद इसकी फिलिंग बनाने के लिए थोड़ा सा नारियल लीजिए, थोड़ा सा गुड़ लीजिए, मतलब जितना भी आप मीठा खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा या कम, उसके हिसाब से गुड़ ले लीजिए, थोड़ा सा सफ़ेद तिल, इलायची पाउडर और चुटकी भर नमक। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके और जो एक मिक्सर तैयार कर लीजिए, और जो आटा आपने अभी गूंद कर रखा था 5-10 मिनट बाद होने के बाद उसकी छोटी छोटी लोई लेकर उसको पूड़ी के बराबर साइज़ में बेलिए, और ये जो मिक्सचर आपने बनाया है ये पूरा थोड़ा थोड़ा करके एक चम्मच के हिसाब से, एक चम्मच या आधा चम्मच उसमें फिल कर दीजिए। और इनको सारे मोदकों को फिल करने के बाद थोड़ी देर के लिए, कम से कम 15 मिनट के लिए, इनको फ्रिज में रख दीजिए, जिससे कि ये थोड़ा सा सेट हो जाए अपनी शेप में, मोदक जैसे हम बनाना जानते हैं, क्योंकि अक्सर देखते रहते हैं तो मोदक की जो शेप होती है उसी को बनाइए अपने हाथों से धीरे धीरे करके। उसके बाद इसको लगभग 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए, और जब 15 मिनट लगभग हो जाएं फिर इनको निकाल कर आप तलिए और सुनहरे होने तक भून कर फिर अपने बच्चों के सामने या अपने घर के बड़ों बुजुर्गों के सामने रखिए, देखिए कितने अच्छे लगते हैं। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम को देते हैं यहीं पर विराम। आप सभी को आशु रावत का नमस्कार।

गुरु रंधावा तुलसी कुमार को अभी आप सुन रहे थे फिल्म बधाई हो में। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से अभी आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत फिल्म आवारापन से। इस गीत को अपनी आवाज दी है मुस्तफा जाहिद ने।

सईद कादरी की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था प्रीतम ने। मुस्तफा जाहिद के गाए आवारापन फिल्म से लिए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत के कार्यक्रम को अब हम यही विराम देते हैं। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भीखाभाई रबारी और मध्यप्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। बिहार से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: पिछले 30 सालों से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर विधानसभा सीट पर इस बार उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने शुरुआती बढ़त बना ली है। प्रशांत किशोर मतगणना की शुरुआत के साथ ही प्रत्येक राउंड की गिनती में लगातार आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा के नीरज कुमार हैं, जिन्हें अब तक 15,000 से ज्यादा मत मिले हैं। वहीं आरजेडी की रेखा कुमारी 4,000 से अधिक मतों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। उपचुनाव में कुल 25 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अप्रैल में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया था। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार पटना।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिनमें नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई भी शामिल है। लोकसभा की कार्यवाही आज पहले स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे फिर से आरंभ हुई तो पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज शुरू करने का प्रयास किया। इस बीच सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने का आग्रह किया। इसके बावजूद गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
2: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके हैं, इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही दिन में 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण अध्यक्ष सभापति सीपी राधाकृष्णन ने दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले दोनों सदनों की ओर से ग्लासगो में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी गई। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत के पैरा एथलीटों ने भी 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल पैरा खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि अगले राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2030 में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होंगे।
2: कल संपन्न हुए समापन समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच और टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक के द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि प्रत्येक सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए उचित रूप से सीमांकित और अतिक्रमण मुक्त स्थान फुटपाथ सुनिश्चित किया जाए। न्यायमूर्ति पीएस नरसिंह

0: सिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज को संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा, जिसमें पैदल यात्रियों के लिए निर्धारित स्थान को मोटर वाहनों के लेन से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके और उन्हें अतिक्रमण मुक्त रखा जा सके। पीठ ने कहा कि लक्ष्य बिना किसी बड़े निवेश या निर्माण के प्राप्त किया जा सकता है। भारत ने वर्ष 2023 में डिजिटल अंगदान पोर्टल के शुभारंभ के बाद से 3 वर्ष के भीतर आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञाओं का 5 लाख से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पिछले 12 वर्ष में भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अंगदान को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने राष्ट्र से अंगदान को सबसे बड़ा दान मानने की अपील की है।
1: आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और भोजन आहार ऐसा लें जो आपके शरीर को बीमारियों से मुक्त रखे, और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े, तो समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा।
0: इस अवसर पर सुश्री अनुप्रिया पटेल ने 1 साल तक चलने वाले जुग जुग जियो अभियान का शुभारम्भ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल मुख्यालय AFHQ की सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत धरोहर हैं। वे आज नई दिल्ली में AFHQ असैन्य सेवा दिवस के अवसर पर संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। श्री सिंह ने AFHQ की सेवाओं को राष्ट्र के निर्णायक शक्तियों में से एक बताया।
2: किसी भी सेना को शक्ति केवल हथियारों और गोले बारूदों से ही नहीं मिलती है, बल्कि उन हजारों ऐसे अदृश्य लोगों के द्वारा भी मिलती है जो हमेशा उसके पीछे, उसके सपोर्ट में सदैव पूरी लगन के साथ खड़े रहते हैं। आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज उन्हीं अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्तियों में से एक है।
0: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत उज्बेकिस्तान आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया है और अगले 3 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य अधिक निवेश, व्यापार बाधाओं में कमी और स्वास्थ्य सेवा तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में गहन सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित भारत उज्बेकिस्तान व्यापार मंच में उन्होंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के व्यवसायों में उपलब्ध अवसरों में निवेश करने पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग और व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव भी उपस्थित थे। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चल रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। कर्नाटक में आज शाम 20 नए मंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह लोकभवन में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही डीके शिवकुमार मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 34 हो जाएगी। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: काफी निरीक्षा के बाद आज कर्नाटका में मंत्रिमंडल का विस्तार संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के करीबी माने वाले विधानसभा सदस्यों को मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त हुआ है और कुछ सदस्य जो सिद्धरामैया के करीबी माने जाते थे उनको बदला गया है। सिद्धरामैया और शिवकुमार के मंत्रिमंडल में 13 बदलाव देखे जा रहे हैं। कांग्रेस कमेटी द्वारा GS पाटिल को असेंबली स्पीकर और सलीम अहमद को काउंसिल के चेयरपर्सन के स्थान के लिए चुना गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल x@

0: यार न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज अगले दौर की शांति वार्ता हो सकती है। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कल तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिन तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की आशंका है। तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, लक्षद्वीप, उत्तरी आंध्र कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में पानी का स्तर कम हो गया है। राज्य सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन शुरू कर दिया है और जिन परिवारों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है उन्हें 1,20,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों और फसलों के नुकसान के लिए भी मुआवजा की घोषणा की गई है। हालांकि भद्रक और जाजपुर जिलों के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि और सब्जियों की फसलें बह गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के विभिन्न देवस्थानों में सुबह से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तमिलनाडु में आज आषाढ़ माह का 18वां दिन है। इसे आषाढ़ पेरुक्कू कहा जाता है और ये देवी अम्मन को समर्पित है। इस त्योहार में कृषि का आधार रही नदियों में जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रार्थना की जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5,00,000 से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर। अमरीका और ईरान के बीच आज अगले दौर की शांति वार्ता संभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

एफ एम 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए, प्रस्तुत है NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी

0: जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है।
1: वो लिखते हैं, रेडियो उद्घोषक और श्रोता का रिश्ता आवाज से शुरू होकर विश्वास, आत्मीयता और दिलों के जुड़ाव तक पहुंचता है। इसी आत्मीयता को हम उमंग कार्यक्रम में देख सकते हैं। यही जुड़ाव बना रहे।
0: जी हाँ श्रोताओं, यही जुड़ाव बना रहे, हमारी भी यही इच्छा है। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
1: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी सुनवाई जाती है। इसी कड़ी में श्रोता संवाद में सर अजीत जी और प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल जी से मनोदर्पण विषय पर बातचीत सुनी और पसंद आई।
0: आगे आपने लिखा है, कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी सराहनीय लगी। इस जानकारी को सुनकर विद्यार्थी, शिक्षक एवं अभिभावक निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। श्रोता संवाद में मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण जानकारी सुनवाने के लिए हम प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल जी एवं सर अजीत जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: एक निवेदन भी करते हैं कि ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित करें। किसी कारणवश ये कार्यक्रम श्रोता सुनने से वंचित रह गए हों तो वो भी इस कार्यक्रम को सुन सकें और कार्यक्रम सुनकर लाभ भी उठा सकें। एक बार पुनः आभार, शुक्रिया, धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और आदित्य जंघेल के साथ साथ अंजलि जंघेल जी का। आप लिखते हैं कि रेडियो की पहचान उसकी आवाज नहीं बल्कि श्रोताओं के दिलों से उनका जुड़ाव है। और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान जिज्ञासा, विराट तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
1: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव लिखते हैं,
0: नियत स्टेशन से अगर हम उमंग कार्यक्रम नहीं भी सुन पाते हैं तो किसी न किसी स्टेशन से जरूर सुन लेते हैं
1: जी,
0: क्योंकि ये आसपास के किसी न किसी स्टेशन से अलग अलग समयों में प्रसारित होता रहता है।
1: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
0: तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान क्या है?
1: इसका उत्तर है साथियों, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान है दादा साहब फाल्के पुरस्कार।
0: अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, श्री महादेव देसाई महात्मा गांधी जी के निजी सचिव थे। वे महान देशभक्त और गांधी जी के अनुयायी थे।
0: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि बिजली बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे?
1: इसका उत्तर है लगभग 10,000 बार
0: जी। और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। श्रोताओ, हमने आपसे पूछा था अंग्रेजी शासन के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है?
1: अंग्रेजी शासन के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या IAS के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा।
0: और श्रोताओ, अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमने आपसे पूछा था अपनी किस पुस्तक में APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है?
1: साथियों, पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार उनके शिक्षक ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
0: तो श्रोताओ, ये थे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करके सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पुस्तक भी डाउनलोड कर सकते हैं।
0: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर जैसा कि आप जानते हैं, और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। श्रोताओ, संदेश जरूर भेजिए।

0: जी, आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको सीआईटी एनसीईआरटी के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है मेरी माँ।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है। ये पाठ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी की जेल डायरी का एक अंश है, जिसमें उन्होंने अपने चरित्र निर्माण में अपनी माताजी की भूमिका को सराहा है।
1: मेरी माँ।

0: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
1: राम प्रसाद बिस्मिल के मुख से निकली इन पंक्तियों से भला कौन परिचित नहीं होगा। ये वो गीत है जिसे लगभग पूरा भारत गाता था।
2: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
1: इस गीत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशवासियों की रग रग में क्रांति की ज्वाला भर दी थी। इस गीत को गाते गाते न जाने कितने स्वाधीनता सेनानी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए।

0: उनका नाम था राम प्रसाद, लेकिन बिस्मिल के उपनाम से वो बहुत प्रसिद्ध हुए। इसी उपनाम से उन्होंने बहुत सी देशभक्ति की कविताएं और गजलें लिखी। बिस्मिल का अर्थ होता है बेचैन या घायल। राम प्रसाद बिस्मिल एक लेखक, कवि और क्रांतिकारी थे, जिनका जीवन हमेशा देश के असंख्य युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
1: वो कहते थे,
2: मेरा रिश्ता क्रांति और कलम दोनों से है।
0: बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक गांव में मुरलीधर और मूलमती के यहां हुआ था। वो बचपन से ही बहुत नटखट प्रवृत्ति के थे। उनका मन पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज्यादा लगता था। उन्हें तैराकी, कुश्ती जैसे खेल बहुत पसंद थे।
1: अपने बचपन और शिक्षा के बारे में बताते हुए उन्होंने अपनी आत्मकथा मेरे निज दिनों की छटा में लिखा है।
2: जब मैं कोई 7 वर्ष का हुआ तो पिताजी ने स्वयं ही मुझे हिंदी अक्षरों का बोध कराया और फिर एक मौलवी साहब के मकतब में उर्दू पढ़ने के लिए मुझे भेज दिया गया। वहां से मैंने 4th जमात पास की।
0: समय का पहिया चलता गया। उनके पिताजी पर स्वाधीनता संग्राम का बहुत प्रभाव था और शायद इसलिए वो अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे, लेकिन उनकी माता के हस्तक्षेप के कारण उन्हें अंग्रेजी पढ़ने के लिए मिशन स्कूल भेज दिया गया।
1: बिस्मिल के जीवन में यदि हम गहराई से झांकें, तो पता चलता है कि वो अपनी माता से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने जीवन में अपनी माता की भूमिका को बहुत अहम माना है। वो मानते हैं कि उनके व्यक्तित्व के निर्माण में उनकी माता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो लिखते हैं,
2: 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वे नितांत अशिक्षित ग्रामीण कन्या के समान थी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष के बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक

0: शौक उनमें खुद ही पैदा हुआ। मोहल्ले की सखी सहेली जो भी घर पर आया करती थीं, उनमें जो शिक्षित थीं, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। परिश्रम के फल से थोड़े ही दिनों के बाद वे देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी।
1: साथियों, उन दिनों समाज द्वारा स्त्री शिक्षा पर बिल्कुल जोर नहीं दिया जाता था। इसके बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिस्मिल की माताजी आज भी सब महिलाओं और कन्याओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा और आदर्श हैं।
0: मां तो मां होती है बस। वैसे मेरी माता मेरे धर्म कार्यों और शिक्षादी में बड़ी सहायता करती थी। वे प्रातः 4 बजे ही मुझे जगा दिया करती थी। मैं नित्य प्रति नियम पूर्वक हवन किया करता था और यहीं से मेरी रुचि अध्यात्म और सत्य निष्ठा के प्रति बढ़ी। सच कहता हूं, यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो शायद मैं भी साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता और सत्य के प्रति मेरा इतना अधिक अनुराग न होता।
2: अपनी सत्य निष्ठा के बारे में उन्होंने अपनी आत्मकथा में वर्णन किया है।
0: एक बार पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वो मुझसे करा ले। आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया, ये तो धर्म के विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मामला खारिज हो जाएगा, लेकिन मुझ पर कोई प्रभाव ना हुआ और ना ही मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में मैं हमेशा सत्य का आचरण करता था और चाहे कुछ हो जाए मैं सत्य बात कह देता था।
1: तो ऐसी थी सत्यवादिता राम प्रसाद बिस्मिल की और इस शिक्षा की नींव डाली थी उनकी माता जी ने।
2: पराधीन भारत में अपनी पीढ़ी के कई युवाओं की तरह राम प्रसाद बिस्मिल भी अंग्रेजी शासन के अत्याचारों से परेशान थे। माता की शिक्षा, श्रेष्ठ गुरुजनों की प्रेरणा और अनेकानेक देश प्रेम और अध्यात्म से ओतप्रोत साहित्य के अध्ययन ने उनके मन में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर दी थी।
1: उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपना जीवन देश की आजादी की लड़ाई में समर्पित करने का फैसला कर लिया। 8वीं कक्षा तक अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल बहुत कम उम्र में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए थे।
2: ९ अगस्त 1925 को हुए काकोरी रेल कांड में वो अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। जेल में ही उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से छिपकर उसके अंशों को जेल से बाहर भेजते रहे।
1: उनकी आत्मकथा का शीर्षक था मेरे निज जीवन की छटा। आत्मकथा को उनके मित्रों ने प्रकाशित करवा दिया।
2: गोरखपुर जेल में लिखी गई आत्मकथा में उन्होंने अपनी माता को बड़े ही मार्मिक शब्दों में संबोधित किया है।
0: जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, मैं अनेक जन्मों में भी प्रयत्न करूं तो तुमसे ऋण नहीं हो सकता। मां, तुम्हारी ही दया से तो मैं देश से

सेवा में संलग्न हो सका। तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी मां, पर मुझे विश्वास है तुम ये सब समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलिवेदी की भेंट कर गया और तुम्हारी कोख कलंकित न की। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा तुम्हारा बेटा। मां, जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा ना, तो उसके किसी पन्ने पर तुम्हारा नाम भी उज्ज्वल

काकोरी रेल कांड में उन पर मुकदमा चला और उनके साथ तीन और क्रांतिकारी साथियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 को उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरी माँ, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम राग शंकरा।
1: इस कार्यक्रम में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध राग शंकरा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसके स्वर विस्तार, आरोह अवरोह, गायन समय और स्वर मालिका के बारे में भी बताया गया है।

शंकरा। राग शंकरा की उत्पत्ति बिलावल थाट से हुई है। इसके आरोह में ऋषभ और मध्यम अर्थात रे और म तथा अवरोह में केवल मध्यम यानी म वर्जित स्वर है। परंतु राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए ऋषभ अर्थात रे का प्रयोग कर्ण स्वर के रूप में किया जाता है। आरोह में 5 और अवरोह में 6 स्वर प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व शाड़व है। इसका वादी स्वर गंधार यानी ग है और संवादी स्वर निषाद अर्थात नी है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग शंकरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए

राग शंकरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग शंकरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग शंकरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल है हम आशा का दीप जलाएं। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम राग शंकरा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: सौम्या मलिक,
1: जगबंधु और मुकुल के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3 बज चुके हैं। अब हम इस सभा के प्रसारण यही संपन्न करते हैं। अपनी सांध्यकालीन सभा में संध्या 5:30 पर फिर आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:30 हुए हैं। अब हमारी आज की द्वितीय सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी इस व्यावसायिक अंतराल के बाद।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अब भरो सक्सेस की उड़ान नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ की डायरेक्ट फ्लाइट्स दे कॉर्पोरेट और बिजनेस को कनेक्टिविटी की राइट चॉइस।
2: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वे ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: हॉलीडेज प्लान करना है पर छुट्टियां हैं कम, टेक डायरेक्ट फ्लाइट्स टू धर्मशाला, देहरादून, जम्मू, अमृतसर एंड जयपुर फ्रॉम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यमुन एक्सप्रेस वे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी, इजी एक्सेस और नो ट्रैफिक जैम्स दे आपके हॉलीडे को स्मूथ स्टार्ट।
2: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वे ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

युवावाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार। दोस्तों, आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे दो ऐसे विषयों की जो राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य दोनों से जुड़े हुए हैं। पहला विषय है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की जयंती और दूसरा विषय एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता। दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्र प्रेम, सामाजिक चेतना, नारी सम्मान और मानवीय मूल्यों का संदेश दिया। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आज भी आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने साहित्य को समाज जागरण का माध्यम बनाया और युवाओं को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा दी। आज आवश्यकता है कि युवा पीढ़ी गुप्त जी के आदर्शों को केवल पढ़े नहीं बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारे। ये उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी प्रेरणा के साथ सुनते हैं कैसा गीत जो बच्चों को उज्जवल भविष्य और श्रेष्ठ नागरिक बनने का संदेश देता है। हेमंत कुमार का स्वर और इनके साथ साथियों की आवाजें, गंगा जमुना फिल्म के लिए शकील बदायूनी की रचना।

0: तो दोस्तों, अभी आपने हेमंत कुमार और साथियों को सुना गंगा जमुना फिल्म के लिए। साथियों, किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके बच्चों के स्वस्थ और सुरक्षित बचपन पर निर्भर करता है, और इसी उद्देश्य से एकीकृत बाल विकास सेवाएं संचालित की जाती हैं। इसके माध्यम से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती और धात्री माताओं को पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा और पूर्व प्राथमिक शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। यदि ये सेवाएं प्रत्येक पात्र परिवार तक समय पर और गुणवत्तापूर्ण पहुंचें, तो कुपोषण कम होगा, बच्चों की उनका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होगा, और मातृत्व शिशु स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार होगा। आंगनबाड़ी केंद्र इस व्यवस्था की मजबूत कड़ी है, और समाज का सहयोग इन्हें और अधिक प्रभावशाली बना सकता है। युवा वर्ग भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अपने आसपास के परिवारों को जागरूक करें, गर्भवती महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी सेवाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित करें, और स्वस्थ, शिक्षित और सशक्त भारत का निर्माण करने में सहभागी बनें। दोस्तों, इसी क्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं एक रिपोर्ट टीडी एवं डीपीटी टीकाकरण अभियान के बारे में। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर रोहिता सिंह तेवतिया, और इनसे बातचीत कर रहे हैं जितेंद्र सिंह।
1: श्रोताओं, उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से विशेष रूप से टीडी डीपीटी टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये कार्यक्रम क्या है और इसके अंतर्गत टीकाकरण कराना क्यों आवश्यक है, जिस बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं हमारे जनपद मथुरा के जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर रोहितास सिंह तेवतिया जी।
2: नमस्कार सभी श्रोतागणों को। वर्तमान में जनपद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीडी डीपीटी टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में भी साथ साथ संचालित है। जनपद में इस हेतु सभी स्कूलों में डिप्थीरिया से बचाव के लिए टीडी का टीका और डीपीटी का टीका लगाया जा रहा है।
1: ये जो आपने बताया डिप्थीरिया, तो इसके बारे में बताएं कि ये बीमारी क्या है और ये किस तरह से बच्चों को लग जाती है, इसके लक्षण क्या रहते हैं?
2: जी, डिप्थीरिया, जिसको आम भाषा में गलगोटू की बीमारी भी कहते हैं, इसमें बेसिकली जो बच्चे को एक गले में मेम्ब्रेन जैसी बन जाती है, उसको खांसी, बुखार, जुखाम, शरीर में दर्द, इस तरह की शिकायतें रहती हैं। लेकिन एक विशेषता इसमें जो है, गले में एक झिल्ली जैसा बन जाना, उससे रुकावट हो जाती है गले में, और बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होती है, और जब सीवियर स्थिति हो जाती है तो बच्चे को खाना खाने में भी, पानी पीने में भी दिक्कत होती है, और बाद में फिर उसको खाना खाने में भी दिक्कत होती है। ऐसी परिस्थिति में बहुत जानलेवा बीमारी है, बच्चे की मृत्यु से संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी के दृष्टिगत शासन के दिशा निर्देशों के क्रम में जनपद में सभी स्कूलों में टीडी डीपीटी टीकरण अभियान लगाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान 5 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे जो कि कक्षा 1 के छात्र हैं, उनको डीपीटी का बूस्टर का दूसरी डोज, तथा 10 वर्ष के बालक बालिकाएं जो कक्षा 4 या 5 में अध्ययनरत होंगे, उनको TD10 का टीकरण, जो 10 वर्ष की आयु पर लगता है TD10। इसी प्रकार से 16 वर्ष की आयु पर लगने के लिए TD16 का टीका, जो कि संभावित कक्षा 10 अथवा 11 के छात्र छात्राएं होंगे, तो ये सभी बच्चों को ये टीके लगेंगे। इससे यह होगा कि भविष्य में जैसे कि जो इसका डिप्थीरिया का प्रकोप है वो बारिश के दिनों में, रेनी सीजन में ज्यादा रहता है, इसके बाद समर वैकेशन स्टार्ट हो जाएंगी, तो उससे पहले ही हम सभी बच्चों को आच्छादित कर लें, यही हमारा लक्ष्य है।
1: जैसा कि जो सामान्य टीकाकरण कार्यक्रम रहता है, उसमें जो 5वीं साल की आयु में बच्चे को जो टीका लगाया जाता है, तो वो क्या डिप्थीरिया का ही रहता है?
2: जी, देखिए, आपने बहुत अच्छा सार्थक सवाल पूछा। जो 5 वर्ष पे डीपीटी का बूस्टर टीका लगता है, उसमें डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस 3 एंटीजन रहते हैं। हमारा जो फोकस है, मतलब कि है कि भाई डिप्थीरिया को हम जब टारगेट कर रहे हैं एक तरह से, तो 5 वर्ष की आयु के बच्चे जिनको डीपीटी का टीका लग गया है कहीं पर भी सत्र के दौरान या जिला चिकित्सालय में या कहीं भी, तो उनको हम नहीं लगाएंगे, उनको लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये हम उन बच्चों को लक्षित कर रहे हैं जिनको किसी भी कारण से 5 वर्ष की आयु पे, 10 वर्ष की आयु पे अथवा 16 वर्ष की आयु पे डीपीटी या फिर टीडी का टीका छूटा हुआ है, तो छूटे हुए बच्चों को ही हम टीकाकरण कर रहे हैं वर्तमान में।

0: इस कार्यक्रम को किस तरह से जनपद में चलाया जाएगा और अधिक से अधिक बच्चों को इससे आच्छादित किया जा सके, इसके लिए आपकी क्या योजना है?
1: इसमें हमारी जो 13 प्लानिंग यूनिट्स हैं, 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अर्बन प्लानिंग यूनिट, सभी की माइक्रो प्लान बनाकर इसकी रूपरेखा तय कर ली गई है। हमें जो हमारे सहयोगी विभाग हैं, जिला बेसिक शिक्षा विभाग हो, चाहे DIO साहब की तरफ से बड़े स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका हो, अल्पसंख्यक विभाग हो, ICTS विभाग हो, सभी से हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है और उसी का नतीजा ये है कि हम काफ़ी अच्छे मात्रा में बच्चों को टीका लगा पाए हैं। और ये हमारा जो माइक्रो प्लान है इसमें 20 अप्रैल से हमने प्रारंभ किया है और जब तक हम सभी बच्चों को टारगेट नहीं कर लेते हैं तब तक ये हमारा अभियान जारी रहेगा। इसमें यह रहेगा कि चाहे सरकारी विद्यालय हो, चाहे गैर सरकारी हो, चाहे एडेड हो, चाहे प्राइवेट विद्यालय हो, उसमें इस आयु वर्ग के बच्चे हैं इनको टीके लगाए जाएंगे।
0: क्या इस अभियान को विद्यालयों में ही चलाया जाएगा या अन्यत्र भी इसको चलाया जाएगा?
1: दरअसल ये जो बच्चे अन्यत्र टीका नहीं लगवा पाए किसी भी कारण से, इसी वजह से है कि हम उनको उनके विद्यालय में ही पहुंच कर टीका लगा रहे हैं। तो अन्यत्र तो हमारे बुधवार शनिवार को नियमित टीकण कार्यक्रम के जो है टीकण सत्र हमेशा लगते ही हैं, वहाँ तो वो लगवा सकते हैं, लेकिन ये बुधवार शनिवार छोड़ के अन्य दिवसों में और इतवार छोड़ के अन्य दिवसों में सोम मंगल बृहस्पति शुक्र को कार्य योजना के अनुरूप और सभी प्रकार के विद्यालयों में हम पहुँच कर टीका लगा रहे हैं।
0: टीकाकरण के लिए बच्चे का आधार कार्ड वगैरह ले जाना अनिवार्य है क्या?
1: ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसमें आधार कार्ड अनिवार्यता नहीं है लेकिन एक सपोर्ट है, आधार कार्ड है तो उससे हम यूविन ऐप पर उस बच्चे का डाटा ढूंढ करके उसमें एक उसका टीके की स्थिति भी दर्ज कर देंगे और उसको लाभार्थी, उनके अभिभावक और डिजिटल रूप में डिजिटल सर्टिफिकेट यूविन से डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन नंबर को भर के, एक सहूलियत उनके लिए भी रहेगी। और इसमें यह भी रहता है कि अगर RI सत्रों पर अगर आप आ रहे हैं बच्चों को टीके लगवाने तो आप यूविन ऐप के माध्यम से सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं नजदीकी टीकाकरण सत्र के हेतु।
0: तो क्या इस टीकाकरण में बच्चों को कुछ तकलीफ वगैरह होती है, कोई साइड इफेक्ट होता है?
1: ये दोनों ही वैक्सीन बहुत सेफ वैक्सीन है। अगर TD के विषय में बात करूँ, ये गर्भवती माताओं को वैक्सीन लगती है, इसकी सेफ्टी में कोई इश्यू नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा AFIB की भी संभावना नहीं रहती है। DPT के साथ में थोड़ा सा हल्का बुखार हो सकता है तो उसके लिए हम हमारे जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, जो वैक्सीनेटर्स हैं, वो DPT का टीका लगाते हैं तो उसके साथ में वो पैरासिटामोल सिरप डिस्पेंस करते हैं और 5 वर्ष की बच्चे की आयु के अनुसार उसको सुबह दोपहर शाम वो पैरासिटामोल सिरप दी जाती है, तो जिससे क्या होता है कि बुखार भी नहीं आता और कभी कभी बुखार आता भी नहीं है, लेकिन हाँ अगर हल्का फुल्का बुखार आए तो इसलिए हम पैरासिटामोल सिरप साथ में डिस्पेंस करते हैं।
0: इतने वृहद स्तर पर यह अभियान चलाया जा रहा है तो क्या अभी डिप्थीरिया के केस देखे जा रहे हैं?
1: इस वर्ष में तो अभी डिप्थीरिया केसेस नहीं आए, लेकिन पूर्व के कई वर्षों का अगर हम देखें जो एक अनुभव रहा है तो ये बरसात के दिनों में केसेस आने की संभावना रहती है, इसीलिए हम लोग प्रोएक्टिवली रीच आउट कर रहे हैं उन बच्चों को जो छूट गए किसी भी कारणवश के लिए, 5 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग जो है बच्चे जो DPT के लिए और 10 और 16 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे जो TD10 और TD16 के लिए।
0: एक प्रश्न और करना चाहेंगे डॉक्टर साहब, जैसा कि कुछ मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं जो जगह जगह काम करते हैं, कहीं ईंट के भट्टों पे काम करते हैं या कहीं कंस्ट्रक्शन जहाँ चल रहा होता है तो वहीं वो अपनी फैमिली के संग मूव करते हैं, ऐसी जगहों पर ऐसे बच्चे भी इससे आच्छादित हो सके, तो क्या इसके लिए भी कुछ प्लानिंग है स्वास्थ्य विभाग की?
1: बहुत अच्छा सवाल है आपका, मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करूंगा कि आपने ये सवाल पूछा है। देखिए इनको HRG साइट कहते हैं, हाई रिस्क ग्रुप साइट्स कहते हैं, या दूरस्थ जगह जो छिपी हुई जगह पर टोलियों में और इस तरह से रहते हैं, चाहे नोमैड्स हों, घुमंतू परिवार हों, या कार्य वर्क प्लेस पर हों, या फिर ये इस तरह से आपने ईंट भट्टों की जैसे बात की, तो यहाँ हम माइक्रो प्लान बनाकर अलग से जो है हमारे जो RI सत्र हैं उसके अतिरिक्त दिवसों में हमारे वैक्सीनेटर्स वहाँ खुद पहुँचते हैं क्लस्टर्स के तहत में, जैसे कि हमारे कुछ ब्लॉक्स हैं छाता माट नौझील जहाँ पे ईंट भट्टे हैं और घुमंतु परिवार हैं जैसे वृंदावन और कई जगह पर हो जैसे होते हैं, तो वहाँ माइक्रो प्लान बनाकर हमारे वैक्सीनेटर्स वहाँ पहुँचते हैं और जो है उनका टीकाकरण करने का कार्य प्रभावी रूप से प्रयास करते हैं।
0: एक प्रश्न और करना चाहेंगे, अगर किसी भी बच्चे में या किसी भी व्यक्ति में अगर डिप्थीरिया के जो लक्षण हैं वो आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उसको क्या करना चाहिए और क्या उसका उपचार संभव है या नहीं है?
1: देखिए मैंने शुरू में ही बताया कि डिप्थीरिया जिसको आम भाषा में गलगोटू कहते हैं, वो जब प्रेजेंटेशन उसकी आती है तो शुरुआत में तो बुखार खांसी इस तरह की स्थिति होती है, बाद में फिर एक मेम्ब्रेन जैसी बनने लगती है गले में, तो ऐसी स्थिति में आप देरी ना करें और आप रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स के पास ही, चाहे हमारे सरकारी अस्पताल में या अन्य अस्पताल में जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं उन्हीं से ही, जो अनुभवी डॉक्टर हैं उन्हीं को दिखा करके और उसको इलाज उसका करवाएं। हमारे यहाँ सभी 12 सामुदायिक

0: स्वास्थ्य केंद्र, 27 ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हमारे 10 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हमारे 12 अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर चिकित्सक उपलब्ध हैं और वहाँ आप जाकर अपने बच्चे को दिखा सकते हैं। उसके लिए वो जो भी संभव इलाज रहेगा वो करेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे पास रेफर करेंगे और हम उनको ऐसी स्थिति में जीवन रक्षक दवाई है जिसे कहते हैं ADS हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है जनपद पर। अगर वो संभावित डिप्थीरिया से बच्चा ग्रसित पाया जाता है तो उसको ADS हम लोग लगाते हैं और उससे बच्चे की जीवन बचाव में मदद मिलती है। अगर किसी बच्चे को इस तरह के लक्षण होते हैं तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर रजिस्टर्ड डॉक्टर से ही आप सलाह लें।
1: इस तरह का बच्चा स्वस्थ हो सकता है या नहीं?
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमने देखा है शुरुआती समय में जब हम ऐसे बच्चों को हमारे सामने आते हैं तो अधिकांश बच्चों में हम लोग प्रयास करके, और उसमें ऐसा नहीं है कि सभी में मॉर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी की संभावना रहती है, लेकिन अगर इसमें देरी की जाए, गंभीरता से इसको ना डील किया जाए, और ये होता है कि कई केसेस में हमने देखा कि बच्चे जब आते हैं बहुत गंभीर बीमारी के साथ आते हैं और जब मालूम चलता है कि 10 दिन से बच्चा बीमार था, कभी यहाँ दिखा रहे थे, कभी वहाँ दिखा रहे थे, कभी गांव में दिखा ले रहे थे, कभी दवाई केमिस्ट से जाके ले रहे थे, उससे वो जो क्रिटिकल समय होता है वो क्रिटिकल समय नष्ट हो जाता है। उसी का नतीजा होता है कि बच्चा गंभीर स्थिति में चला जाता है, और एक बार जब गंभीर स्थिति में चला जाता है थोड़ी तब मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर शुरुआती समय में ही हम अगर जानकार हैं, हमको जानकारियां हैं और हम सजग हैं और शुरुआती समय में ही हम सही जगह पर बच्चों को ले जाकर दिखाते हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि उस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती है, उसको हम बचा ही लेते हैं। लेकिन साथ में हम यह भी प्रयास करते हैं कि जो बच्चा जहाँ पे था वहाँ से हम कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकाल करके उसके जो कॉन्टैक्ट्स में जो बच्चे या जो भी रहे हैं उनको भी हम दवाई और ये दिलाने का प्रयास करते हैं, और उस क्षेत्र में अगर बच्चे छूटे हुए होते हैं डिप्थीरिया कंटेनिंग वैक्सीन से तो वहाँ कैंप लगा कर हम डिप्थीरिया कंटेनिंग एंटीजन्स को प्रोवाइड करते हैं उन छूटे बच्चों को।
1: ये क्या व्यक्ति से व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये व्यक्ति से व्यक्ति में ही है, इसीलिए इसकी चेन ऑफ ट्रांसमिशन को हॉल्ट करना ही सबसे बड़ा हथियार है और वो उसका जरिया है टीकाकरण, समय पर टीका लगवाना।
1: तो श्रोताओं, हमारे साथ रहे जिला प्रतिरक्षण अधिकारी मथुरा डॉक्टर रोहितास देवतिया जी, और जैसा कि बताया कि डिप्थीरिया एक गंभीर बीमारी है, यदि किसी व्यक्ति में इसके लक्षण अगर प्रारंभिक अवस्था में ही दिख जाते हैं तो उसको बचा पाना इसमें संभव है, और सबसे बेहतरीन उपाय इस बीमारी का टीकाकरण है। तो TDDPT टीकाकरण कार्यक्रम जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, इसके बारे में खुद भी जागरूक हों और अन्य लोगों को भी जागरूक करें और अपने बच्चों को इस बीमारी का टीका अवश्य लगाएं। डॉक्टर साहब, आज हमारे श्रोताओं को आपने इस महत्वपूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी, उनको जागरूक किया, इसके लिए धन्यवाद।
0: मेरा आपके रेडियो के माध्यम से सभी श्रोतागणों से, अभिभावकों से, माता पिताओं से, वृद्धजनों से, सिविल सोसाइटी से विनम्र अनुरोध है कि आइए अपने बच्चों को जिनको ये टीके छूट गए हैं अपने स्कूल में या नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण सत्र पर आकर हमारी ANM दीदी अथवा आशा दीदी से संपर्क करते हुए ये टीके लगवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे TT एवं DPT टीकाकरण अभियान के बारे में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर रोहितास सिंह देवतिया, और उनसे बातचीत कर रहे थे जितेंद्र सिंह। और कार्यक्रम में अब समय है काव्यांकुर के अंतर्गत काव्य पाठ का, युवा कवित्री हैं वेदांजलि।
3: माँ शारदे को प्रणाम करते हुए आप सभी के सामने एक गीत रखना चाहती हूँ जो माँ को समर्पित है, हम सबकी माँ को समर्पित है। आइए वो गीत के चंद बंद मैं आपके सामने रखती हूँ। माँ की पूजा करती हूँ, माँ की स्तुति करती हूँ, सुनेगा। कि वो पुचकारती है, कि वो पुचकारती है वो सवारती है, कि वो पुचकारती है वो सवारती है, वो दुलारती है वो निहारती है। अरे मैं भी गुनगुना लेती हूँ ये गीत यारो, जब भी मुझे मेरी माँ की याद आती है, जब भी मुझे मेरी माँ की याद आती है, और गीत रखती हूँ, सुनेगा।

सुने। और देखिएगा, माँ की एक पीड़ा रखती हूँ जो आज हमारे समाज में गूंज रही है, जो आज हमारे समाज में है कि देखिए, जब माँ के दो बेटे होते हैं तो माँ को किस तरह से दो बेटों के बीच बांट दिया जाता है, कि माँ से कहा जाता है कि माँ 15 दिन छोटे बेटे के घर खाना खाएगी और 15 दिन बड़े बेटे के घर खाना खाएगी। लेकिन जब महीना 31 का होता है तो उस दिन मेरी बूढ़ी माँ को भूखे पेट सोना पड़ता है। आइएगा, उस पीड़ा को आपके सामने रखती हूँ, सुनेगा।

है। और माँ की पूजा करते हुए आप सभी को बताना चाहती हूँ कि कितने प्रकार के ढोंग करते हैं बच्चे कि इधर मंदिरों में घूमते हैं उधर मंदिरों में घूमते हैं, लेकिन देखिए आज माँ की क्या दशा है, सुनेगा सुनाती हूँ।

हैं। और अंतिम बंद में मैं माँ की उस पीड़ा को रखती हूँ और धिक्कारती हूँ उन बंदों को जो अपनी माँ की कदर नहीं करना जानते, जो अपनी माँ को प्यार नहीं करते, जो स्नेह की देवी है उसको इस तरह से पीड़ित किया हुआ है। सुनेगा, मैं सुनाती हूँ कि

तो अभी आप सुन रहे थे काव्यांकुर के क्रम में ये काव्य पाठ युवा कवित्री थी वेतांचली। इसी के साथ युवा वाणी कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: अभी आप युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी सुन रहे थे, जे आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 6 बजने को हैं। अब समाचार होंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा।
2: भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मंजलपुर विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर मुख्य मुकाबला इन्हीं दो उम्मीदवारों के बीच में था। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने लोगों को धन्यवाद दिया और कहा की जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट जीत ली है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया। उधर बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है, जहां जनसुराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा से 31वें चरण की मतगणना के बाद लगभग 19,000 वोटों से आगे हैं। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन में हंगामा करने लगे। गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया है कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय

0: पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। घरेलू शेयर बाजार का सेंसेक्स लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 544 अंक बढ़कर 78,639 पर, जबकि निफ्टी 391 अंक की बढ़त के साथ 24,774 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

संध्या 6:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक, जिसमें आज ब्रजवार्ता प्रसारित की जाएगी। विषय होगा जय सावन बैरी जीवा भाई। वार्ताकार होंगे मनमोहन गुप्ता। संध्या 6:30 पर श्रोता सुनेंगे भक्ति परक कार्यक्रम संध्या वंदन।

संध्या 6:50 पर ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, जिसमें चर्चा के विषय होंगे बरसात में पशु प्रबंधन और कृषि में युवाओं की भूमिका। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा भेंट वार्ता, बकरियों के प्रमुख संक्रामक रोग और टीकाकरण। डॉक्टर अशोक कुमार जानकारी देंगे और इनसे बातचीत करेंगे विजय सिंह नौलखा। संध्या 7:31 पर श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सहनी आप सुन सकेंगे। रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा और रात्रि 8:20 पर विधान मंडल समीक्षा। संसद समीक्षा हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और विधान मंडल समीक्षा लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित की जाएगी।

रात्रि 8:30 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। रात्रि 9:15 पर चित्रपट संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने प्रसारित किया जाएगा। पब्लिक स्पीक रात्रि 9:30 पर हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 10:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का अनुप्रसारण। इस कार्यक्रम को हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों के बारे में, और अब सुनिए कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। श्रोताओं, अपरिहार्य कारणों से शाम को प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के प्रसारण समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। ब्रज ग्रामीण

अथवा किसान वाणी कार्यक्रम अब शाम 6:15 के स्थान पर 6:50 से संध्या 7:20 के मध्य प्रसारित होंगे। संध्या वंदन कार्यक्रम का समय होगा संध्या 6:30 से 6:50 तक। और ब्रज साहित्य कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:15 से संध्या 6:30 तक। सूचना समाप्त हुई।

अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले और कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6:10 हुए हैं। समय हो रहा है कार्यक्रम देश कान का। आइए सुनते हैं समवेत स्वरों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये देशभक्ति परक रचना।

समवेत स्वरों में अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की देशभक्ति परक रचना। इसी के साथ देशगान का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय संध्या के 6:15 में हैं। समय हो रहा है कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक का। आइए सुनते हैं ब्रज वार्ता जे सावन बैरी चेवावे। वार्ताकार हैं मनमोहन गुप्ता।
1: अजी जे सावन वेरी चुआवे है या के आमते ही हमारो तो हियो भर जाए है। तुम सोच रहे होंगे सावन में तो चंगोर हरियाली है जाए है, जो पेड़ जेठ मासे में बाकी ताप सो भरस जाए, बेहू नहनी नहनी बोदन सो शीतल है जाए हैं। फिर जे हमारी बात कि हमारो हियो भरस जाए है, जे कहाँ से निकल के आई? अरे जे उल्टी गंगा हमन ने चो बहाई। अजी सुनो, साची बात तो जे है कि सामन लगवे ते पहले ही ससुरार ते पाती की खबर आ जा। कैसा लाला सामन लगवे जा रहे हो? अब तो हमारी लाली पियर को खिदाए दियो, बाकू पियर आए बलाए देना है गई। फिर देखो जी, 30 सनूने पे तो छोरी छापरी अपने पियर में ही अधिक सुवाते हैं। अजी या पाती को पड़े हमारे तो पीता से बर जाए, जे सामन वेरी चो आवे। अरे जो हमारे बिरह की पीड़ा को बढ़ावे, अरे ससुराल वाले ने अपनी छोरी छापरी बुलावनी होए, अरे तो जेठ असाल में बुलाव ने, अरे कौन ने नहीं करिए? अरे जेठ में गर्मी को ताप और जा में निकरे घरवारी को गुस्सा को भाप। अजी कूलर चलाओ ने या ताप को भगाओ ने, या कूलर ते तो ने को सीढ़ी प्यारी ना रही। पारोसी को भुल्ली है ने, वो तो अपनी घरवारी को एसी ले आए हुए, कछु बाई ते सीख लियो ने। तू सांची कह रही है भगवान, भुल्ली हो चाहे सुल्ली, या हुए रामोली और हुए टुल्ली, अरे मुँह पे काऊ की होड़ ना होए होड़। अरे जिते जेब में गंजास होएगी, बीते कई काम होएगो, तेरा तो ई सांपन की सी जो जीभ है ना, या तो हिला दिए बस। अरे तेने कबू सोचिए बिजली को मीटर कैसे दौड़ेगा, जो पीटी उषा के रिकॉर्ड को तोड़ेगा? अरे मैं तो साफ सोले आना सांची कहूँ, जेठ असाढ़ में घरवारी पिया चली जाए तो बड़ी स्वांत परे, पर वो तो मेरी छाती पे ही मूंग डरे, वो न कहो ना ही डरेगी। फिर ससुराल वारिन ने देखो जेठ असाढ़ में पियर बुलावे की कहनाऊँ, जे ना कह के साफ बा भेज दे बे, तो बस ने सावन आवे थे पहले ते ही खबर पे खबर खिंदा में कि सावन आ रहे हो है। अरे त्यारो सारो आ जाएगो और अपनी बहन लेवा ले जाएगो। अरे जा सासु के सामन में ही अपनी बहन को लेभावे की सूझी है। अरे बातें पहले तो याके कान पे जुआऊ ना रहेंगी कि जेठ मासी में लेभावे जो आ जातो तो कितने बढ़िया हो तो। पर साहब हम तो जे कंगे जे सामन वेरी चुआ जो हमको बहुत ही सतावे, सामन में जब नहनी नहनी बूंदन की क्षमा छम होए तो हमारी घरवारी की पायल की छनन छनन छनन जब हुए तो त्यारी सौगन बहुत ही सुहावनी लगे, वो नूपुर की छम छम छम। बाहर की जो है बूंदाबांदी जब शुरू है के नाई अपनी पे आवे तो बस पनारे चलवे लग जाएं, गैल गिरारे सब भर जाएं, सीरी सीरी

जब चले तो कितेक आनंद आवे जे बतावे की बात ना है। अरे अनुभूति की बात है, जो दिन में करे रात है। अब कारी कारी बादल छा जाए तो बाकी गड़गड़ाहटे हमारे ये में जो हिलोर उठे बामे कैसी फड़ फड़ फड़ फड़फड़ाहट होए। अरे भाई तो हम ही जाने। फिर जब सामन में बदरा झुक जाए तो सूरज डर के मारे लुक जाए। कबू कबू जे उग्यावे तो साफ बाकी सामई सात रंगों को इंद्रधनुष हमारी घरवारी की चुंदरी सी बामे दिखाई दे। पर साहब जी बात तो जब अच्छी लगे जब सामन में घरवारी घर में होए। पर यहाँ तो हम सात जन जय ले लें तो हमें घरवारी सपने में सामन में हमारे घर ना दिखेगी। क्यों कि सामन में तो बाकी पियर में जावेगी रिवाज त्रेता द्वापर और अब कलयुग में तो बहुत ही आग लग रही है। घरवारी पियर को नेक नेक की बात पे ही भग रही है। ये तो साफ कलयुग की ब्यार है, घरवारी को कहाँ है हमते प्यार है। बूतो आजकल अजी मोबाइल पे चिपकी रही व्हाट्सएप और फेसबुक ही बाकी सबरे पीतम प्यारे हैं। चाहे वे गोरे हैं चाहे वे कारे हैं, हम तो घरवारी के सामने आजकल कछु है ही ना है। फिर हम आत्मसमर्पण करे हूं तो जी बैरी सामन आ जाए जो हमारी प्रीत को रही सही और खा जाए। हम हाथ मलते हैं जाए अब कितकू जाए, घर में रहें तो वो आंख निकारे, ससुराल चले जाएं तो भैया फिर तो हमारी खैर ना है। घरवारी बीजरी सी जो है भैरा के परे अब वो चैन ना है परी। तो मन को यहीं आ गए। अरे नेक कहा तो इन धोरे इनको ध्यान रखते, इनमें काय को तुम जो है धूप डरवावे के ताई सामन में हूं जो है मेरे जो है पीर चले आए। अब साहब हम अपनी पीर को कैसे बतामें। अरे देखो साहब रत्नावली पीर चली गई तो तुलसीदास जी पे हो बाकी बिना नाय रह गयो। भी आधी रात को ही ससुराल पहुंच गई हते। घोर अंधियारी रात में उनको तो बस घरवारी जे दिख रही थी, बाकी सामने कछु नाय दिख रहे हो। या लिए तो रत्नावली की अटारी पर चढ़वे के ताई बिनन्ने लटकते हुए सांप को रस्सी मान के नाई बाइये पकड़ के नाई रत्नावली की अटारी पे जाए चढ़ी है। मोह पास में चढ़ तो गए पर जब रत्नावली ने हमारी घरवारी की तरिया फटका लगाई और लत्ता ले डारे तो तुलसीदास जी बस उन पर काबी थी, बस उन्हें तो बैराग सो है गया। पर यहाँ हमनते जो बैराग की बात तो कोसन दूर है, हमारे तो सपने चूर है। जब सावन में घरवारी अपने पियर चली जाए है, अरे हम तो या सावन को ही रोमे जे बेटी सावन में जो चो आवे। अरे जो हमारी पीर को बढ़ामे, अरे हम तो बलाए दुखी हैं जा सावन के आवे थे। अरे हमारी अटरिया की सबरी चांदनी है जो गुप कर जाए जे सावन, क्योंकि सावन में घरवारी जब पियर चली जाए तो फिर हमारे तो आगे पाछे बस बाई की याद की परछाई अंधेरे में जब दिखाई दे तो हम पे कहा भी दे। और याई को हम ही जाने कैसे हम बिरह की या जो है चंदरिया को हम ताने। सावन लगवे थे पहले ही जब घरवारी को लिवावे के ताई जो है खबर आ जाए तो हमें तो सुनते करंट सा लग जाए। मन में जे आवे घरवारी तू सावन में क्यों जावे, अरे ब्रज में तो सावन में सबरी मैया बाप अपनी छोरी छापरी को बुलामते बखत ज्यों ही रेंकते रहे। अजी हमारे तो एक ही लाली है। मन में ख्याल आवे जे सावन में कहा खबर कह गाली है, अरे हमारे करेजे पे खा बीती है। समझ लियो सावन में सीरी प्रीत की करसिया रीती है। अरे हम तो यूं कहें चौं जी त्यारी एक लाली है तो हमारी एक ही थाली है जहाँ में ने है सामन की प्रीत को मे है। और या प्रीत की सजी थारी को जब सामन में हमारी आंखन के आगे ते दूर कर ले जाए तो यूं समझो हमारी तो सबरी आंखन की रोशनी ही चली जाए है। और अब तुम्हें बताओ एक तरफ सो तो जे लोक रीत में कहो जाए कि सामन के अंधे को तो हरो ही हरो दिखे, चौं साहब क्यों ना दिखेगा। अरे हरे हरो जब हरियाली होगी तो हरे ही हरो तो दिखेगा, पर यहाँ तो हरियाली है तो सुको सुको ही दिख रहे हो है। चौं जी जे बैरी सावन चौं जो है आ गए है जो हमारी घरवारी को लेवाई ले गए है। जब सावन में घरवारी चली जाए तो बाकी बिछो में ऐसा कौन सा मर्द मानस होएगा जो ये ना कहेगा कि जी

0: सावन बैरी छ्यों आवे, क्यों जी ये सावन बैरी छ्यों आवे।
1: जे सावन बेरी जीवामे, अभी आप सुन रहे थे मनमोहन गुप्ता से ये ब्रजवार्ता। और अब आइए सुनते हैं रमेश दत्त चतुर्वेदी के स्वर में ये ब्रज लोकगीत।

0: इसी के साथ ब्रज साहित्य कार्यक्रम अब संपन्न होते हैं।
1: अब भरो सक्सेस की उड़ान नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ की डायरेक्ट फ्लाइट्स दे कॉरपोरेट और बिजनेस को कनेक्टिविटी की राइट चॉइस।
2: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वे ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: हॉलीडेज प्लान करना है पर छुट्टियां हैं कम। टेक डायरेक्ट फ्लाइट्स टू धर्मशाला, देहरादून, जम्मू, अमृतसर एंड जयपुर फ्रॉम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यमुन एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी, इजी एक्सेस और नो ट्रैफिक जैम्स दे आपके हॉलीडे को स्मूथ स्टार्ट।
2: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आपसे कुछ ही पलों में होगा। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। अपरिहार्य कारणों से शाम को प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के प्रसारण समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। ब्रज ग्रामीण और किसानवाड़ी कार्यक्रम अब शाम 6:15 से शाम 6:50 के क्षमा करें शाम 6:15 के स्थान पर 6:50 से संध्या 7:20 तक प्रसारित होगा। संध्या वंदन कार्यक्रम का प्रसारण समय संध्या 6:30 से संध्या 6:50 तक और ब्रज साहित्य कार्यक्रम का समय संध्या 6:15 से संध्या 6:30 तक रहेगा। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संध्या वंदन।

संजीव अभ्यंकर और साथियों के सुरों में अभी आप सुन रहे थे दशावतार फिल्म का ये भजन। रचनाकार थे संदीप खरे और संगीत निर्देशन था आनंद कुड़ेकर का। आइए सुनते हैं सौम्य के स्वर में बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्म की ये भक्ति रचना। स्वर और रचना सौम्य की हैं, संदीप चौटा का संगीत निर्देशन।

अभी आप सुन रहे थे सौम्य के स्वर में बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्म से ये भक्ति रचना। रचना सौम्य की थी, संदीप चौटा का संगीत निर्देशन था। संध्या वंदन कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति हम आपको सुनवा रहे हैं गीता दत्त और सुधा मल्होत्रा के स्वरों में। फिल्म का नाम है काला बाजार। संगीत निर्देशन सचिन देव बर्मन का है, रचना है शैलेंद्र की।

गीता दत्त और सुधा मल्होत्रा के सुरों में भी आप सुन रहे थे काला बाजार फिल्म से शैलेंद्र का लिखा ये भजन। संगीत निर्देशन था सचिन देव बर्मन का। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति। स्वर लता मंगेशकर और मन्ना डे के हैं। सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के लिए ये रचना है पंडित नरेंद्र शर्मा की। संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मंडर डे के सुरों में फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का ये भजन। रचना पंडित नरेंद्र शर्मा की थी और संगीत निर्देशन था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इसी के साथ संध्या वंदन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

FM 102.2 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं दीपक गोस्वामी।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनन को हमारी राम राम। भैयाओ, बरसात के यह मौसम में हमारी कृषि कार्य के संग संग हमें अपने आसपास की स्वच्छता को भी विशेष ध्यान रखना होए और यही में प्रबंधन करना पड़े हमारे पशुन को, क्योंकि भैया बरसात में पशु प्रबंधन बहुत जरूरी है जावे, क्योंकि आसपास नमी कीचड़ और बीमारी इनको खतरा बढ़ जावे। ऐसी स्थिति में हमें जो पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है कि पशुओं की रहने की जगह ऐसी होए जहाँ पे वर्षा को जल रुके नहीं और वर्षा के जल का प्रभाव पशुओं पे नहीं पड़े, सूखी जगह होए और पानी निकलवे को यानी निकास फर्श पे ढलान हो जाते पानी बाहर निकल जाए, संगे संग उमस से बचाव होए और सांस लेवे का जे हवादार जगह होनी चाहिए। और भैया एक बात विशेष जो ध्यान रखनी है कि गोबर या कीचड़ ऐसे स्थान पर ना होए जहाँ पे हमारे पशु बैठें, क्योंकि या से हमारे पशुओं को बीमारी हैवे को भी खतरा है सके। तो या के काजे हम नीचे पुआल भूसो लकड़ी का बुरादा भी बिछाए सके, और कहीं अगर छत टपक रही हो तो हमें छत की मरम्मत भी कर लेनी चाहिए। और भैया जहाँ चारे पानी की बात आवे तो ऐसे स्थिति में हमें पशु को गीलो चारा नहीं खवाना चाहिए, हरे चारे में फफूंद भी लगी है सके तो या के काजे हमें धूप में सुखा के ही चारा देना चाहिए, साफ पानी पिवाना चाहिए और साथ ही साथ बरसात में मिनरल मिक्सचर यानी चारे में मिला के जरूर देना चाहिए। बीमारी के कोई भी लक्षण होएं ऐसी स्थिति में, पेट की बीमारी, दस्त, अपरा, गंदे पानी या खुजली या नमी की वजह से और कोई परेशानी या खुर में कोई परेशानी हुए, गलघोंटू, लंगड़ी, ऐसी अगर कोई समस्या दिखाई दे तो आपको समाधान कराना चाहिए, पशु को अलग बांध देना चाहिए और जो टीकाकरण है वो हमें अवश्य करा लेना चाहिए, क्योंकि भैया बरसात से पहले पशु चिकित्सक से टीकाकरण और कृमिनाशक दवा हमें जरूर दे देनी चाहिए। साफ सफाई में हमारे जो पशु के बाड़े हैं

0: विपिन में हम चूनों भी छिड़क सकें, या थे जो भी आसपास कीटाणु जमा होंगे वे समाप्त हो जाएंगे। मच्छर मक्खी के काजे धुआं कर सकें और वहाँ से हमारी मच्छर मक्खी दूर रह जाएंगे। और जो दूध देने वाले पशु हैं जिनके लिए बहुत ज़रूरी है कि दूध निकालने के बाद और निकालने से पहले हम जो थन हैं बाय पोटेशियम परमैंगनेट के पानी से भी धो सकें। नमी की वजह से कभी कभी थने नालों की शिकायत भी बहुत है सके, तो या को भी हमें विशेष ध्यान रखना है। अपने पशु को ध्यान रखते भाई हमें या बरसात के प्रबंधन को कार्य करना है। तो भैया ये तो बात रही बरसात में पशु प्रबंधन की। अब आपको भेंट वार्ता क्रम में जानकारी दिवा रहे हैं पशु के बकरीन के प्रमुख संक्रामक रोग और टीकाकरण जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अशोक कुमार।
1: किसान भाइयों, आज चौपाल में हमने आमंत्रित करे हुए डॉक्टर अशोक कुमार जी, और आज जो हमारी चर्चा का विषय रहेगा वो ये है कि बकरियों में कौन कौन से संक्रामक रोग यानी जो छूत के रोग हैं वो एक पशु से दूसरे पशु में फैले कहाँ हैं, ये ऐसे कौन कौन से रोग हैं और जिनकी कहाँ बचाव के उपाय हैं या उनको कहाँ निदान है सके, या विषय पर चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब राम राम।
2: राम राम।
1: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात जो है कि बकरी जो पशु है वो छोटा पशु है, और अक्सर देखें कि बकरी पालकन सबसे ज़्यादा आर्थिक नुकसान यही बात हो जाए कि बकरियाँ बीमार है जाए और वहाँ के बाद नेक देर में मर जाए। तो ऐसे कौन कौन से संक्रामक रोग हैं जाते जो हमारे जा क्षेत्र की जो बकरी है वो पीड़ित रहते है सकेंगे?
2: देखिए, जो बकरियां हैं वो प्रकृति में सबसे ज़्यादा नज़दीक रहती हैं और वो ज़्यादा अनुकूलित होती हैं, तो जो बकरियों में रोगों की समस्या है वो और पशुओं से कम होती है। लेकिन कुछ ऐसे रोग हैं, ऐसे तीव्र रोग हैं जिनमें बकरियों में मृत्यु दर हो जाती है, आज हम इसी पर बात करेंगे। इसमें 4-5 ऐसे रोग हैं जिनके बारे में किसान भाइयों को पता होना ज़रूरी होता है। सबसे पहला प्रमुख रोग जो भेड़ बकरी दोनों में होता है उसका नाम है PPR। ये अंग्रेजी नाम है लेकिन हिंदी में हम इसे बकरियों का प्लेग कहते हैं। ये बहुत तेजी से फैलता है और ज़्यादा मृत्यु दर होती है।
1: तो डॉक्टर साहब, काऊ बकरी है, अगर बकरी प्लेग है गो है तो कैसे पहचानेंगे पशुपालक भाई के भाई बकरी है गो, कहाँ का लक्षण देखने में हमें?
2: ये अक्सर कर देखा जाता है कि जब हमारे किसान विशेष रूप से बाजार से या बाहर से कहीं बकरी लेके आते हैं और वो ग्रसित होती है, तो उसमें ये PPR होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे ये रोग आता है तो सबसे पहले तो तेज बुखार आता है, उसके बाद उसको तेज दस्त होते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा इसके निमोनिया के लक्षण इसमें आने शुरू हो जाते हैं, जैसे सांस तेजी से आना, मुश्किल हो जाना, और इसके मुंह में छाले होने शुरू हो जाते हैं। अगर हम मुख्य रूप से देखें तो 3 लक्षण इसके प्रमुख होते हैं, एक तो दस्त का हो जाना, मुंह में छाले और निमोनिया। अगर ऐसे लक्षण हैं तो हम मान लेते हैं कि ये PPR का रोग है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, ये वर्ष के काऊ विशेष महीना में होए क्या पूरे साल भर कबू है सके?
2: ये देखने में आता है कि जब तापक्रम बहुत ज़्यादा विपरीत होता है, जैसे बहुत कम तापक्रम हो जाता है कि जाड़े का मौसम है या बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, तो जो वातावरण का दबाव है उसकी वजह से PPR होने की संभावना ऐसे मौसम में ज़्यादा रहती है।
1: अच्छा, तो अब जैसे काऊ पशु है, PPR के लक्षण हम देख रहे हैं, तो सब कहा जाकर उपचार कैसे संभव है, कोई टीका भी कहा जाको?
2: PPR एक विषाणु जनित रोग है, इसकी वजह से इसका कोई कारगर उपाय तो नहीं है, कोई ऐसी दवा नहीं जिसकी वजह से इसका इलाज किया जा सके। इसका बचाव ही इसका एक प्रमुख साधन है। इस PPR से बचाने के लिए PPR टीका, PPR वैक्सीन आती है, और ये टीका जब 3 माह का छोटा बच्चा होता है उस उम्र में लगाई जाती है, और एक बार टीका लगाने के बाद ये टीका इतना अच्छा है कि 3 साल तक बच्चे में और बड़े जानवर में प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। इसका मतलब 3 साल तक फिर आपको दोबारा नहीं लगाना होता है।
1: अच्छा, 3 साल के बाद फिर जाए हम दोबारा लगवा सकें?
2: बिल्कुल, 3 साल होने के बाद आप इसको दोबारा लगा सकते हैं।
1: तो कहवी वाली बात ये है कि भैया जब इलाज मौजूद ना है तो जाते बढ़िया बात जी है सके कि भाई बचाव कर लो जाए, बचाव करिए के ताई तुम्हें कहा है 3-3 साल के अंतर पे भाई जी टीका लगवाना जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो तो बात भाई बकरी प्लेग की, आग जाके अलावा और कौन सी ऐसी बीमारी, संक्रामक बीमारी?
2: इसके अलावा एक और दूसरा एक रोग है जिसको हम एंटीरोटॉक्सीमिया, हिंदी में अगर उसे कहें तो आंतों

0: जहर या आंत्र विषाक्तता। इसमें
1: जी
0: क्या होता है कि ये एक जीवाणु से होता है और ये जीवाणु बकरियों के और भेड़ों के आंतों में हमेशा रहता है। जैसे ही हम किसी कारण से बकरी के भेड़ों के चारे में परिवर्तन होता है, विशेष रूप से जैसे ज़्यादा दाना खा लिया, ज़्यादा आटा खा लिया, या चावल बचे हुए ज़्यादा खिला दिए, या रोटी बची हुई ज़्यादा खिला दी, या आपने कोई अच्छा चारा खिला दिया, अचानक परिवर्तन जब

0: खिला दिया। अचानक परिवर्तन जब चारे में होता है तो ये जो जीवाणु जो आंतों में बैठे रहता है उसमें से जहर निकलना शुरू हो जाता है
1: जी,
0: इसीलिए इसे आंतों का जहर कहते हैं। जैसे ये जहर पूरे शरीर में फैलने लगता है तो जानवर में लक्षण आने लग जाते हैं। इसका लक्षण क्या है कि जैसे ही शुरुआत होगा रोग का तो शुरू में जानवर थोड़ा सा अलग रहने लगेगा, इसके बाद उसके पेट में दर्द होने लग जाता है, जानवर छटपट आता है, हाथ पैर मारने लग जाता है, उसके पेट में गैस बन जाती है जिसे हम अफरा कहते हैं, दस्त भी हो जाते हैं और ये रोग इतना तीव्र है कि 4 से लेकर के 12 घंटे में इसकी मृत्यु भी हो जाती है।
1: अच्छा, तो ये तो बड़ा भयानक रोग है।
0: हाँ जी।
1: तो जाके बचाव का जी या जाके उपचार का जी कोई व्यवस्था है का?
0: देखिए जो ईटी है इसका भी इसी नाम का टीका आता है।
1: अच्छा,
0: ईटी वैक्सीन, एंटीरोटॉक्सिमा वैक्सीन, या आप जाके कह सकते हैं कि हमको जो आंतों की जहर की वैक्सीन है या फड़किया रोग के नाम से भी जानते हैं इसको, उसका टीका आता है। ये टीका आप जब 3 महीने का छोटा बच्चा होता है उसके बाद लगवाते हैं, 3 से 4 महीने की उम्र में लगवा लीजिए, या जब भी कोई आपको समय बड़ी बकरी है तो उसमें भी लगवा सकते हैं। फिर ये टीका लगाने के बाद फिर आपको हर 6 महीने में ये टीका लगाना होता है
1: जी,
0: क्योंकि इस बीमारी में इलाज कराने का मौका किसान को मिलता ही नहीं है। तो केवल एक ही चीज़ है कि आप बिल्कुल इसका टीका लगवा लीजिए जिससे कि आपको मृत्यु से नुकसान ना सहन करना पड़े।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, ये टीका की जो बात आई कही, जो तो पहले पशु प्लेग आपने बताया को बकरी प्लेग, वहाँ में टीका की व्यवस्था आई और जहाँ में हम टीका लगवाए हुए थे फायदा देख रहे हैं, तो डॉक्टर साहब जाको टीका कोई विशेष मौसम में या ऐसे लगा में कि साल के काऊ महीना में काऊ दिना लगा सके?
0: देखिए ऐसा है कि अब हम लोग क्या बता रहे हैं किसानों को कि अब उम्र के हिसाब से टीके लगाना का सुझाव देते हैं, क्योंकि अगर हम मौसम में देखते हैं तो अब मौसम में इतने ज़्यादा परिवर्तन हो रहे हैं कि कभी भी मौसम ठंडा हो जाता है ज़्यादा, कभी गर्म हो जाता है, तो अब ये बीमारियां हर एक मौसम में देखी जा रही हैं
1: जी।
0: इसीलिए हम आप सभी को ये सलाह देते हैं कि ये जैसे ही आपका जो बकरी का बच्चा 3 महीने से ऊपर का हो जाए तो उसको टीकाकरण करा दीजिए। वैसे चूँकि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो चारे में परिवर्तन होता है वो करीब मार्च अप्रैल में आता है, तो हम ये बताते हैं फरवरी के माह में टीका तो अवश्य ही लगवा लें।
1: अच्छा, तो ये तो टीका। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ और, टीके से बात एक समझ में आ रही है कि टीका लगवाए वो फायदेमंद है, लेकिन हमारे कछु किसान भैया ऐसे हैं या तो अज्ञानता की वजह से टीके के बारे में जानकारी ना है, और फिर जो हमारी राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है ये भी टीकाकरण को कार्यक्रम चला में, तो टीका क्या ज़्यादा महंगो है या टीके की भ्रांति कुछ ऐसी है कि भैया टीका लगाए थे परहेज करें या आदमी जाने ही ना है, तो आपके केंद्र पे वो टीकाकरण हो तो गो या आपने देखा होगा किसान भाई अंते कि जी टीका ते आदमी परहेज क्यों करे? क्यों तो ऐसे ही जो कहें कि भैया बकरिया को या पशु को बड़े पशु को दूध सूख जाए टीकाकरण ते, क्यों क्यों कहें कि बुखार आ जाए या कोई गर्भवती पशु है गर्भ धारण जाने कर रखे का है तो वह टीका लगाए हुए थे गर्भ गिर जाए, ऐसी कोई बात है का?
0: देखिए इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं किसानों को बता देता हूँ कि टीका आपके जानवर को रोग से बचाता है और जानवर आपका महत्वपूर्ण है और वो उसकी एक अच्छी खासी कीमत होती है। ये करना कि इसका लगाने से बुखार आ जाता है और इसके जने से गर्भपात हो जाता है, ये बहुत ही कम कारणों में ऐसा होता है, गर्भपात तो आपको बहुत कम दिखाई देगा। मेरा तो आप किसानों को बिल्कुल ही ये सुझाव है कि आप इन बातों पर बिल्कुल मत जाइए, आप टीका लगवाइए और जिससे आपको फ़ायदा ही होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जो गर्भधारण वाली बात कर रहे हो गर्भपात हो जाता है, ऐसा देखा जाता है कि जो बहुत ही ज़्यादा एडवांस प्रेगनेंसी है जिसके 1-2 महीने रह गए वहाँ कभी 1,000 में से 1 पशु को ऐसी घटना हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर इसमें इस तरह का कोई रिएक्शन नहीं होता है। और चूँकि जानवर आजकल बहुत बहुमूल्य है आपको टीका अवश्य लगवाना चाहिए।
1: हाँ, तो जाके लाभ ज़्यादा है भैया, हानि या की संभावना कबू है सके, लेकिन अगर हम देखें तो जाके लाभ ज़्यादा है, तो टीकाकरण करवाना एक तरह से यूँ समझ लो कि भैया जो तुम्हारा झुंड है वह को टीकाकरण हमेशा करवाना चाहिए, साल दर साल या टीका की जितनी म्याद होए वह देखत हुए वह को टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए। तो डॉक्टर साहब दो बीमारी का हमने जिक्र करो, जाके अलावा वो भेड़ बकरियों में और कौन सी ऐसी बीमारी है संक्रामक बीमारी जो हमारे जहाँ क्षेत्र में पाई जाए?
0: एक और तीसरा रोग है जिसके बारे में किसान को जानकारी जरूरी है, जिसको हम खुरपका मुंहपका रोग कहते हैं।
1: जानते ये तो बड़े पशु में
0: ये बड़े पशुओं का ही रोग है मुख्य रूप से, लेकिन अब ये रोग जो बकरियां हैं उनमें हालांकि इतना तीव्र नहीं होता है, उनमें जिस तरीके से लक्षण आते हैं वो थोड़े गायों के हिसाब से कम होते हैं, जैसे मुँह में छाले होना, पैरों में छाले बन जाना, फिर बड़ा होकर फिर वो घाव बन जाना, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि

0: छोटे बच्चे होते हैं, जो 1 महीने के बच्चे हैं, 15 दिन के बच्चे हैं, उनमें जो इसका जो विषाणु है वो सीधे हृदय पर प्रभावित करता है
1: जी।
0: और बच्चे बिना किसी लक्षण के अचानक मर जाते हैं। अगर किसी किसान के पास 100 बच्चे हैं, अगर उसमें खुरपका मुंहपका का रोग बकरियों में आ गया तो वो छोटे बच्चों में आ जाएगा, तो छोटे बच्चे आपके एक भी नहीं बचेंगे। इसलिए आपको बड़ी बकरी को तो बचाता ही है, ये छोटे बच्चों को इस रोग से बचाना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हम यहाँ के किसानों को ये सलाह देते हैं कि ये तीसरा ऐसा टीका है जो आवश्यक है और इसको लगाना चाहिए। ये जो खुरपका मुंहपका का टीका है, ये वही टीका है जो गायों में लगता है, केवल बकरियों में उसकी मात्रा कम हो जाती है। इसलिए ये जो टीका है, ये भी जब छोटा बच्चा होता है 3 से 4 महीने की उम्र के बीच में इसको लगा दिया जाता है, फिर इसके हर 6 महीने या 1 साल जैसी भी टीका मिलता है उसको उसके हिसाब से उसको दोबारा लगाना चाहिए।
1: तो डॉक्टर साहब, खुरपका मुंहपका का टीका तो जो हमारे किसान भैया हैं जिन पे बड़े पशु हैं, गाय भैंस है, वो तो हमेशा लगवाते रहें, और जाके अलावा वो जो सरकारी योजना के तहत वो टीका बड़ी कम कीमत पे और अपने नज़दीक गांव के नज़दीकी लगावे की व्यवस्था करी गई है, तो जाए तो करवाया जा सके। अच्छा, जे खुरपका मुंहपका के अतिरिक्त और कोई ऐसी बीमारी है जो एक पशु से दूसरे यानी छूत को कोई ऐसा संक्रामक रोग है?
0: अभी एक रोग है जो हम मथुरा के आसपास देख रहे हैं, हालांकि उसका प्रकोप बहुत ज़्यादा नहीं है, मथुरा वृंदावन आगरा में हमने देखा है, उसको हम बकरी माता कहते हैं। भीड़ माता तो मेरे ख्याल से किसान सभी जानते हैं, जिसको सीप पॉक्स बोलते हैं, माता रोग जिसको आप किसान भाई से समझते हैं, वही रोग बकरियों में भी होने लगा है जिसको हम बकरी माता कहते हैं। और मुझे तो ये लगता है कि ये रोग यहाँ आ चुका है, तो जो अच्छे किसान हैं जिनके पास बड़ी अच्छी बकरियाँ हैं उनको भी इस बकरी माता का या गोट पॉक्स का टीका लगवाना चाहिए। ये टीका भी 3 से 4 महीने की उम्र में लगता है और फिर इसके बाद इसको हर साल लगाते हैं।
1: तो इससे भी पशु की मृत्यु है सके?
0: ये बकरी माता जिसको बकरी चेचक भी बोलते हैं, ये रोग इतना तीव्र है कि बच्चों में तो 50 से 60% तक मृत्यु हो जाती है और बड़े पशुओं उसमें भी कम से कम 40-50% बड़ी बकरियां मर जाती हैं, तो ये भी काफ़ी संक्रामक और घातक रोग माना जाता है।
1: तो डॉक्टर साहब, ये 4 रोग तो आपने बताए, और जाके अलावा कोई ऐसा रोग है जो संक्रामक रोग की श्रेणी में आवत हो?
0: यही प्रमुख 4 रोग हैं जिनमें 3 पहले वाले थे। मैं आपको एक बार और किसान को बस सारी चीज़ें एक साथ कर देता हूँ। पहला जो है वो PPR बकरी प्लेग, दूसरा ET जिसको हम आंतों का जहर बोलते हैं, तीसरा खुरपका मुंहपका रोग, और चौथा जो अभी देखा गया है बकरी चेचक। ये 4 ऐसी बीमारियां हैं जो यहाँ देखी जा रही हैं। और इसके अलावा बस मैं ये किसानों को बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे हैं कि आप अपने इनसे बचे रहें और जो आपका बाड़ा है वहाँ पर इसकी सफाई रखें।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बहुत बड़ी बात समझ में आ रही है कि 4 ऐसे रोगों को जिक्र करे हो आपने जो कि संक्रामक रोग हैं और बहुत ही खतरनाक रोग हैं, जाते पशुपालक भाई है बहुत आर्थिक नुकसान है सके। अब 4 रोगों को एक टीका है, अगर वो टीकाकरण करवाया लो जाए तो भैया वो रोग न होंगे। तो सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए। वाके अलावा अगर कोई पशु पालक ऐसा है जहाँ पे बहुत सारी बकरियाँ हैं, रेवड़ में बहुत सारी बच्चे हुए हों हमें संघ में, तो संक्रामक रोग एक दूसरे पशु पे न फैले, तेजी से न फैले, जाकाजे ऐसे कौन कौन से उपाय वो अपने बरकी बकरी फार्म पे करे कि जाते के रोगों की संभावना कम से कम हो, या यूँ कह लो कि कौन कौन सी ऐसी सावधानी रखे अपने बाड़े में?
0: बिल्कुल आपने सही पूछा है। जैसे ही कोई रोग हो जाता है तो ये किसानों को करना चाहिए, जो बीमार पशु हैं उनको अलग कर देना चाहिए, स्वस्थ पशुओं को अलग करना चाहिए। अलग करने से कभी क्या होता है कि जो बीमार पशु हैं उन्हीं को ही देखने वाले स्वस्थ पशुओं में चले जाते हैं तो बीमारी फैलती है। तो जो बीमार पशुओं को रखता है उसको अलग होना चाहिए। इसके अलावा सफाई पूरी रखनी चाहिए। इसके अलावा जो बकरी की मैंगनी है उसको आप दूर कहीं गड्ढे में रख दें, जिसके वजह से बीमारी का प्रकोप और कम हो जाता है। और जब आपका जो बाड़ा है उसमें से करीब 5-6 इंच मिट्टी खोद के बाहर निकाल दें, क्योंकि जो ऊपर वाली जो मिट्टी होती है उसी में ही रोग के कीटाणु रहते हैं, और नई मिट्टी ला करके बाहर से रख दें, जिससे कि आपका जो रोग के जो विषाणु हैं या जीवाणु हैं वो कम हो जाएंगे। सफाई एक ऐसा प्रक्रिया है, अगर आप फार्म पर रखते हैं और वैक्सीनेशन कराते हैं तो आपके यहाँ बकरी में कोई भी रोग नहीं हो।
1: तो भैया, उम्मीद हम ये करें कि जो हमारी चौपाल में किसान भैया जो हमें सुनने का है वो डॉक्टर साहब ने जो सावधानी बताई का है वाको पालन करेंगे, और भैया ऐसा अगर करेंगे और टीकाकरण और संघ में करवा लेंगे तो उनके जो पशु हैं उनमें ये रोग

0: आएंगे और वो आते हुए आर्थिक नुकसान से बचे रहेंगे। तो डॉक्टर अशोक कुमार जी, आज आप हमारी जा चौपाल में आए और बड़ी बढ़िया जानकारी दी आपने, जाकर आज आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी भैया जानकारी ले रहे बकरीन के प्रमुख संक्रामक रोग और टीकाकरण के संबंध में जानकारी दे रहे हैं विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार। तो भैया अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमारे जो घर के बालक यानी हमारे जो युवा हैं वे ये खेती के परंपरागत जो हमारे काम हैं, परंपरा से हमारे जुड़े हुए काम हैं, इनमें अपने ज्ञान और अपनी नई तकनीक को प्रयोग करके यह खेती हुए अच्छी और लाभदायक बना सकें। भैया यह कि आवश्यक है कि भैया टेक्नोलॉजी यानी नई तकनीक, मोबाइल घर घर में मौजूद है और मोबाइल के माध्यम से बहुत सी जानकारी हम घर बैठे ले सकें, चाहे वर्षा की जानकारी हो, चाहे मंडी के भाव की जानकारी हो या कोई बीमारी की जानकारी हो, कब सिंचाई करनी है, कब कौन सी खाद डालनी है, कहाँ बात करनी है, कहाँ से समाधान मिल सके, सब कछु कर सके। ड्रोन से छिड़काव, समय और दवा दोनों की बचत कर सकें। और अगर हमारी फसल है तो या में जैसे गेहूँ बेचने की जगह आटो अगर बेचें, या फल बेचने की जगह वाय काट के अगर हम अचार में बदल लें तो निश्चित सी बात है हमारी कीमत बढ़ जाएगी। और आजकल तो भैया एक ऐसी नई चीज़ चल रही है कि लोग गाँव में जामें और गाँव में रुकें, और या एक अहमे हैं एग्री टूरिज़्म, यानी गांव में जाके गांव को महसूस कर रहे। या मैं बहुत सारे किसान ऐसे कामन को कर रहे हैं। भैया बाजार और बाजार से जुड़ी हुई जो हमारी जानकारी है वो आपके मोबाइल पे मौजूद है, बस जाके लिए आवश्यक है कि हमें वाकई सही जानकारी होए और जो विश्वसनीय जानकारी हम ले सकें। तो भैया हम किसानन से जुड़ करके, जैसे आजकल समय है कृषि उत्पादक संगठन यानी FPO बनाए हुए को, या मैं सबरे किसान मिलके एक जैसी खेती करें, एक संग बीज लामें, एक संग उत्पाद करें और एक संग बाजार में ले जाएं, तो बहुत कम खर्चा में ज़्यादा मुनाफा हम कर सकें, नई तकनीक को अपनाए सकें, प्राकृतिक खेती, और आजकल तो कम जगह में ज़्यादा उत्पादन देवे की खेती की नई तकनीक जाए या सीख सकें। मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, मशरूम उत्पादन है, मधुमक्खी पालन है, ये भी कार्य हम अपनी खेती के संग कर सकें। जलवायु परिवर्तन के हिसाब से कम पानी वाली फसल में जो नई तकनीक है, चाहे हम बूंद बूंद सिंचाई के में वाको भी हम प्रयोग कर सकें। संग ही संग बैंक और जो बीमा है इन सरकारी योजनाओं को भी हम लाभ लेके अपनी खेती अच्छे कर सकें। तो भैया या के लिए बस आवश्यक है कि हम नई तकनीक से जुड़े रहें, नई नई चीज़ों की सीखने के लिए मन बनाएं और अपनी खेती को और अपने गांव को अच्छो करें। भैया ये तो बात रही यवन की, अब बात करें मथुरा और मथुरा के आसपास के मौसम की। भारतीय मौसम विभाग से प्राप्त पूर्वानुमान के अनुसार अगले दिनों में आसमान में मध्यम से घने बादल छाए रहने की संभावना है। तो भैया को सलाह दी जावे है कि वर्षा की संभावना को देखते हुए तैयार धान की पौध की रोपाई अतिशीघ्र पूरी कर लें और वर्षा नायवे की स्थिति में उड़द मूंग आदि फसल की बुवाई करें। बुवाई रोपाई और अन्य कृषि कार्य वर्षा नायवे एवं आसमान साफ हैवे पे करें। उर्वरक कीटनाशी रोगनाशी को छिड़काव आसमान साफ हैवे पे करें। वर्षा के बाद फसलन में कीट एवं रोगन की नियमित निगरानी करें। पशुओं को सूखे सुरक्षित स्थान पर बांधें, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएं, पशुओं को पेड़ के नीचे व बिजली के खंभन के पास न बांधें जिससे पेड़ की टहनी गिरवे या बिजली के खंभा में करंट आएवे की कोई संभावना बन सके। तो भैया अब ये तो बात रही मौसम की, अब आपको जानकारी देवे हैं मथुरा मथुरा के आसपास की मंडी के बाजार भाव की। भैया आलू के भाव रहे खैर मंडी में 500 रुपया प्रति क्विंटल, कोसीकल 800, मथुरा 630। गेहूँ के भाव रहे खैर में 2541, कोसीकला 2555 और मथुरा में 2526। सरसों के भाव रहे खैर में 6500, धान के भाव रहे भैया खैर में 3509। नींबू के भाव रहे भैया कोसीकला में 4500 और मथुरा में 3342। टमाटर के भाव कोसीकला में 2500 और मथुरा में 1910। तो ये भैया जानकारी मथुरा के आसपास की मंडी की भाव की। अब भैया आपको सुनबा में है यह है

0: आई बदरिया बरसन हारी। हाँ भाई, आप आनंद ले रहे मौद्री शर्मा के स्वर में या ब्रज लोकगीत को, ये के संग आप सभी से विदा लेवे को है कुछ समय। सभी भैया बहनन को हमारी राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया दीपक गोस्वामी ने। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से शुरू। मुख्यमंत्री ने विपक्ष से सार्थक चर्चा करने का किया आह्वान। कल पेश होगा अनुपूरक बजट। लखनऊ में आज से ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की दो दिवसीय बैठक का हुआ शुभारंभ। सांख्यिकी के प्रसार और प्रणालियों में नवाचार से आपसी सहयोग को बढ़ावा देने पर दिया गया जोर। सावन माह के पहले सोमवार पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। वाराणसी में श्रद्धालुओं और कांवड़ियों पर की गई पुष्प वर्षा। और प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने जताया अगले तीन दिनों तक भारी बारिश का अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन विधानसभा में वर्तमान विधानसभा के सदस्य रहे आलम बदी के निधन पर शोक जताया गया। इसके साथ ही 21 पूर्व सदस्यों को भी श्रद्धांजलि दी गई। सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 9 वर्ष में संवाद और जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों की समीक्षा करने के बाद बनी योजनाओं के माध्यम से ही सरकार बेहतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सदन में होने वाली चर्चा और सुझावों पर काम कर सरकार आज उत्तर प्रदेश के प्रति लोगों की धारणा बदल सकी है और इसे रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बनाना संभव हो सका है। श्री योगी ने कहा कि इस बार भी सभी सदस्यों से आग्रह किया गया है कि सदन के समय का बेहतर उपयोग करते हुए हर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर सदन में चर्चा की जाए।
3: इस प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग हो, यह बीजेपी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए सरकार की सदैव से प्राथमिकता रही है। डबल इंजन की सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य भी कर रही है। पिछले 9 वर्षों में इसी संवाद से जनप्रतिनिधियों के द्वारा उठाए गए मुद्दों की समीक्षा करने के उपरांत बनी हुई योजनाओं के माध्यम से ही हम प्रदेश में कुछ बेहतर करने का प्रयास कर पाए हैं। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में, आमूलचूल परिवर्तन करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है।
2: इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सरकार 1 से 1.5 सप्ताह में आउटसोर्स कमीशन को लागू करने के साथ ही न्यूनतम मानदेय सुनिश्चित करने जा रही है। कल सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। उधर विधान परिषद में समाजवादी पार्टी सदस्यों ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में अनियमितता का मुद्दा उठाया। जवाब में नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाई से अवगत कराया। सरकार के उत्तर से संतुष्ट न होने पर सपा के सदस्यों ने वेल में जाकर नारेबाजी की। विधान परिषद में प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेतर कर्मचारियों की तरह ही सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों को भी कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ दिए जाने का मुद्दा भी उठा। इस पर नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार जनहित के कार्यों को लेकर प्रतिबद्ध है और इस मुद्दे पर विचार करेगी।
4: शिक्षकों के लिए हमारी सरकार ने इस बीच माननीय सभापति जी काम किया है, कैशलेस सहित, शिक्षा मित्रों सहित, अनुदेशकों सहित कितने बड़े बड़े कदम उठाए। कोई भी अगर छूटा होगा तो मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहता हूँ कि इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके हम लोग कोई छूटे न, कोई रूठे न, कोई टूटे न, इस लक्ष्य में काम कर रहे हैं।
2: लखनऊ में आज से ब्रिक्स

0: देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की दो दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। उद्घाटन सत्र के दौरान ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के एनएसओ प्रमुख मौजूद रहे। बैठक में ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन जीएसपी 2026 का मसौदा और इसका संक्षिप्त संस्करण भी जारी किया गया। बैठक में सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव और ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अध्यक्ष डॉक्टर सौरभ गर्ग ने राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों के आधुनिकीकरण, प्रशासनिक डेटा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के उपयोग और गोपनीयता मानकों को बेहतर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तकनीकी के आदान प्रदान और साझा अनुभवों के माध्यम से ब्रिक्स देशों का उद्देश्य डेटा की कमी को दूर करना, साक्ष्य आधारित निर्णय लेना और भविष्य के लिए लचीली सांख्यिकी प्रणालियां बनाना है। सभी देशों ने ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के तहत सहयोग को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता बैठक में दोहराई। प्रशासनिक डेटा की क्षमता और विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी विषय पर दो विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज ग्रेटर नोएडा में आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के साथ ही देश प्रगति के पथ पर है। आज उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो चुका है और दुनिया भर की बड़ी कंपनियां नोएडा में निवेश कर रही हैं।
1: प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को पैर से खड़ा करने का काम किया है, उसको भी हमें याद रखने की आवश्यकता है। नागरिक व्यवस्था के पहले नीचे बात करता, आज व्यवस्था नागरिक तक पहुंच रही है, ऐसी हमारी सरकार की व्यवस्था है।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज आगरा के डॉक्टर भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय का 92वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। समारोह में 64 मेधावी विद्यार्थियों को 88 पदकों से सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि डॉक्टर आंबेडकर ने लोकतंत्र को केवल शासन प्रणाली नहीं बल्कि जीवन जीने का एक मूल्य मंत्र दिया, जहां प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा सर्वोपरि है। सावन माह के पहले सोमवार पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बाबा के जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कांवड़िए कतारों में लगे हैं। प्रदेश सरकार ने वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ, बागपत, कानपुर, आगरा और संभल सहित कई जिलों में सुरक्षा, सफाई, पेयजल और आवागमन को लेकर व्यापक तैयारियां की हैं। भगवान राम की नगरी अयोध्या में भोर से ही श्रद्धालु सरयू में स्नान कर प्राचीन नागेश्वरनाथ मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल, बैरिकेडिंग और निगरानी की विशेष व्यवस्था की गई है। प्रयागराज में शिव भक्ति के साथ नारी शक्ति की भी बड़ी सहभागिता देखने को मिल रही है, जहां बड़ी संख्या में महिला शिव भक्त गंगा यमुना का जल लेकर काशी के लिए प्रस्थान कर रही हैं। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम को इस अवसर पर विशेष रूप से सजाया गया है। यहां बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया है और श्रद्धालुओं और कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सावन के प्रथम सोमवार पर धर्म नगरी काशी पूरी तरह शिवमय उठी। तड़के ब्रह्म मुहूर्त से ही श्री काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वेश्वर के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। हर हर महादेव और बोलबम के जय घोष से पूरा शहर भक्तिमय वातावरण में डूबा हुआ है। गंगा द्वार से बड़ी संख्या में कांवड़िए, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे कतारबद्ध होकर बाबा के दरबार में पहुंचकर दर्शन और जलाभिषेक कर रहे हैं। डाक बम कांवड़ियों के लिए अलग लेन तथा भदोही से वाराणसी तक एक लेन कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षित रखी गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए वीआईपी प्रोटोकॉल भी स्थगित रखा गया है। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: इधर गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदर ने सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 4 अगस्त से 12 अगस्त तक अवकाश घोषित कर दिया है।

0: ये निर्णय कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। चेहलुंग के मद्देनजर बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, भूलभुलैया जैसे लखनऊ के प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल आम पर्यटकों के लिए बंद रहेंगे। हुसैनाबाद और संबद्ध ट्रस्ट ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में मध्यम से भारी बारिश हुई है। भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। फर्रुखाबाद में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कई जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से शुरू। मुख्यमंत्री ने विपक्ष से सार्थक चर्चा करने का किया आह्वान। कल पेश होगा अनुपूरक बजट। लखनऊ में आज से ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक का हुआ शुभारंभ। सांख्यिकी के प्रसार और प्रणालियों में नवाचार से आपसी सहयोग को बढ़ावा देने पर दिया गया जोर। सावन माह के पहले सोमवार पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। वाराणसी में श्रद्धालुओं और कांवड़ियों पर की गई पुष्प वर्षा। और प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने जताया अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। सब 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: बड़ी बहू, ये तुम्हारे ना
6: इतनी भी क्या जल्दी थी।
5: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना। और ये
6: मेरी गुड़िया के नाम।
5: पर दादी,
6: हाँ,
5: आपके नाम?
7: सब कुछ मैंने बैंक।
8: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी।

बरसात की ये मनभावन ऋतु जब ठंडी हवाओं, भीगी फुहारों और मिट्टी की सोनी खुशबू के साथ मन को छू जाती है, तब पुराने सदाबहार फिल्मी गीतों का आनंद और भी बढ़ जाता है। आज किस सुहाने शाम को हमने सजाया है आपके व्हाट्सएप संदेशों और फरमाइशों से। आपके भेजे गए संदेशों के आधार पर हम सुनेंगे सावन और बारिश के मधुर फुहारों से भीगे कुछ ऐसे गीत जो आपने भेजे हैं। वर्षों बाद भी अपनी ताजगी और मिठास बनाए हुए हैं ये गीत जो आज हमने चयनित किए हैं। तो आइए, चाय की प्याली का स्वाद लीजिए, बारिश की रिमझिम का आनंद उठाइए और संगीत की इस खूबसूरत यात्रा में हमारे साथ बने रहिए।

बरसात की पहली फुहार जब धरती को छूती है तो केवल मिट्टी ही नहीं महकती, मन भी भीग उठता है। शैलेंद्र के संवेदनशील शब्दों और सलिल चौधरी के मधुर संगीत से सजा कार्यक्रम का पहला गीत आज भी हर सावन की पहचान बना हुआ है। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की अमर आवाज में ये सदाबहार रचना। फिल्म का नाम है परख।

लता मंगेशकर की आवाज में परख फिल्म का गीत आपने सुना। शैलेंद्र की रचना थी, सलील चौधरी का संगीत निर्देशन। और इस गीत को सुनने के लिए हमें संदेश मिले जबलपुर मध्य प्रदेश से सोनाली दुबे, मोनिका तिवारी और रानू का। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर, डॉक्टर अमनदीप, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, कालकस्सी। नांदड़ा महाराष्ट्र से के हिवराले, साधना और प्रतीक हिवराले। सीतामढ़ी के श्रोता हैं अकरम हुसैन, इशरत वसीम, रुबीना आरिज, अदीम, नदीम शमीम और इनके ढेर सारे साथीगण। खंडवा मध्य प्रदेश से संजय बमार मारकंडी, ममता मारकंडी और कीटू मारकंडी। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं रिजवान खान, आशा सभी हाना सुरेहान खान।

झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर पेर परमेश्वर मीनाक्षी काना मनोहर भाई बागरी और प्रभुलाल बागरी का संदेश मिला है। धाड़ीनांद्रा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठी संदीप बाठी और अमूल बाठी। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा इंद्रजीत कौर छाबड़ा स्वीटी छाबड़ा। मुदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी जुड़े हैं। सहरसा लोहदारा कबीरधाम छत्तीसगढ़ से गुणीराम राजपूत संतोषी हेमप्रभा पुष्पराज सूरज राजपूत। मस्तानपुरा से अनंता भगत अरुणा चेतन और सुलोचना भगत। पंडर कवर्ता से अनिल बुरंडे उषा बुरंडे अनुश्री और धनुश्री। अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार मलकीत कौर आरती रानी राघव हरमन और इनके पारिवारिक जन। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया रीता रजत मयंक भाटिया। नांदेड़ इताला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल गणेश लाल शुभम अरुणो राखी दुर्गेश्वरी और तृप्ति जायसवाल। नेपानगर मध्य प्रदेश से जुड़े हैं सुदर्शन शाह पल्लवी शाह प्रखर कुशल नीति सुरभि अश्विन मंगलाबीन और राजेंद्र जी शाह। मलाली हिमाचल से हर्ष विनय विनीत और रोजश। चंडीगढ़ से शेफाली शैफी डेविस विमला और सतीश अनिजा। श्रोताओं सावन की मस्ती बहती पुरवाई और मन में जागती मीठी भावनाएं इन सब का सुंदर चित्र कार्यक्रम के अगले गीत में देखने को मिलेगा। मुकेश और लता मंगेशकर की दिलकश आवाज ने इस हर पीढ़ी का प्रिय गीत इस बना दिया है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। मिलन फिल्म का गीत है आनंद बख्शी की रचना संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: करूं।
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में मिलन फिल्म का गीत। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। राजकोट गुजरात से रश्मि झरना भरत कुमार, गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लो परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश अमन और नामदेव राधा नामदेव। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित और पीयूष कुमार। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार, श्वेता किसुतासु, अर्णव सत्यम, आनंद मुन्ना भगत और गुट्टी भगत। गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम, मोहम्मद अयाज अंसारी, एस क्यू राहुल और मोहम्मद उस्मान अंसारी। पलारी छत्तीसगढ़ से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल और यशस्वी वर्मा। जाफराबाद मराठवाड़ा से सुधाकर राजू जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजू जाधव, कुमार संचित प्रथमेश, सर्वत प्रणाली सानवी और हर्षता। बलहर शाह से सूरज लोंढे, प्राची लोंढे और एकलव्य लोंढे का संदेश मिला है। चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा। दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मेघलानी, बबीता मेघलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। डेर पाटन गुजरात से धीरज बी रवावी।

गंजडुरवरन से शमशुल खान, अदनान खान, फैजान, अनूर, ताविश, आबाद और उरहान खान। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला सुरलकर। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, नायशा, सबीहा, हनुस और रेहान। अकोला महाराष्ट्र से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर और धनंजय कटनकर। नांदेड़ से संतोष वसानी, उषा ऋषिकेश, अनिकेत और सागर कटक। अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप, अक्षय, रुद्रा, रुचिका और इनके परिवारीजन। श्रोताओं, जब फुहारें पड़ती हैं तो लगता है जैसे प्रकृति स्वयं कोई मधुर धुन गुनगुना रही हो। प्रेम, मौसम और संगीत का यही तो खूबसूरत संगम इस गीत में सुनाई देता है जो आप सुनने वाले हो। आइए सुनते हैं।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में अंजना फिल्म का गीत आपने सुना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के अंदाज में। खड्ग सिंह छोंकर एडवोकेट प्रकाश नगर मथुरा से जुड़े हैं। बोराला खुर्द महाराष्ट्र से आदिनाथ वाघ, अमोल बाग गुड़िया, कृष्णालीत अशोर देशमुख। जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्र सिंह। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता

से बसंत कुमार सिन्हा रेखा टीवी शो अजय कुमार रिमझिम रिमी तनुषी और तिलैया से अभय कुमार सनातनी शिवानी कुमारी प्रियंका कुमारी साहू रिया रिया तुजी आयुषी अनिरुद्ध बाबू मुन्नी देवी शौ जयप्रकाश सो और वसंत लाल हीरा मोती पन्नालाल सो। निजामाबाद तेलंगाना से अजीज मतीन शेख चांद फारूक सईद खलील कदीम शेख सलीम नांगलोई दिल्ली से मदन चक्रवर्ती और राजेंद्र चुट्ठा लातूर से उस्मान शेख सायरा बानू बाबा शेख सिमर शेख और करिश्मा शेख पलारी छत्तीसगढ़ से प्रकाश वर्मा प्रिंस निखिल और यशस्वी वर्मा मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा मधु बालूजा सागर बालूजा सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक आकांक्षा और माही मलिक सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा पूना मौर्जी होती शिवांश वर्मा अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार मलकीत कौर आरती रानी राघो हरमन और परवरीजन तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा सुनीता शमी रजनी आकाशदीप अनहद और गुरु शब्द।

गाडरवारा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से हमें सुन रहे हैं लकी साहू और अनिल साहू। मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम, अमजद अली, निशा और इनके परिजन। दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मेघा, राहुल खुराना, रचिता केशु और रिधान खुराना। आज के कार्यक्रम का समापन एक ऐसे गीत से जिसमें वर्षा, ऋतु, प्रकृति और भारतीय शास्त्रीय संगीत का अद्भुत मेल है। वाणी जयराम की मधुर आवाज में ये गीत बरसों से संगीत प्रेमियों के दिलों में अपनी विशेष जगह बनाए हुए है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत।

0: मंगेशकर वाणी जयराम के सुर में भी आप सुन रहे थे गुड्डी फिल्म का ये गीत। इसी के साथ शाम सुहानी प्रोग्राम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आपसे कुछ ही पलों में होगा।
1: आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने के प्रावधान वाला विधेयक आज पारित किया। हालांकि विपक्ष के हंगामे के कारण इस पर चर्चा नहीं हो सकी। सरकार ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 भी पेश किए। राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विभिन्न विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही और दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2:10 पर ही बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद 2 शुरू हुई तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही ध्वनिमत से बिना चर्चा के विधेयक को पारित किया। इससे पहले सदन ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मई में लागू किए गए अध्यादेश को नामंजूर करने के तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय के संकल्प को अस्वीकृत कर दिया। सदन ने विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधन को भी खारिज कर दिया। विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश करते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। मेघवाल ने मानसून सत्र के पहले दिन 20 जुलाई को सदन में ये विधेयक पेश किया था। इसी साल मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या इससे पहले 2019 में बढ़ाई गई थी। उस समय प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी। मेघवाल ने कहा कि स्वतंत्र भारत में शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और अगस्त 1956 में पारित विधेयक के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 11 की गई। उन्होंने कहा कि उसी मूल भावना को देखते हुए और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या अब 34 से बढ़ाकर 38 की गई है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक में भारतीय सांख्यिकी संस्थान को नया वैधानिक ढांचा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ये विधेयक वर्ष 1959 के पुराने अधिनियम का स्थान लेगा ताकि आधुनिक शैक्षणिक और शोध जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके तहत संस्थान को एक कॉरपोरेट निकाय के रूप में स्थापित करने और उसके प्रशासनिक एवं अकादमिक ढांचे को मजबूत करने का प्रावधान है। विधेयक में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति संस्थान के विजिटर होंगे और इसमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए प्रावधान है जो इसका प्रमुख नीतिगत कार्यकारी निकाय होगा। पिछले बजट सत्र के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने संसद को सूचित किया था कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI को एक निगमित निकाय के रूप में शामिल करने और इसके प्रभावी संचालन के लिए एक ढांचा प्रदान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया, जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा पहले से अधिक स्पष्ट बनाना है। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। प्रस्तावित कानून में बैंककार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर डिजिटल, क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उनके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक

समान नियम निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। लोकसभा की आज सुबह बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उद्देश्य उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद जब उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराया तो विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है, कृपया प्रश्नकाल चलने दें। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। इसके बाद दोपहर 12 बजे और फिर अपराह्न 2 बजे भी सदन में हंगामे की स्थिति बनी रही और कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण आज लगातार 11वें दिन भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। हंगामे के बीच सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कर दिया। सदन की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने ग्लासगो में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इन खेलों में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। सभापति ने उम्मीद जताई कि ये खिलाड़ी आगे भी अपनी मेधा से देश को गौरवान्वित करेंगे। इसके बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू करते हुए मुद्दे उठाने के लिए सदस्यों के नाम पुकारे। इसी दौरान विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के कारण कुछ सदस्यों ने तख्तियां दिखाई, जिस पर आपत्ति जताते हुए सभापति ने कहा कि सदन में तख्तियां नहीं दिखाई जा सकती। इसके बाद हंगामे के बीच सभापति की अनुमति से भाजपा की दर्शना सिंह ने स्वीप एपनिया का मुद्दा उठाते हुए कहा कि एक अनुमान के अनुसार भारत में करीब 90 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में लोग इसके खतरों से अनजान हैं। उन्होंने कहा कि स्लीप एपनिया नींद से जुड़ी एक गंभीर समस्या है, जिसमें सोते समय बार बार सांस रुकती और शुरू होती है। भाजपा सदस्य ने इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाने की मांग की। इसी पार्टी की अलका गुर्जर ने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसींद के पास स्थित भगवान देव नारायण की पवित्र जन्म और प्राकाट्य स्थली मालासिरी डोंगरी के विकास का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि स्थान देश के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, जहां हर साल दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कई सुझाव दिए। मनोनीत सदस्य उज्ज्वल निकम ने अदालतों में लंबित मामलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मामलों की सुनवाई में विलंब का एक कारण उनकी अधिक संख्या भी है। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहा, जिसके कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर उप सभापति हरिवंश ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू करने के लिए कहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने फिर से नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति की अनुमति से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोलते हुए राम मंदिर अयोध्या में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना चाहा, लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिली। सदन के नेता जेपी नड्डा ने भी आसन से अनुरोध किया कि विधेयक पर चर्चा शुरू हो चुकी है तथा किसी अन्य विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाए। इसके बाद उपसभापति ने कांग्रेस के अजय माकन से अपनी बात रखने के लिए कहा, किंतु माकन विधेयक के बजाय अन्य विषयों पर बोलने लगे। सदन में मौजूद संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आसन की ओर से बार बार विधेयक पर बोलने के लिए कहा गया, लेकिन विपक्षी सदस्य विषय को भटकाते हैं। उन्होंने माकन के संबोधन को कार्यवाही से निकालने की मांग की। हंगामे के बीच एमएसएमई विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा की सुमित्रा वाल्मीकि ने कहा कि समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है और ये विधेयक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बेहद उपयोगी है। तृणमूल

कांग्रेस की डोला सेन ने कहा कि एमएसएमई की मदद से बेरोजगारी दूर की जा सकती है। बीजत के डॉक्टर संतृप्त मिश्रा ने कहा कि जीडीपी में एमएसएमई का 35% योगदान रहता है, लेकिन इसकी राह आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि मूल विधेयक 2026 में आया था और 20 साल बाद इसका संशोधन आया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान एमएसएमई क्षेत्र में बहुत बदलाव हो चुका है। विधेयक में बड़ी चुनौतियों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव ने कहा कि विधेयक में मध्यस्थता और फैसलों के त्वरित निपटारे के लिए नए नियम तय किए गए हैं, जो सराहनीय कदम है, लेकिन इन नियमों का पालन भी जरूरी है, अन्यथा न्याय मिलने में देरी होगी। अन्नाद्रमुक के एम थंबीदुरई ने कहा कि देश के विकास के लिए एमएसएमई जरूरी है। उन्होंने केंद्र से मांग की कि वह तमिलनाडु में एमएसएमई कार्यक्रम को सहयोग दें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ये विधेयक उसे शक्ति प्रदान करेगा। तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव वीड़ा ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इसके प्रावधान दर्शाते हैं कि लघु कंपनियों के लिए सुचारू व्यावसायिक संचालन को बढ़ाने पर सरकार निरंतर ध्यान दे रही है। बीआरएस के रविचंद्र बद्दी राजू ने कहा कि विधेयक मध्यस्थता और मध्यस्थता कार्यवाही को ऑनलाइन माध्यमों से संचालित करने की अनुमति देता है, जिससे विवादों का समाधान तेजी से अधिक सुलभ और कुशल तरीके से हो सकेगा। बहुजन समाज पार्टी के रामजी ने कहा कि विधेयक में उन बच्चों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है जो एमएसएमई सेक्टर में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कमजोर वर्ग के लोगों को निजी क्षेत्र में भी आरक्षण देने पर विचार करे। चर्चा में यूपीएलएल के प्रमोद बोरो, भाजपा के संजय सेठ, कांग्रेस के नीरज डांगे, प्रवीण चक्रवर्ती और बीजू जनता दल की सुलता देव ने भी हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाला ऋण वर्ष 2014 से कई गुना बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना, प्रशासनिक ढांचे में सुधार करना, व्यापार भुगतान में सुधार करना और नियमों के अनुपालन को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। श्री मांझी ने कहा कि इस विधेयक में न केवल एमएसएमई की परिभाषा में सुधार किया गया है, बल्कि इसके टर्नओवर की सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 39% हो गई है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसी के साथ विधेयक पर लाए गए विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। इस दौरान विपक्षी सदस्य लगातार हंगामा एवं नारेबाजी करते रहे। सदन में व्यवस्था बनते न देख उप सभापति हरिवंश ने करीब 3:30 बजे बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। सरकार ने लोकसभा में कई लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 उच्च शिक्षा में पहुंच, समानता, किफायती शिक्षा और समावेशन पर विशेष बल देती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार सभी विद्यार्थियों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, जिनका क्रियान्वयन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है। इनका प्रशासन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इन छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित अभिभावकीय आय सीमा तथा योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार SC ST और OBC वर्ग के सभी पात्र विद्यार्थियों को लाभ प्रदान किया जाता है। उच्च शिक्षा विभाग प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन PM USP योजना का संचालन करता है। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, जैसा कि योजना के दिशा निर्देशों में निर्धारित है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। 8:15 हुए हैं, आइए सुनते हैं देशकान।

0: देशकान। इसी के साथ देशकान का यह कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से होगा आपसे कुछ ही पलों में।
1: समीक्षा, आइए सुनते हैं विधानमंडल की समीक्षा। सबसे पहले सुनते हैं विधानसभा की समीक्षा, लेखक हैं योगेश श्रीवास्तव।
2: मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा में वर्तमान सदस्य आलमबदी सहित 21 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और सदन के वरिष्ठ सदस्य आलमबदी के निधन की सूचना दी। उन्होंने कहा कि आलमबदी इस सदन के सबसे वरिष्ठ और बुजुर्ग सदस्य थे और पांचवी बार निर्वाचित होकर आए थे। आजमगढ़ के निजामाबाद निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित आलमबदी उम्र के इस पड़ाव में भी राजनीतिक सक्रियता बनाए हुए थे। 90 साल की उम्र में उनका राजनीतिक जीवन निर्विवाद छवि वाला रहा। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के शोषित वंचित लोगों के उत्थान में लगाया। वे सदन में हमेशा इसी वर्ग की आवाज उठाते थे। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि अपनी पार्टी का सदस्य होने के नाते उनसे अक्सर मिलना होता था। वे इस बार भी चुनाव लड़ने की जिद पर अड़े थे। राष्ट्रीय एकता की दिशा में भी उन्होंने काफी काम किया। अपना दल के सदस्य रामनिवास वर्मा ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में सामाजिक सद्भाव और भाईचारे के लिए आलमबदी ने काफी कार्य किया। राजनीतिक होने के साथ उनमें समर्पण की भी भावना थी। कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के सदस्य ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सदन के वरिष्ठ और वयोवृद्ध सदस्य आलमबदी एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। उनके निधन से इस सदन ने एक कर्मठ सदस्य को खो दिया। कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के सदस्य संजय निषाद और कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि उनकी पहचान उनकी ईमानदारी और सादगी थी। जनसत्ता दल के सदस्य विनोद सरोज ने भी आलमबदी के निधन पर सदन में अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। दलीय नेताओं के बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि आलमबदी के निधन पर वे उनके गांव भी गए थे। उनका रहन सहन काफी सामान्य था। वे सदन में हमेशा क्षेत्र के विकास का मुद्दा उठाते थे। आज ही विधानसभा में 21 पूर्व सदस्यों के निधन पर भी शोक व्यक्त किया गया। नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में पूर्व विधायक भोला पांडे, अमिताभ लवानिया, जगन्नाथ चौधरी, राम प्यारे आजाद, गोपीनाथ वर्मा, यशपाल सिंह, राधेश्याम भारती, संग्राम सिंह, हरिनारायण राजभर, भगवत दयाल, अरुण कुमार मुन्ना, ओमवती, मोहर सिंह, अफसर यू आजाद, तेजभान सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, प्यारेलाल शंखवार, ओंकार सिंह, राजेंद्र त्रिपाठी और हनुमंत सिंह के निधन की सूचना देते हुए शोक जताया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने वर्तमान सदस्य के निधन की सूचना के साथ पूर्व सदस्यों के नाम शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई। उनका कहना था कि पूर्व में ये परंपरा रही है कि जिस दिन किसी वर्तमान सदस्य के निधन की सूचना दी जाती है उस दिन पूर्व सदस्यों की सूचनाएं नहीं ली जाती हैं। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि ऐसा नहीं है, पूर्व में भी इस तरह के कई दृष्टांत हैं, इसीलिए ये कोई नई परंपरा नहीं है। वर्तमान और पूर्व सदस्यों के निधन की सूचना के बाद 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि व्यक्त की गई और सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई।
1: ये थी विधानसभा की समीक्षा। अब सुनते हैं विधान परिषद की समीक्षा, लेखक हैं मुकुल मिश्रा।
2: विधानमंडल के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज विधान परिषद में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर में चढ़ावा गबन मामले पर सरकार को घेरा और वेल में आकर जोरदार नारेबाजी की। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने सदन की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित किया, जिसे बाद में 20 मिनट के लिए और बढ़ा दिया गया। सरकार की ओर से जवाब देते हुए नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद रामलला का मंदिर बना है, इसके लिए हमने लड़ाइयां लड़ी। रामलला का दिव्य भव्य मंदिर बना जिसे आने वाली पीढ़ियां देख पाएंगी। हमें मंदिर बनाने पर गर्व है। आज सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे वंदे मातरम से हुई। सदन में पहली बार पूर्ण वंदे मातरम का गायन हुआ। इसके बाद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने सदन में कार्य परामर्शदात्री समिति की संस्तुतियों को सदन की मेज पर रखा। प्रश्न प्रहर शांतिपूर्वक चला।

0: शून्य प्रहर में सभापति ने सदन के पूर्व सदस्य जयप्रकाश चतुर्वेदी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सदन ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि व्यक्त की। शून्य प्रहर में भाजपा के डॉक्टर विजय बहादुर पाठक ने नियम 59 में वाराणसी स्थित प्राचीन व ऐतिहासिक बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर कहा कि सारनाथ बौद्ध परंपरा पवित्र स्थल के रूप में सार्वभौमिक मान्यता प्रदत्त है। ये सदन सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने पर गर्व करता है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करता है। इसके साथ ही विजय बहादुर पाठक ने नियम 115 में राजस्व मामलों से संबंधित विषय उठाते हुए लोक अदालत की तर्ज पर राजस्व जन अदालत शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, कब्जा, बेदखली, सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध ढंग से कब्जे से संबंधित वाद बड़ी संख्या में लंबित हैं। इन मामलों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश भी हैं, लेकिन उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदारों पर अत्यधिक प्रशासनिक दायित्वों का भार होने के कारण वर्षों से लंबित वादों के निस्तारण की गति धीमे है, जिस कारण इसका प्रतिकूल प्रभाव किसानों और गरीबों पर पड़ रहा है। शून्य प्रहर में सपा के लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी, डॉक्टर मान सिंह यादव, मुकुल यादव, आशुतोष सिन्हा, बलराम यादव, मोहम्मद जासमीर अंसारी, शाहनवाज खान और शाह आलम ने उत्तर प्रदेश के मंदिरों के प्रबंधन में वित्तीय अनियमितताओं का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। सूचना की ग्राह्यता पर किरण पाल कश्यप ने कहा कि मंदिरों में लोगों की आस्था है, चोरी पकड़ में आ गई, इसकी संपूर्ण जांच कराकर बड़े पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। मुकुल यादव ने कहा कि मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, दान की वस्तु सामग्री का हरण करना पाप होता है। सरकार और पुलिस की कार्रवाई नाकाफी रही है, सिर्फ छोटे लोगों के विरुद्ध काम चलाओ कार्रवाई की गई है। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि केंद्र द्वारा गठित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के 15 सदस्यों में 12 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं, जबकि 3 यूपी सरकार के प्रतिनिधि हैं। सरकार द्वारा सशक्त और निष्पक्ष जांच न होने से लोगों में चोरी की घटना के प्रति रोष है। जवाब देते हुए नेता सदन व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले। लंबे संघर्ष के बाद रामलला के मंदिर का निर्माण 500 वर्षों बाद हुआ है, इसके लिए हमने लड़ाइयां लड़ी हैं, तब जाकर मंदिर का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा कि रामलला का दिव्य भव्य मंदिर बना है, जिसे आने वाली पीढ़ियां देख सकेंगी। हमें मंदिर बनाने पर गर्व है। सरकार का जवाब शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष समेत सपा के सभी सदस्य सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए सदन की वेल में आ गए। सभापति ने सदन को व्यवस्थित करने का निर्देश दिया, लेकिन सदस्य वेल में डटे रहे। तब सभापति ने 15 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। इसके बाद सदन के स्थगन का समय 20 मिनट के लिए और बढ़ा दिया गया। दोबारा सदन शुरू होने के बाद भी सपा सदस्य वेल में नारेबाजी करते रहे और नेता सदन ने सरकार का पक्ष रखा, हालांकि शोर शराबे में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। निर्दलीय समूह के राजबहादुर सिंह चंदेल और डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेतर कर्मचारियों और सेवानिवृत्त शिक्षकों कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ दिए जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। नेता सदन केशव मौर्या ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के पक्ष में बड़ी व्यवस्था की है, कोई छूटे नहीं, कोई रूठे नहीं और कोई टूटे नहीं, इसका सरकार ख्याल रख रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले पर मुख्यमंत्री से बात करके कोई न कोई समाधान निकाला जाएगा। हालांकि नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव के हस्तक्षेप पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच इस दौरान कुछ देर के लिए आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहे।
1: अभी आप सुन रहे थे विधानमंडल की समीक्षा, लेखक थे योगेश श्रीवास्तव और मुकुल मिश्रा।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

एक ही फिल्म से कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका अपना साथी अरविंद कुमार, और आज हम लेकर आए हैं हिंदी सिनेमा की एक ऐसी कालजयी फिल्म जिसने प्रेम, त्याग, विरह और भारतीय संस्कृति को भव्यता के साथ बड़े पर्दे पर जीवंत कर दिया। ये फिल्म है देवदास। शरद चंद चट्टोपाध्याय के अमर उपन्यास पर आधारित इस फिल्म का निर्देशन किया है संजय लीला भंसाली ने। शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित जैसे कलाकारों के सशक्त अभिनय ने इस कहानी को नई ऊंचाइयां प्रदान की। संगीतकार इस्माइल दरबार ने मधुर संगीत देकर और गीतकार नुसरत बद्र के भावपूर्ण शब्दों ने फिल्म को यादगार बना दिया। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम का सिलसिला गीत के इस पहले क्रम में, श्रेया घोषाल की आवाज में देवदास फिल्म का यह गीत।

श्रोताओं, देवदास और पार्वती, जिन्हें सब प्यार से पारो कहते हैं, बचपन के साथी हैं। समय के साथ उनकी मित्रता गहरे प्रेम में बदल जाती है। वर्षों बाद जब देवदास विदेश से लौटता है तो दोनों के मन में फिर वही प्रेम अंकुरित हो उठता है। पारो के हृदय में वर्षों से संजोया हुआ प्रेम अब पूर्ण समर्पण का रूप ले चुका है। इसी भावपूर्ण भावभूमि पर प्रस्तुत ये गीत आपने जो कार्यक्रम का पहला गीत के रूप में सुना। लेकिन श्रोताओं, प्रेम की राह हमेशा सरल नहीं होती। सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक अहंकार देवदास और पारो के मिलन के बीच दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि पारो का विवाह किसी और से हो जाता है, देवदास टूट जाता है और भटकते भटकते शराब का सहारा लेने लगता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है प्रसिद्ध नर्तकी चंद्रमुखी से। चंद्रमुखी देवदास के दर्द को समझती है और निस्वार्थ भाव से उससे प्रेम करने लगती है। दूसरी ओर पारो भी अपने नए परिवार की मर्यादा निभाते हुए देवदास की स्मृतियों को अपने हृदय में संजोए रहती है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है श्रोताओं, जहां पारो और चंद्रमुखी पहली बार आमने सामने आते हैं। दोनों के मन में प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि देवदास के प्रति सम्मान और करुणा का भाव है। उत्सव के इसी वातावरण में प्रस्तुत है ऊर्जा, लोक संस्कृति और उल्लास से भरपूर ये दूसरा गीत।

श्रोताओ, इस गीत के बाद कहानी और भी भावुक हो जाती है। पारु और चंद्रमुखी दोनों अपने अपने जीवन की सीमाओं में बंधी हुई हैं, लेकिन दोनों के हृदय में देवदास के लिए निष्कलुष प्रेम है। एक ओर पारो सामाजिक मर्यादा का प्रतीक है तो दूसरी ओर चंद्रमुखी त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति। फिल्म का सबसे भव्य और चर्चित दृश्य तब सामने आता है श्रोताओ, जब दोनों एक साथ नृत्य करती हैं। और ये केवल नृत्य नहीं बल्कि दो स्त्रियों के आत्मीय सम्मान, संवेदना और प्रेम का अद्भुत संगम है।

श्रोताओं, कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। शराब की लत से टूट चुका देवदास अपने जीवन के अंतिम क्षणों में पारो से किए गए वादे को निभाने के लिए उसके घर पहुंचता है, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर होता है। पारो दौड़ती हुई हवेली के द्वार तक आ जाती है, परंतु विशाल दरवाजे उसके सामने बंद हो जाते हैं। उसकी चौखट पर देवदास अंतिम सांस लेता है। दोनों का प्रेम अमर तो हो जाता है, लेकिन उसका मिलन अधूरा रह जाता है। और यही अधूरापन, यही संवेदना और यही अमर प्रेम देवदास को भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मों में शामिल कर देता है। इसी के साथ आज के कार्यक्रम एक ही फिल्म से यही समाप्त होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम में एक ही फिल्म से। आज आपने सुने देवदास फिल्म के कुछ गाने। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा आपसे कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास में भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। और युवा साइकिल चालक हर्षिता जाखड़ स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्याय क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
2: आज प्रस्तुत ये विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक के तहत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं हैं। वहीं राज्यसभा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। यह विधेयक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन कर भुगतान में होने वाली देरी की समस्या का समाधान कर विवाद निपटान प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंक कर बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों को जब मौका दिया जाता है तब वे बोलना नहीं चाहते।
4: सुप्रीम कोर्ट में जजेस को संख्या बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में एमएसएमई का बिल पास किया। विपक्ष में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो हिस्सा लेना चाहते थे। हमने सबसे आग्रह किया था कम से कम बिल में हिस्सा तो ले, बाहर जाके कहते हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है।
1: कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की।
5: लोकतंत्र में बहस होती है और हम जब बहस छेड़ते हैं तो आपका दायित्व होता है या आपका अधिकार होता है कि उसको रिप्लाई दे। अगर मेरी आर्गुमेंट ठीक नहीं है तो आप कहिए कि तुम्हारा गलत है, मेरा सही है।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं।

0: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत FIR बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से अतहर सईद।
1: भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर से जीत ली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया।
2: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उधर बिहार में पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जन सुराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों के अंतर से हराया। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि नीरज कुमार को 44,827 मत प्राप्त हुए। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा कुमारी 14,273 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया।
3: दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए सीट अपने नाम कर ली है। मतगणना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी इस परिणाम की समीक्षा करेगी। उन्होंने चुनाव में भीतरघात का भी आरोप लगाया और कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी की भावना के साथ काम करना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा कि जनता ने विकास और भरोसे के पक्ष में मतदान किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांतिगौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में SS मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा चरित्र निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की नींव है। ओडिशा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने विश्वविद्यालयों से नैतिक, कुशल और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने का आह्वान किया।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम उड़ीसा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान हासिल करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये चरित्र निर्माण, सामाजिक बदलाव और राष्ट्र निर्माण की नींव है। राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय से लड़कियों, आदिवासी छात्रों और समाज के पिछड़े वर्गों की शिक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित भारत और 2036 तक विकसित उड़ीसा के लक्ष्यों को हासिल करने में शिक्षण संस्थान अहम भूमिका निभाते हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा।
5: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति

0: राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है।
0: AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को कंटिन्यूटी, डोमेन स्पेशलिटी और पॉलिसी स्टेबिलिटी भी प्रदान करती है, और इसके साथ ही सिविल मिलिट्री सिनर्जी को सुदृढ़ करने में भी AFHQ एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज की भूमिका का निर्वाह करता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग तथा व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि व्यापार, निवेश, दवाइयों, कनेक्टिविटी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्रों में बातचीत हुई है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलेगी और साझा समृद्धि में योगदान देगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध वर्षों पुराने हैं और ये संबंध निर्माण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विविध क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सईदोव के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में समान विचार हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस फर्जी खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि यदि दूध में मिलावट को तेजी से नहीं रोका गया तो इससे भारत की 87% आबादी को कैंसर हो जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि WHO द्वारा ऐसी कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। POJK से मिली रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा बलों ने आधी रात को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए रावलकोट में गोलीबारी की। एक रिपोर्ट।
2: खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। कई महिलाएं और बच्चे पिछले 50 दिन से प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं और अब ये प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राजनीतिक मिशनों से उपलब्ध फुटेज की जांच करने और हिंसा की तत्काल, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए दबाव डालने की अपील की है। ये प्रदर्शन क्षेत्र के लोगों द्वारा बेहतर सुविधाओं और अधिक विकास की मांग के साथ शुरू हुए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं चल रही है और न ही किसी बैठक की तैयारी है। ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ मध्यस्थों के जरिए बातचीत होने वाली है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने इस दावे को गलत बताया है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया।

0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Lok Sabha passes bill to increase the strength of Supreme Court judges from 33 to 37. Rajya Sabha clears legislation to simplify dispute resolution and address payment delays faced by MSMEs. In assembly by polls, Jan Suraj leader Prashant Kishore

लता मंगेशकर की आवाज में गूंज उठी शहनाई फिल्म का गीत आपने सुना। भरत व्यास की रचना थी, वसंत देसाई का संगीत निर्देशन था। कार्यक्रम की अगली पेशकश आपकी रेडियो सेट पर।

अभी आप सुन रहे थे शमशाद बेगम, जगजीत कौर और नूर जहां की आवाजों में हीर रांझा फिल्म का गीत कैफी आजमी के बोल थे। मदन मोहन का संगीत निर्देशन था। आशा भोसले की आवाज में कार्यक्रम का अगला गीत लूटमार फिल्म से।

लता मंगेशकर क्षमा करें, आशा भोसले की आवाज में लूटमार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। अमित खन्ना के बोल थे, राजेश रोशन का संगीत निर्देशन था। इसी के साथ सुहाने तराने कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आपसे कुछ ही पलों में होगा, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा। इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी। पवन जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मुकेश, बहुत अच्छा लग रहा है आपके प्रोग्राम पर आकर।
0: जी दोस्तों, आज फोन हर हाथ में है। UPI, ऑनलाइन शॉपिंग, सरकारी योजनाएं, सब डिजिटल हो गया है। सुविधा के साथ खतरा भी बढ़ गया है। फर्जी कॉल, नकली लिंक, OTP का झांसा, डीप फेक वीडियो, ठग नए नए तरीके अपनाकर हर दिन ला रहे हैं। लेकिन डरिए मत, जागरूक रहिए। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे साइबर फ्रॉड कैसे होता है, उससे बचें कैसे, और धोखा हो जाए तो सहायता कहां मिलेगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस विशेष चर्चा में और जानिए कि साइबर फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481-2371-2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का STD कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले पवन जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज भारत में सबसे आम तीन तरह की साइबर धोखाधड़ी कौन सी हैं? डिजिटल अरेस्ट, OTP फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट स्कैम, इनमें नया ट्रेंड क्या है?
1: आज जो नया ट्रेंड है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तड़का लगाकर आता है।
0: जी,
1: आजकल आप जो भी कार्यक्रम या जो भी आप ये

0: साइबर फेंसेस देख रहे हैं
1: जी,
0: उन सब में कहीं ना कहीं मिश्रण हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उदाहरण के तौर पर आजकल डिजिटल अरेस्ट जो होता है, उसमें भी जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं वो डिजिटल अरेस्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। जिस व्यक्ति को आप ऑनलाइन वीडियो पर देखते हैं वो रियल नहीं होता, वो एआई द्वारा जनरेटेड होता है। जो आवाज होती है वो एआई द्वारा जनरेटेड होती है। अल्टीमेट उद्देश्य बहुत क्लियर है कि आपने लोगों को ठगना है, और अब जो ठगाई करनी है वो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस तरीके से करनी है कि अगर पुलिस तफ्तीश भी करना चाहेगी
1: तो
0: आप तक पहुंच नहीं पाएगी, और साइबर क्रिमिनल मजे से अपना साइबर क्राइम भी करेगा, पैसे भी उड़ाएगा और तमाशा देखेगा। तो ये आजकल नया ट्रेंड नजर आ रहा है, इसी की रेप्लिकेशन मुझे और प्रकार के जो फ्रॉड्स हैं उसमें नजर आती है।
1: जी बिल्कुल। तो एक आम आदमी को कैसे पता चले कि उसके साथ साइबर फ्रॉड होने वाला है, उसके लिए तीन रेड फ्लैग क्या हो सकते हैं?
0: तीन रेड फ्लैग। पहला, अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत जल्दी निर्णय लेने के लिए विवश कर रहा है तो ये पहला इंडिकेशन है कि साहब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। दूसरा, अगर कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सेकंड रेड फ्लैग है कि साहब ये कहीं ना कहीं एक स्कैम का हिस्सा है। और तीसरा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं आपको अर्जेंसी के माध्यम से आपको पुश कर रहा है कि आप एक अर्जेंट इमीडिएट एक्शन लीजिए, क्योंकि आपके परिवार में कोई बंदा प्रॉब्लम में आ गया है, किसी को एक्सीडेंट हो गया है, किसी का अरेस्ट हो गया है। बॉटम लाइन यह है कि आज हमारा जो ना कोविड-19 के बाद जीवन इसलिए परिवर्तित हो चुका है क्योंकि दो चीजें कोविड-19 सदैव के लिए हमारे जीवन में छोड़ चुका है
1: जी।
0: एक है डर और दूसरा है पैनिक। साइबर क्रिमिनल्स ने आज इसी डर इसी पैनिक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है, और यही कारणवश है कि आज अधिकांश लोग, चाहे आप बहुत प्रशिक्षित हो चाहे आप पढ़े लिखे ना भी हो, लेकिन आप डिजिटल रिस्क के और अन्य और प्रकार के ऑनलाइन फ्रॉड्स के शिकार होते जा रहे हैं।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं मथुरा से, महेंद्र सिंह। महेंद्र जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है हमारे विशेषज्ञ से।
2: आमंत्रित विशेषज्ञ आदरणीय, नमस्कार।
0: नमस्कार
2: महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कोई फ्रॉड हम पर कॉल करता है कि आपकी ओटीपी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तो इनकी शिकायत कहाँ दर्ज की जाए, इनका नंबर क्या है?
0: देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। आजकल कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से आपको टारगेट करने का प्रयास करता है। तो द मोमेंट आपको लगे कि आप साइबर क्राइम के शिकार होने वाले हैं या कोई आपको शिकार बनाने वाला है, तो आपके पास दो विकल्प हैं जो केंद्रीय सरकार ने आपको दिए हैं। पहला, कुछ हो या ना हो अपने फोन नंबर से एक नंबर घुमाइए। नंबर है 1930
1: जी,
0: 1930। ये राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। अगर आप फोन करते हैं और फोन उठता है तो फोन कोई नॉर्मल टेलीकॉम ऑपरेटर नहीं उठाता, फोन उठाते हैं पुलिस अधिकारी। अब इन लोगों का डायरेक्ट टाई अप आपके बैंक्स के साथ है, ताकि अगर आपके यहां कोई फ्रॉड हुआ है, कुछ हुआ है, आप तुरंत कॉल करेंगे, ये तुरंत ही अपने फोन के नेटवर्क पर, अपने कंप्यूटर के नेटवर्क पर देख लेंगे कि साहब आपके जो बैंक का जो चैनल है उसके अंदर पैसा है या नहीं है
1: जी।
0: अगर पैसा है तो उसको ब्लॉक करेंगे, और ब्लॉक करने का मतलब यह कि 2-3 हफ्ते में पैसा खुद ब खुद आपके अकाउंट में आ जाएगा
1: जी।
0: और अगर उन्हें कुछ और पता लगेगा तो आपको भी बताएंगे। लेकिन दूसरा जो आपको और बहुत इफेक्टिव रेमेडी सरकार ने दी है वो ये है कि आप एक वेबसाइट पर जा सकते हैं, उसका नाम है cybercrime.gov.in, यानी कि ये राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। अपने घर बैठे हुए बिना थाने जाए हुए आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, मोबाइल फोन से, कंप्यूटर से, और आपकी रिपोर्ट दर्ज होते ही आपको ऑनलाइन ही एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है जो गृह मंत्रालय आपको प्रदान करता है। ये नंबर आपके लिए एक परमानेंट नंबर बन जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से आप कॉन्स्टेंटली अपने केस की जो प्रगति है, प्रोग्रेस है,
1: उसके बारे में
0: आप लगातार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ हो या ना हो, ये दो चीजें आप याद रखिए, 1930, 1930 और cybercrime.gov.in। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में मैं मानता हूं कि दो प्रकार के लोग दुनिया में हैं। एक वो जिन्हें मालूम है कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं
1: जी,
0: और दूसरे वो जिन्हें नहीं मालूम कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं। तो चाहे आप को मालूम हो या ना हो, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर मुझे अटैक हुआ है या जब मुझे होश आया कि साहब मैं टारगेट बन गया हूं, विक्टिम बन गया हूं साइबर क्राइम का, तो ये दो विकल्पों को तुरंत इस्तेमाल करिए, बहुत इफेक्टिव हैं, और मोर इम्पोर्टेंट सरकार द्वारा नागरिकों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस

0: एक नया अप्रोच है जो सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है।
1: बिल्कुल, और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, विपिन। विपिन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछें क्या सवाल है आपका।
2: जी नमस्कार सर, मैं विपिन बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश सागर से।
1: जी, जी।
2: सर मेरा सवाल ये था कि सोशल मीडिया पे आजकल देखा जाता है बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें बहुत इजी लोन मिल सकता है ऐसा दावा करते हैं, तो सर ये हम कैसे समझें कि फ्रॉड है जो ऐप्स हैं या फिर इसमें सच में लोन मिल सकता है या फिर धोखाधड़ी भी हो सकती है।
0: विपिन जी आज एक चीज समझनी है, वो ये कि दुनिया में ना फ्री लंच नाम की चीज नहीं होती, कुछ चीज मुफ्त नहीं मिलती। दूसरी चीज ये समझनी है कि अगर आपको कुछ ऐसा मन लुभावना ऑफर ऑनलाइन आ रहा है तो, और वो बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी खतरे की घंटी बज जानी चाहिए, क्योंकि जो टू गुड टू बी ट्रू ऑफर होता है वो एक्चुअली वास्तविक तौर में कहीं ना कहीं झोल लेकर आता है। तो आजकल ये जितने भी ये तुरंत लोन ऐप्स वाली कहानियां हैं, कोशिश करें कि इनसे आप मीलों दूर रहें तो अच्छी बात है। क्यों? अगर आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें
1: जी,
0: इनकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ें, ये स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि साहब आपका मैं पूरा डेटा लूंगा, उस डेटा का दुरुपयोग करूंगा, आपकी निजता के अधिकार का हनन होगा और आप चुपचाप बैठेंगे, कुछ नहीं कर सकते। दूसरा उनके फाइन प्रिंट में कहा जाता है, बोलते कुछ और हैं, जब आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते हैं तो वो बहुत ही तगड़े और बहुत ही मोटे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वीक लगाते हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो पर डे लगाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो पर मंथ लगाते हैं। अब आज आपको जब एफडी 7% देती है और वो अगर आपसे 3% प्रति माह या 3% 2% प्रति वीक लेना शुरू कर दें तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो जल्दबाजी में मत करिए, एक तो जल्दबाजी में कोई लोन लेना नहीं, दूसरा लोन लेना है तो आप अधिकृत बैंक के पास जाइए, नेशनलाइज बैंक के पास जाइए, उनसे लोन लीजिए। ये ऑनलाइन लोन कहीं ना कहीं फ्रॉड के नए स्वरूप हैं, और जितनी जल्दी आप समझ लीजिए कि वो मछुआरे हैं जिन्होंने आपको जाल फेंक रखा है, अगर आपको पकड़ने के लिए, अगर आप केयरफुल ना हुए तो आप इस जाल में फंस जाएंगे। एक बार आप फंस गए तो फिर आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। मेरे पास केस आया जहां पर एक क्लाइंट ने केवल 15,000 रुपए लोन लिए
1: जी,
0: क्योंकि उसको एक हफ्ते के लिए चाहिए थे। अब उन्होंने लोन तो तुरंत अप्रूव कर दिया, लेकिन हुआ क्या कि जब पैसे आए तो पैसे आए करीबन 12,300, तो भैया
1: पहले ही काट लिया।
0: पहले उन्होंने कहा जी मैंने प्रोसेसिंग फी भी काट ली, मैंने ये भी काट ली, और फिर उन्होंने कहा कि साहब हम पर वीक जो है 3% इंटरेस्ट लगाएंगे, यानी कि आप समझ लीजिए महीने में 12% इंटरेस्ट। तो जितना आपने लिया नहीं उससे लगातार आपका इंटरेस्ट आता रहा, और उसके बाद आप नहीं दे पाए तो गुंडों का आपको धमकी आने लग गई, आपको प्रताड़ित करना लग गया, आपकी फैमिली को टारगेट करने लग गए। तो बॉटम लाइन ये है, छोटे लालच में नहीं पड़ना। अगर किसी से पैसा मांगना है अधिकृत बैंक से मांगिए, किसी अधिकृत एजेंसी से मांगिए। ऑनलाइन तो सारे झोल हैं, सारे साइबर क्राइम के नए स्वरूप हैं, प्लीज अपने आप को केयरफुल रखिए।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से, रवि। रवि आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका।
3: नमस्कार सर।
0: नमस्कार।
3: और सभी विशेषज्ञों को नमस्कार, और आने वाले स्वतंत्रता दिवस तथा सभी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।
1: जी सवाल पूछिए।
3: हाँ जी सर, मैं जानना चाहता हूँ साइबर क्राइम जब हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, और इसे आम इंसान कैसे समझे कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है।
0: मुझे लगता है ये सवाल हर आज भारतवासी के हृदय में है कि कैसे पता लगे कि साइबर क्राइम होने वाला है।
1: जी
0: मुझे लगता है कि आप समझ लीजिए कि आप डिजिटल कुरुक्षेत्र के मैदान के केंद्र बिंदु पर आकर पकड़े हो गए, और आपको चारों दिशाओं से अटैक किया जा सकता है। अटैक करने वाले कौन है? साइबर क्रिमिनल्स हैं, अलग अलग पैंतरे अपनाते हैं, अलग अलग तरीकों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि आप कुछ करें या ना करें, अपने रोजमर्रा के जीवन में दो आदतें जरूर आप इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। पहली आदत शक्की हो जाइए, दूसरी आदत कंजूस हो जाइए। शक्की, हर प्रकार की जानकारी जो आपके सामने आ रही है, जिसको आप सुन देख रहे हैं, उस पर शक के दृष्टिकोण से देखें जब तक कि आप उसकी पुष्टि स्वयं ना कर पाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप कंजूस हो जाइए अपने डेटा के संदर्भ में। आज हो क्या रहा है कि भारतवर्ष में एक नई क्रांति चल रही है, मैं से बोलता हूं भारत की उल्टी की क्रांति, द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन, जहां पर सारे भारतवासी उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की। चाहे वो इंटरनेट पर हो, सोशल मीडिया पर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हो। कृपया अपने डेटा की उल्टी ना करें, अपने डेटा को किसी भी व्यक्ति के साथ अनावश्यक तरीके पर शेयर ना करें, बिकॉज ये डेटा आधार बन जाता है आपको टारगेट बनाने के लिए। फिर अब ये दो चीजें आपने दिमाग में रख ली, अब सवाल उठता है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आप साइबर क्राइम के शिकार हुए। अगर कोई ना कोई बंदा आपको ऑनलाइन मिलता है और वो पैसे की दिशा में आपको लेके जाता है कि आपने पैसे देने हैं या आप

0: आपको डराता है, धमकाता है और या कहता है कि साहब आपकी नग्न तस्वीरें हम भेज देंगे, आपकी प्रतिष्ठा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे, जहां जहां जो जो व्यक्ति आपको डराता है, धमकाता है, आपको पैनिक के मोड पे लाता है, वो तमाम सारे इंडिकेशंस होते हैं कि साहब ये साइबर क्राइम फ्रॉड में आप फंसने वाले हैं। और दूसरी बात, बहुत ज्यादा ट्रस्टिंग होने की जरूरत नहीं है, आज वो यकीन वाला जमाना चला गया है, आस्था ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन पता ही नहीं कि आप राम श्याम जदू से बात कर रहे हैं या किसी और व्यक्ति विशेष से बात कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में मुझे लगता है कि जागरूकता और सावधानी एकमात्र आपके मूल मंत्र हैं, आपकी सुरक्षा कवच है जो आपको बचाते हैं इस तरह के साइबर क्राइम के शिकार होने से।
1: बिल्कुल, एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार से, अमित उपाध्याय। अमित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका।
2: जी नमस्कार विशेषज्ञ जो भी हमारा टीम है, मैं ये सवाल है अभी कि अभी हाल ही फिलहाल में सरकार इजी जो पीएफ का जो पैसा है उसको इजी लूप में उसको सर्कुलेट करके बना दिया था, निकालने का प्रावधान कर दिया है। इसमें तो अभी मामला आया था कि ओटीपी के माध्यम से कुछ पैसा का हेर फेर उसमें भी हो जा रहा है, इसको लेकर हम लोग कैसे सिक्योर कर सकते हैं कि मान के चलिए वो जमा पूंजी जिंदगी भर का रहता है, हम लोग को पीएफ कटता है और वो पैसा इनसिक्योर हो जाए, तो उसको लेकर थोड़ा सा।
0: देखिए आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा, क्योंकि देखिए पीएफ के साथ कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी की गाड़ी कमाई, आपकी मेहनत और उस मेहनत का पसीना जुड़ा हुआ है जी। तो आप कोशिश करें कि अगर आपके पीएफ कट रहे हैं तो ऑफिशियल सोर्सेज या ऑफिशियल कंपनी या ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ही देखें। आजकल ना गवर्नमेंट ने पीएफ की विभिन्न वेबसाइट्स दे रखी हैं, तो अच्छी बात रहती है कि ऑलवेज इन गवर्नमेंटल वेबसाइट्स पर जाकर चेक कर लीजिए कि आपकी पीएफ की कंट्रीब्यूशन जमा हुई हैं नहीं हुई हैं। अगर आपके एम्प्लॉयर ने नहीं जमा कराई हैं तो उन्हें निवेदन करिए कि जमा कराएं, आपकी कितना टोटल अमाउंट आया है, कितना आगे बढ़ने वाला है, थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। देखिए अगर आप सो जाएंगे तो बिल्ली तो आपके सिराने पे जो दूध है आके पी जाएगी। तो इसलिए आपको तो सतर्क रहना ही पड़ेगा, अगर ना सतर्क रहे तब संभावित तौर पर साइबर क्रिमिनल्स इसको हड़प सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे ये मैं केसेस देख रहा हूँ कि लोग अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं, छुपा देते हैं, दूसरे व्यक्ति की आइडेंटिटी को इम्पर्सोनेट कर लेते हैं और उसके माध्यम से ऑफिशियल अकाउंट से पैसा निकालने की प्रयास भी करते हैं। तो कुछ हो या ना हो अपने पीएफ डिपार्टमेंट में लिख के दे दीजिए कि साहब मेरे अकाउंट से कोई पैसा ना निकाला जाए जब तक कि मेरे हस्ताक्षर ना हो और तब तक मैं हाजिर ना हूं। इसके अलावा सावधानी सूझबूझ ही एकमात्र आपके लिए मूल मंत्र रहेगा।
1: बिल्कुल, तो जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, आज हम साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी। तो पवन जी एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, संजय। संजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका हमारे विशेषज्ञ से।
3: नमस्कार मुकेश सर, एक्सपर्ट सर को भी बहुत बहुत नमस्कार
1: जी। नमस्कार जी।
3: और सर मेरा सवाल ये है कि हम क्यों हमेशा डायरेक्ट बातें ही समझने की कोशिश करते हैं, इनडायरेक्ट बातें नहीं समझते, जबकि डायरेक्ट खतरे बहुत कम ही होते हैं, इनडायरेक्ट की अपेक्षा। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम छोटे मोटे जब ऐसी घटनाएं होती है हम राजनयिक संबंध तोड़ने लगते हैं दूसरे देशों से या और भी व्यापारिक वो गतिविधियां करने लग जाते हैं है ना रोक टोक की, तो ये साइबर अपराध तो हर देश की समस्या बनती जा रही, केवल भारत की या एक देश की तो है नहीं, क्यों नहीं सभी देश मिल करके इसके लिए कड़ाई से जो है नियम कायदे बनाते हैं और इसके लिए बड़े दंडात्मक व्यवस्था करते हैं ताकि किसी भी देश में कोई भी हो, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए हर साल नुकसान होते, कितने मौतें हो रही है इसकी वजह से, हत्याएं कर रहे हैं ये लोग ये अपराधी, तो इसके लिए क्या कोई ये किसी युद्ध से कम है क्या ये।
0: देखिए बहुत ही महीन और महत्वपूर्ण सवाल है आपका। आज देखिए इंटरनेट ने भूगोल को इतिहास बना दिया है, तो आप एक राष्ट्र में बैठे हुए इंटरनेट के माध्यम से किसी और राष्ट्र में विद्यमान नागरिकों को टारगेट कर सकते हैं, साइबर फ्रॉड का शिकार बना सकते हैं। इसलिए राष्ट्रीय कानून एक तौर पर अपने आप ही सफिशिएंट नहीं होते इस प्रकार के साइबर फ्रॉड्स को डील करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आपको सूझबूझ और कोऑपरेशन की आवश्यकता होती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज की तारीख में भी कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून आज साइबर लॉ का नहीं है जो मौजूद है। 2015 में जब मैं संयुक्त राष्ट्र को संबोधित कर रहा था तब मैंने प्रस्ताव दिया था कि आज आवश्यकता है दुनिया को एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की ऑन साइबर लॉ एंड साइबर सिक्योरिटी, लेकिन वो सन था 2015 और शायद वो समय से बहुत एडवांस वाला आइडिया आया था तो राष्ट्र उसको बाइट करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन

0: देखिए, ठीक उसी दिशा में अब संयुक्त राष्ट्र ने अब एक नई संधि को ओपन किया है. इट्स कॉल्ड द यूनाइटेड नेशंस आईसीटी कन्वेंशन टू प्रिवेंट द मिसयूज फॉर क्रिमिनल और इलीगल पर्पसेस. अब एक नई प्रकार की संधि आ गई है, उसके लिए हस्ताक्षर के लिए, रेटिफिकेशन के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं. बाय द टाइम कंट्रीज उसको अडॉप्ट करेंगी, थोड़ा समय लग जाएगा, बट शायद ये दुनिया की पहली ऐसी अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी हो जाएगी जो एक साइबर लॉ, इंटरनेशनल लॉ का काम कर सके. इससे पहले केवल बुदापेस्ट कन्वेंशन रही थी 2001 में, लेकिन वो केवल एक स्थानीय ट्रीटी थी और यूरोपियन यूनियन की ट्रीटी थी. बहुत से राष्ट्र इसका हिस्सा नहीं थे, भारत भी उसका हिस्सा नहीं था. तो आवश्यकता तो ये है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि आजकल राष्ट्र और उनकी सरकारें इतनी ज़रा संकीर्णता से देश सोचती हैं कि उन्हें ब्रॉडर पिक्चर अक्सर नजर नहीं आता. हर सरकार कहती है, हर राष्ट्र कहता है कि भैया मुझे आज की अपनी वर्तमान स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को देखना है, मुझे ग्लोबल कोऑपरेशन को नहीं देखना. यही कारणवश है कि हम अभी तक कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून इस पर बनाकर नहीं लेकर आ पाए हैं. लेकिन अब मुझे लगता है और समय की तुलना में और ज्यादा आवश्यकता हो गई है इस प्रकार के कानून को लाने की,
1: और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरह का कानून बन जाएगा.
0: जी,
1: एक और श्रोता जुड़ गए हैं हमारे साथ महाराष्ट्र से, विजय कुमार. विजय जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है.
2: मुकेश कुमार जी, नमस्कार.
1: जी नमस्कार जी, पूछिए क्या सवाल है.
2: नमस्कार
1: जी.
0: जी नमस्कार,
2: मैं विजय कुमार स्वामी गांव बस्तवा छत्तीसगढ़ जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ.
1: जी
2: जी सर, मैं ब्लाइंड हूँ 100%.
1: जी,
2: मेरा बटन का फोन है.
1: वेरी गुड.
2: अरे बटन के फोन में धोखाधड़ी हो सकती है, ये सवाल मेरा है.
0: देखिए, धोखाधड़ी तो कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ नहीं हो सकती.
1: बिल्कुल.
0: तो धोखाधड़ी तो हर जगह हो सकती है, लेकिन आपका बटन वाला फोन है तो संभावित तौर पर स्मार्टफोन की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि वो वही काम कर रहा है जिसको जिसका उद्देश्य बनाया गया है इसको काम करने के लिए. तो आप सुरक्षित तो हैं, लेकिन कोशिश करें अपना फोन किसी के हाथ में ना दें, क्योंकि अगर वो उसका दुरुपयोग कर पाएगा तो हो सकता है आप फ्रॉड के शिकार हो पाए. बॉटम लाइन आज ये है कि हमें जो कुछ करना है खुद करना है, अपना हाथ जगन्नाथ, किसी पर विश्वास, किसी पर आश्रित रहना नहीं है. और ये स्मार्टफोन्स तो इसलिए आजकल सरदर्दी का सबब बन गए हैं क्योंकि स्मार्टफोन्स केवल आपसे फोन नहीं करते, कैमरे नहीं है, ये ना सिटिंग टाइम बॉम्ब्स हैं, लगातार हमारी हर प्रकार की जानकारी को सुनते रहते हैं और फिर डेटा आपकी इजाजत के बगैर आपके सिस्टम से बाहर निकाल के बाहर भेजते हैं, बेचते हैं. और फिर यही कारणवश है, देखिए मैं आज स्टूडियो में बैठ के मुकेश जी से बात कर रहा हूँ, उन्हें कह रहा हूँ कल सुबह मुझे बॉम्बे जाना है, मेरा फोन सुन रहा है, अगले 5 मिनट बाद मेरे फोन पर ये एडवर्टाइजमेंट आनी शुरू हो जाएगी कि सर बॉम्बे की चीप फ्लाइट ले लीजिए या ये यहाँ पर चीप होटल मिल जाएंगे. ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बातें हमारी कॉन्स्टेंटली सुन रहे हैं. तो अब जब आप बटन वाला फोन इस्तेमाल करते हैं तो वो फीचर फोन होता है. फीचर फोन आज की तारीख में सबसे ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि वो केवल फोन का काम करता है, कोई और नहीं करता. फिर भी जागरूकता सूझबूझ ही एकमात्र आपके लिए मंत्र रहता है.
1: पवन जी, अगर पैसे चले गए हैं तो सबसे पहले 3 काम क्या करने होते हैं? 1930 पे हेल्पलाइन नंबर पे फोन करते हैं, cybercrime.gov.in पर हम दर्ज कराते हैं, और बैंक को कब कॉल करें?
0: देखिए, जब सबसे पहले जब आपको पता लगे कि आपके पैसे गए
1: जी,
0: तो पैनिक नहीं करना, घबराना नहीं है, हताश नहीं होना, पहली चीज. दूसरी चीज, वो कहते हैं ना कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आपका कर्म प्रधान जीवन है. तो इस संदर्भ में आपको तुरंत सबसे पहले 1930 कॉल करना है. कॉल करना इसलिए है क्योंकि द मोमेंट आपके पैसे गए हैं, आपके पैसे अभी भी शायद बैंकिंग चैनल में होंगे. तो अगर आपने उन्हें कॉल कर दिया और फोन उन्होंने उठा लिया और उन्होंने देखा कि उनके सिस्टम में नजर आ रहा है कि आपके पैसे बैंकिंग चैनल में हैं, तो आपके बैंक के पैसों को फ्रीज कर देंगे और 2-3 हफ्ते में पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा. तो कुछ करें या ना करें, द मोमेंट पता लगे फ्रॉड हो, पानी भी नहीं पीना है, आपने तुरंत 1930 कॉल करना है. अगर वहां फोन नहीं लग रहा है तो दूसरा विकल्प है, आप तुरंत cybercrime.gov.in पर जाना है. अक्सर बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि चलो भैया बैंक से पैसा निकला है, बैंक जाते
1: बैंक में जाना चाहिए.
0: भाई बैंक जाते जाते आधा पौना घंटा लग जाएगा, तब तक तो चिड़िया चुग गई खेत वाली कहानी हो जाती है. आज की तारीख में ना, पहले हम कहते थे गोल्डन आवर होता है 60 मिनट, जब आपको पता लगता है कि आपके यहाँ फ्रॉड हुआ है. अब हम कहते हैं कि गोल्डन आवर श्रिंक हो गया है 10 मिनट में. अगर आपने पहले 10 मिनट में शिकायत कर दी, एक्शन ले लिया, तो हो सकता है आपका पैसा बच जाए, क्योंकि आज साइबर क्रिमिनल्स 10 मिनटों में ही आपके पैसे को आपके अकाउंट से बाहर ले जाते हैं, सलामी ट्रांजैक्शंस करते हैं और फिर म्यूल अकाउंट्स के माध्यम से कैश विड्रॉल कर लेते हैं. और एक बार आपके अकाउंट से कैश विड्रॉल हो गया फिर तो फिर पैसा वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है.
1: एक और श्रोता जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राजेश. राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है.
3: जी, मैं आपका और उपस्थित विशेषज्ञ का बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ.
1: जी नमस्कार.

0: और मेरा सवाल ये है, मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बुजुर्ग रहते हैं और महिलाएं होती हैं, यदि किसी कारणवश उनके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो कहाँ पर अपना बयान दें और कहाँ पर अपनी शिकायत लेकर जाए, थोड़ा सा बताइएगा।
1: देखिए, अगर आप ग्रामीण इलाकों में हैं, महिला हैं, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज केंद्रीय सरकार आपको कहती है कि साहब कुछ ना करिए, अपने घर बैठे अपने ही फोन से तुरंत नंबर कॉल करिए 1930। कहीं धक्के खाने की आवश्यकता नहीं, वहां आपका केस दर्ज भी हो जाएगा ऑनलाइन, आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगी। ना करना चाहें और वो फोन ना उठे तो आप cybercrime.gov.in पे जा सकते हैं और वहां पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि साहब हमें कहीं ना कहीं थाने जाना है
2: जी,
1: और भाई थाने जाने में करीबन आधा पौना घंटा घंटा लग जाएगा, तब तक जितने पैसे हैं सब निकल चुके होंगे। तो थाने जाने की जल्दबाजी ना करें, अपना बयान देने की जल्दबाजी ना करें। भाई जब आग लगी है तो सबसे पहले आग को बुझाना है। आज जब पैसे गए हैं तो सबसे पहले दायित्व बनता है कि हम कैप्चर करें क्या वो बैंकिंग चैनल में है। अगर कहीं पर भी है तो उस बैंकिंग चैनल में उस पैसे को फ्रीज कराना है। एक बार फ्रीज हो जाएगा अपने वापस आ जाएगा। हाँ, एक बार आपने 1930 पर या cybercrime.gov.in पर शिकायत कर दी, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसके बाद आप बैंक जाइए, लिखित में शिकायत कर दीजिए और ये जो आपने ऑनलाइन शिकायत करी है उसका रेफरेंस नंबर भी आप जरूर दे दीजिए, सो दैट बैंक को पता लग जाए कि साहब आप हवाबाजी नहीं कर रहे। अक्सर क्या करते हैं, बैंक आपको डरा देते हैं, धमका देते हैं, दौड़ा देते हैं, भाग जाओ कि तुम्हारी गलती है, तुमने गलत काम किया था। भाई आज आपका पैसा आपकी गाड़ी कमाई है, अगर वो आपके अकाउंट से आपकी इजाजत के बगैर निकला है तो साइबर क्राइम है, 3 साल की सजा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है, धारा 66 भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत। साथ ही साथ ये बैंक जो है, ये इंटरमीजरीज है, उनका दायित्व तो बनता है कि जब द मोमेंट आप बताएं कि साहब मेरा ये अनऑथराइज ट्रांजेक्शन गया है, तब दायित्व तो उनके ऊपर होता है कि वो देखें कि साहब ये ट्रांजेक्शन कैसे हुआ है।
2: बिल्कुल।
1: और वो ये नहीं कह सकते कि साहब आपने यूजर आईडी पासवर्ड इस्तेमाल किया है, ओटीपी इस्तेमाल किया, क्योंकि वो ओटीपी का दुरुपयोग हुआ है। बहुत सारे बैंक आपको जलेबी की तरह घुमाते हैं, लेकिन आपको घूमने की आवश्यकता नहीं, वहां जाइए बैठ जाइए कि साहब आपका दायित्व बनता है, आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप ये पैसे दिलाइए, वरना इस पैसे की आपकी जो क्लेम होता है आप बैंक से मांग सकते हैं। क्योंकि देखिए बैंक की आवश्यकता कानून में होती है कि वो ड्यू डिलीजेंस सावधानी करे जब वो अपनी ऑब्लिगेशंस या ड्यूटियों का निर्वाह कर रहा है। यह है सेक्शन 79 भारत के आईटी एक्ट के तहत, और अगर वो नहीं करता है तो कानून कहता है जिम्मेवारी पैसा वापस दिलाने की बैंक की है। तो आप हताश ना होइए अगर बैंक आपको दाएं बाएं करे, आपको बैंक को कहना है कि साहब मेरा ट्रांजैक्शन नहीं है या अनावश्यक तरीके से इस्तेमाल किया गया है, ये मेरी ऑनलाइन कंप्लेंट है, आप मुझे पैसा दीजिए, अगर मेरा पैसा चला गया तो मेरे पैसे की भरपाई करने की जिम्मेवारी भी आपकी है।
2: बिल्कुल। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राम जी। राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछे क्या सवाल है।
3: जी जी, नमस्कार सर जी, बहुत अच्छा विशेषज्ञ लोग जानकारी दे रहे हैं। अभी कह रहे थे कि अगर आप सो गए तो बिल्ली दूध पी जाएगी, तो बहुत अच्छा लग रहा था।
2: जी जी, सवाल पूछिए।
3: जी, प्रश्न कुछ इस तरह से है कि हमारा यूज करने वाला मोबाइल और सिम गुम हो गया है और उसके साथ साथ वो बैंक से जुड़ा हुआ है
1: जी,
3: तो उसमें भी ना पैसा निकल जाने की व्यवस्था हो सकती है, तो हम क्या करें क्या ना करें, अगर मोबाइल हमारा गुम गया तो कितना जल्दी हम क्या करें ना करें, यही जानकारी हम लेना चाह रहे हैं सर जी।
1: जिस वक्त पर आपको पता लगे कि आपको मोबाइल फोन गुम हुआ है या अवेलेबल नहीं है, तुरंत सबसे पहले आपने अपने मोबाइल कंपनी को कॉल करना है और उन्हें कहना है कि मेरा फोन नहीं मिल रहा है, मेरा सिम को ब्लॉक करिए, क्योंकि आपकी सिम के साथ आपके बैंक अकाउंट जुड़े हैं, ट्रांजैक्शंस जुड़े हुए हैं। तो द मोमेंट आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा उसका सीधा असर ये होगा कि कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आपके साथ नहीं हो सकती। आजकल ना बहुत ये सिम स्वैप फ्रॉड्स होते हैं, आपका फोन चुराते हैं, फिर आपके नाम पर आपकी झूठी आईडी बनाकर वो डुप्लीकेट सिम ले लेते हैं, और फिर डुप्लीकेट सिम का मतलब ये होता है कि जितने सारे ओटीपीज आपके अकाउंट में जाने हैं, आपके फोन पे आने हैं, वो उनके पास आने शुरू हो जाते हैं और आपका बैंक धीरे धीरे अकाउंट खाली हो जाता है। तो एक्शन तुरंत लेना है, एक बार आपने इन्फॉर्म कर दिया इस टेलीकॉम कंपनी को, उसके बाद तुरंत आप कॉल करिए 1930 पर, क्योंकि ये जो फोन का चोरी करना ये भी एक दंडनीय अपराध है धारा 66 बी भारत के आईटी एक्ट में, और ऑफ कोर्स भारतीय न्याय संहिता के अंदर तो ये चोरी के अंदर आता ही है, तो आप इसे ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ब्लॉक करवाना जरूरी है और डुप्लीकेट सिम आप बाद में इंश्योर का ले लीजिए, इशू करा लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि जो कुछ करना है जल्दी करें।
2: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं शिमला से, राकेश। राकेश जी, क्या सवाल है?

0: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई शिमला
1: जी।
0: और मेरा ये प्रश्न है, जैसे कि दिव्यांग व्यक्ति है, अगर उनसे अगर साइबर क्राइम में अगर आप गए हैं किसी कारणवश, तो वो किस तरह से जो है बच सकते हैं?
2: देखिए, अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो बचने का तो एकमात्र तरीका यह है कि आपको सावधानी जो है ना अपने रोज़मर्रा के जीवन में हिस्सा बनानी पड़ेगी। दूसरा, हम लोगों की मानसिकता ऐसे होती है कि साहब मैं अपने फ़ोन पर कुछ भी करूं, कुछ गड़बड़ होगी तो सरकार की जिम्मेवारी होगी। भाई सरकार तो काम कर ही रही है, लेकिन अब हमको नागरिक होने के नाते कहीं ना कहीं आवश्यकता होगी कि हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें। बेसिकली सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ये एकमात्र तरीका है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन फ्रॉड्स और विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम के शिकार होने से बच सकते हैं।
1: बिल्कुल, और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम इस चर्चा को यहीं पर विराम दें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि डिजिटल दुनिया में सतर्क रहना कितना आवश्यक है। याद रखिए तीन बातें। पहला, कोई भी ओटीपी सीवीवी पिन फोन पर मत बताइए। दूसरा, कभी भी किसी लिंक पर बिना सोचे समझे क्लिक मत कीजिए। और तीसरा, धोखा हो जाए तो तुरंत डायल कीजिए 1930 साइबर हेल्पलाइन। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि डिजिटल नागरिक सुरक्षित नागरिक है। आज के पब्लिक स्पीक में इतना ही। हम अपने सभी श्रोताओं का, जिन हमसे आज जुड़े हैं, और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी का आभार व्यक्त करते हैं। पवन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत सारी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: धन्यवाद।
1: तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे किसी और नए मुद्दे पर चर्चा के लिए उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए मुकेश कुमार को कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: करने वाले विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया से एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में
2: अब आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं नौटंकी। श्री गोपेश्वर महादेव, लेखक हैं खेमचंद यजुवंशी, प्रस्तुति देवेंद्र सरस्वत की है।

0: हाथ जोड़ कर शंकर जी से ललिता ऐसे बोली,
1: आलोक निरंजन, आलोक निरंजन, आलोक।

मत कर मन माली, व्यर्थ में हमें ना सतारी, व्यर्थ में हमें ना सतारी, महाराज दर्शन करना।

अभी आप सुन रहे थे नौटंकी श्री गोपेश्वर महादेव, लेखक थे खेमचंद यदुवंशी, प्रस्तुति देवेंद्र सारस्वत की थी। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए असद अली खान का वीणा वादन, राग है पुरिया धनाश्री।

0: अभी आप सुन रहे थे असद अली खान का वीणा वादन राग बोरिया धनाश्री पर आधारित आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं अब समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
2: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका।

का संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे।

0: के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। उधर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बाकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांतिगौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने प्रतियोगिता के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत में विभिन्न देशों के 8 खिलाड़ियों के समूह का नेतृत्व किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The Lok Sabha today passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. The bill aims to increase the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance in this regard. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. He said the bill is an important step in that ongoing reform process within the judicial sector. The Lok Sabha was adjourned several times today amid protests by opposition parties over several issues. Earlier, when the House began its proceedings at 11 a.m., Speaker Om Birla congratulated the athletes for their outstanding performance at the 23rd Commonwealth Games at Glasgow. After that, Mr. Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protest. Mr. Birla expressed concern over the deliberate disruptions by some opposition members. Minister of Statistics and Program Implementation Rao Indrajit Singh introduced the Indian Statistical Institute Bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Bankers Books Evidence Bill 2026. The Rajya Sabha today passed the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill amid ruckus. The bill aims to further amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. It aims to address payment delays and simplify dispute resolution. In assembly by-elections, Jan Suraj leader Prashant Kishore has won the Bankipur seat in Bihar, while BJP has retained Manjalpur in Gujarat and Congress has kept Dhatia constituency in Madhya Pradesh. Prashant Kishore defeated BJP candidate Neeraj Kumar by a margin of 19,324 votes, securing 64,151 votes. RJD candidate Rekha Kumari finished third with 14,273 votes and